FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के वैशाख माह की 30वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 20 मई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार प्रातः के 5:58 हुए हैं और अब हमारी आज की प्रथम प्रसारण सभा आरंभ होती है।

हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बजने को हैं। अब हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। श्री मोदी की ये दो दिन की यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा के आदान प्रदान तथा नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार में आरक्षण के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की 66 श्रेणियों को अधिसूचित किया है। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग ए का 10% और अन्य पिछड़ा वर्ग बी का 7% आरक्षण रद्द कर दिया गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजी कर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर कल सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में 1 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि श्री रूबियो कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली की यात्रा करेंगे। नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने बताया कि श्री रूबियो 26 मई को क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। क्वाड समूह में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका शामिल हैं। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया गया है। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। संग्रहालय का ये तीसरा AI संचालित इंटरैक्टिव होलो बॉक्स होगा। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना बनी हुई है। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 220 रन बनाए। जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 5 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। विचार बिंदु में आइए सुनते हैं पंडित सुमित्रानंदन पंत के विचार।
3: आरंभिक कुछ रचनाओं में आपको मेरे मन की प्रतिक्रिया आज के युग जीवन के संबंध में मिलेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि आज गुणात्मक तथा राशि

0: द्वाचार धाराओं में एक संघर्ष चल रहा है और मनुष्य बाहर की परिस्थितियों के प्रभावों के इतने अधीन हो गया है कि वह अपने अंतर के वैशिष्ट्य को प्रायः भूल गया है। मेरी कविताओं का उद्देश्य मनुष्य को उसकी आंतरिक वास्तविकता एवं सत्य की ओर आकर्षित करना है। मेरी कविता व्यक्ति चेतना में आप ऐसी ही वैचारिक एवं भावात्मक प्रक्रिया पाएंगे। रचना है, स्वर्ग नरक का निर्माता विज्ञान धरा पर, स्वर्ग नरक का निर्माता विज्ञान धरा पर भू आंगन को उसने भले संवारा सुंदर, किंतु मनुज रह गया मनुज का व्यंग्य चित्र में। भू आंगन को उसने भले संवारा सुंदर, किंतु मनुज रह गया मनुज का व्यंग्य चित्र भर। स्पर्धाग्रस्त कुरूप नग्न स्वार्थों का पंजर, नैतिक रीढ़ विहीन रेंगता वह जीवन मृत, नैतिक रीढ़ विहीन रेंगता वह जीवन मृत। बाह्य परिस्थितियों के क्रूर करों से कुंठित, प्लास्टिक के रंगीन खिलौने सा प्रियदर्शन, हृदयहीन वह, हृदयहीन वह आत्मगरिता में भी निर्धन। प्लास्टिक के रंगीन खिलौने सा प्रियदर्शन, हृदयहीन वह आत्मिक गरिमा में भी निर्धन। बहिर्भ्रांत व्यक्तित्व विमुख नर कृमि साधारण, भोग पंख में डूबा उर्मी राग द्वेष प्राण। बहिर्भ्रांत व्यक्तित्व विमुख नर कृमि साधारण, भोग पंख में डूबा उर्मे राग द्वेष व्रण। अंतर जीवन शून्य खोजता बाहर सुख क्षण, अंतर जीवन शून्य खोजता बाहर सुख क्षण। बढ़ता ही जाता मृग जल जीवन संघर्षण, बढ़ता ही जाता मृग जल जीवन संघर्षण। व्यक्ति चेतना धारा बिना जगत पथ निर्धन, व्यक्ति चेतना धारा बिना जगत पथ निर्धन। भंगुर सैकतवत सामूहिक लोक संगठन, आज शक्ति शिविरों में भीषण ध्वंस उपकरण। मानवता के आत्म पराजय के हत साधन, आज शक्ति शिविरों के भीषण ध्वंस उपकरण, मानवता के आत्म पराजय के हत साधन। मेरा अभिप्राय है, अगर मानव ने अपने बाह्य जीवन का जितना परिष्कार किया है, उतना ही अपने मन तथा अंतर जीवन का भी संस्कार किया होता, तो आज विज्ञान की शक्ति विश्वध्वंस के साधनों को जन्म न देकर धरती के जीवन के निर्माण के लिए तथा विश्व शांति के लिए प्रयुक्त होती।
1: विचार बिंदु में अभी आप सुन रहे थे पंडित सुमित्रानंदन पंत के विचार। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

गजानन गणेश केवल देव नहीं, विश्वास की पहली ज्योति है। अंधेरे मन में उतरती हुई प्रभु कृपा की शांति है। जो अहंकार छोड़ उनके चरणों में शीश झुकाता है, गजानन उसके जीवन को नई दिशा दिखाता है।

ईश्वर दर्शन आँखों से नहीं, निर्मल हृदय से होते हैं। जहाँ प्रेम और भक्ति बस जाए, वहीं प्रभु प्रकट होते हैं। मन का अहंकार मिट जाए तो हर कण में भगवान दिखने लगते हैं। सच्चे भाव से जो पुकारो, ईश्वर स्वयं आपके पास चले आते हैं।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। बद्रीनाथ केवल धाम नहीं, विश्वास का द्वार है, जहां पहुंचकर मिट जाते मन के सारे भार हैं। बर्फीली चोटियों में भी जो प्रेम का प्रकाश जगाते हैं, वही बद्रीनाथ हर भक्त को अपने पास बुलाते हैं।

मनमोहन सांवरे अब तुम ही सहारा हो, इस बेचैन मन का बस तुम ही किनारा हो। सब कुछ छोड़ तेरे चरणों में मनाकर ठहर गया मेरा, तेरी भक्ति में ही मुझे सच्चा सुख मिल गया।

महादेव ने सिखाया सब यहीं रह जाना है, मोह माया छोड़ बस शिव में रम जाना है। जो उनकी भक्ति में अहंकार त्याग देता है वही सच्चे अर्थों में जीवन को समझ पाता है।

इसी भजन के साथ ही संपन्न होती है आज की आराधना। आज इस कार्यक्रम में आपने अभी अनुपमा देशपांडे, सोनू निगम व साथी लता मंगेशकर और मयंक पटेल बाबू के गाए भजन सुने।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं आज की बात। आज की बात सुनने वालों को ज्योति जाटव का प्यार भरा नमस्कार। आज है 20 मई और आइए जानते हैं इतिहास में आज के दिन की खासियत। श्रोताओं, हर साल 20 मई को विश्व माप विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ये दिन 1875 में पेरिस में मीटर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर होने की याद में और हमारे दैनिक जीवन में मापन विज्ञान के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। ये आयोजन संयुक्त रूप से इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी द्वारा किया जाता है। श्रोताओं, इसका उद्देश्य माप विज्ञान के महत्व और वैज्ञानिक खोजों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और

गुणवत्तापूर्ण जीवन में इसकी भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। भारत में इस दिवस के उपलक्ष्य में CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला और मेट्रोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। वैज्ञानिक मापन की सटीकता और डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कानूनी माप पद्धति प्रक्रियाओं को सरल बनाने हेतु ई मैप पोर्टल भी लॉन्च किया है। श्रोताओं, हर साल ये दिवस एक थीम के साथ मनाया जाता है। इस साल विश्व माप विज्ञान दिवस 2026 का विषय है माप विज्ञान नीति निर्माण में विश्वास का निर्माण, जो पारदर्शी और सूचित निर्णय लेने में सटीक मापों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है। श्रोताओं, हिंदी साहित्य में छायावादी युग के चार स्तंभों में से एक सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 को कौसानी उत्तराखंड में हुआ था। सुमित्रा नंदन पंत नए युग के प्रवर्तक के रूप में आधुनिक हिंदी साहित्य में उदित हुए। सुमित्रा नंदन पंत ऐसे साहित्यकारों में गिने जाते हैं जिनका प्रकृति चित्रण समकालीन कवियों में सबसे बेहतरीन था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णकिरण, स्वर्णधूली, उत्तरा, युगपथ, चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद और लोकायतन आदि। श्रोताओं, पद्म भूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कारों से नवाजे जा चुके पंत जी की रचनाओं में समाज के यथार्थ के साथ साथ प्रकृति और मनुष्य की सत्ता के बीच टकराव भी होता था। 28 दिसंबर 1977 को महाकवि सुमित्रा नंदन पंत का स्वर्गवास हो गया। श्रोताओं, भारतीय सेना के वीर अमर शहीदों में से एक पीरू सिंह शेखावत का जन्म 20 मई 1918 को झुंझुनू राजस्थान में हुआ था। कश्मीर घाटी के युद्ध में सक्रिय रूप से जूझते हुए इन्होंने पीर कांति और लेडीगनी ठिकानों पर अपनी फतह हासिल की थी। 18 जुलाई 1948 में दारापारी के युद्ध में पीरू सिंह ने वीरगति प्राप्त की। इनकी वीरता और बलिदान के लिए इन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। श्रोताओं, भारत के स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में क्रांतिकारी विचारों के जनक बिपिन चंद्र पाल की आज पुण्यतिथि है। इनका जन्म 7 नवंबर 1858 को बंगाल में हुआ था। ये शिक्षक और पत्रकार होने के साथ साथ एक कुशल वक्ता और लेखक भी थे। श्रोताओं, बिपिन चंद्र कांग्रेस के क्रांतिकारी देशभक्तों लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल यानी लाल बाल पाल की तिकड़ी का हिस्सा थे, जिन्होंने 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में जबरदस्त आंदोलन चलाया था। वंदे मातरम पत्रिका के संस्थापक रहे पाल एक बड़े समाज सुधारक भी थे। पाल ने आजादी की लड़ाई के दौरान विदेशी कपड़ों की होली जलाने और हड़ताल जैसे आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई। 20 मई 1932 को बिपिन चंद्र पाल का निधन हो गया। श्रोताओं, भारत की राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान अंजुम चोपड़ा का जन्म 20 मई 1970 को नई दिल्ली में हुआ था। इन्होंने भारतीय महिला क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्रोताओं, इतना ही नहीं, वनडे मैच में 1000 रन बनाने वाली अंजुम चोपड़ा पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। अंजुम चोपड़ा ने 12 टेस्ट, 127 वनडे और 18 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। इन्होंने वनडे में एक सेंचुरी और 18 हाफ सेंचुरी लगाई हैं। श्रोताओं, ये थी आज की बात। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है देशगान।

अभी आप सुन रहे थे देशगान। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:50 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा। कार्यक्रम विविधा सुनने वालों को ज्योति जाटव का प्यार भरा नमस्कार। आज के विविधा कार्यक्रम में हम बात करेंगे विश्व मधुमक्खी दिवस के बारे में, जो आज 20 मई को मनाया जा रहा है। श्रोताओं, जब भी हम मधुमक्खी का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले दो ही चीज़ें आती हैं, मीठा मीठा शहद या फिर उनका तीखा डंक। श्रोताओं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये छोटा सा जीव हमारी पूरी मानव सभ्यता और इस धरती को जिंदा रखने में कितनी बड़ी भूमिका निभाता है। आज इसी के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये दिन आज ही क्यों मनाया जाता है। श्रोताओं, स्लोवेनिया देश के आग्रह पर संयुक्त राष्ट्र ने साल 2017 में इस दिवस को मंजूरी दी और 2018 में इसे पहली बार मनाया गया। 20 मई को एंटोन

जानसा का जन्मदिन होता है, जिन्हें आधुनिक मधुमक्खी पालन का जनक माना जाता है। इन्होंने दुनिया को सिखाया कि कैसे मधुमक्खियों को बिना नुकसान पहुंचाए उनसे शहद लिया जा सकता है और उनके कुदरती चक्र को समझा जा सकता है। और अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, अगर दुनिया में मधुमक्खियां खत्म हो जाएं तो क्या होगा? श्रोताओं, महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था, अगर धरती से मधुमक्खियां गायब हो गईं तो इंसान भी केवल 4 साल ही जिंदा रह पाएगा। लेकिन ऐसा क्यों? श्रोताओं, मधुमक्खियां केवल शहद नहीं बनाती, बल्कि वे दुनिया की सबसे बड़ी परागणक हैं। जब वे फूलों पर बैठती हैं तो उनके पैरों से परागकण चिपक जाते हैं, जिससे पौधों में रिप्रोडक्शन होता है। खाद्य सुरक्षा। श्रोताओं, हम जो खाना खाते हैं, दुनिया की 1/3 फसलें सीधे तौर पर मधुमक्खियों पर निर्भर करती हैं। सेब, बादाम, टमाटर, कॉफ़ी और कई तरह की सब्जियां तब तक नहीं उग सकती जब तक मधुमक्खियां फूलों पर ना बैठें। अर्थव्यवस्था। श्रोताओं, मधुमक्खी पालन से दुनिया भर के करोड़ों किसानों और आदिवासियों की आजीविका चलती है। शहद, मोम और रॉयल जेली जैसी चीज़ों का बहुत बड़ा व्यापार होता है। लेकिन श्रोताओं, आज ये छोटा सा रक्षक खुद बड़े खतरे में है। इंसानी लालच और गलतियों के कारण मधुमक्खियों की संख्या तेजी से घट रही है, जिसके 3 मुख्य कारण हैं। कीटनाशकों का अंधाधुंध इस्तेमाल। श्रोताओं, खेतों में जो केमिकल छिड़के जाते हैं वे इन मासूम जीवों के लिए जहर बन जाते हैं। शहरीकरण। कंक्रीट की जंगल बनाने के लिए हम असली जंगलों और बाग बगीचों को काट रहे हैं, जिससे इनके घर उजड़ रहे हैं। क्लाइमेट चेंज। श्रोताओं, मौसम के बदलते मिजाज के कारण फूलों के खिलने का चक्र बिगड़ गया है, जिससे उन्हें समय पर भोजन नहीं मिल पाता। तो श्रोताओं, अब बात आती है, हम क्या कर सकते हैं? क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? बिल्कुल नहीं। श्रोताओं, सरकारें अपने स्तर पर काम कर रही हैं, लेकिन एक नागरिक के तौर पर हम भी छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं। अपनी बालकनी या छत पर फूलों वाले पौधे लगाएं। रासायनिक खादों की जगह ऑर्गेनिक खेती और बागवानी को बढ़ावा दें। श्रोताओं, हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि मधुमक्खियां इस प्रकृति का वो ताना बाना है, जिसके बिना जीवन का ये खूबसूरत स्वेटर उधड़ जाएगा। तो आइए आज इस विश्व मधुमक्खी दिवस पर हम संकल्प लें कि हम प्रकृति के इस अनमोल उपहार की रक्षा करेंगे। और इसी के साथ ही संपन्न होता है आज का हमारा कार्यक्रम विविधा। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:55 होने को हैं। अब संस्कृत समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे और उसके बाद हिंदी समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डाक्टर् गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। भारतं तथा नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड इत्येते देशाः मिलित्वा स्वद्विपक्षीय सम्बन्धं, हरित प्रौद्योगिकीं, नवाचार रणनीतिक सहयोगं च सुदृढीकर्तुं विचार विमर्शान् कृतवन्तः। प्रधानमंत्री श्री मोदी ह्यः नॉर्वे देशस्य राजधान्यां ओस्लो नगरे तृतीय भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलने भागं गृहीत्वा नॉर्डिक देशानां नेतृभिः सह संयुक्त पत्रकार सम्मेलनं संबोधयन् घोषणामेतां कृतवान्।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो

0: थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: प्रधानमन्त्रिणा मोदिना प्रोक्तं यत् विगत दशवर्षेषु भारतस्य नॉर्डिक देशानां च द्विपक्षीय व्यापारः प्रायः चतुर्गुणं वर्धितः वर्तते।
0: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: प्रधानमन्त्री पुष्टिं कृतवान् यत् भारतस्य नॉर्डिक देशानां च सम्बन्धाः व्यापार आर्थिक सहयोगेन अथ भारत यूरोपीय संघस्य मुक्त व्यापार सन्धिभिः सह सद्यः एव सम्पन्न व्यापार सन्धिभिः नूतन स्वर्णयुगे प्रविष्टाः सन्ति। अस्मिन् अवसरे वदन्तः नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क इत्यादि देशानां प्रधानमन्त्रिणः लोकतन्त्रस्य मूल्यानां नियमाधारित वैश्विक व्यवस्थायाः अद्यतन परिवर्तमान विश्वस्य बहुपक्षीय संस्थासु तत्कालीन परिष्कारस्य च प्रतिबद्धतां पुनरुक्तवन्तः। प्रधानमन्त्री मोदी पञ्चराष्ट्रयात्रायाः पञ्चमे अन्तिमे च चरणे इटली देशस्य राजधानीं रोम नगरम् आगतवान्। भारतस्य समृद्धकला परम्परायाः उत्सवे भव्य सांस्कृतिक संध्यायाः कार्यक्रमे सम्पूर्ण यूरोपतः भारतीय शास्त्रीय संगीतकाराः नर्तकाः च भागं गृहीत्वा प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः स्वागत सत्कारस्य साक्षिणः अभवन्। लोकसभायाः अध्यक्षः ओम बिरला निगम विधि संशोधन विधेयक 20-26 इत्यस्य कृते संयुक्त समितिं घटितवान्। लोकसभा सांसद सुधीर गुप्ता समितेः अध्यक्षरूपेण नियुक्तः वर्तते। समितौ लोकसभायाः 21 सदस्याः विनोद श्रीधर तावडे, सुजीत कुमारः, उज्ज्वल निकाम इत्येतैः सह राज्यसभायाः 9 सदस्याः कमलजीत सहरावत, बैजयंत पांडा, डॉ निशिकांत दुबे इत्येतैः सह निम्न सदनस्य सदस्याः च सन्ति। भारतीय रेलवे विद्युतीकरणस्य दिशि महत्वपूर्ण कार्यं कुर्वन् 99.6% विद्युत् सम्पर्कं प्राप्नोति, यद्धि 73.8 लाख किलोमीटर तः अधिकं यावत् प्राप्तम् अस्ति। अस्मिन् वर्षे मार्च मासपर्यन्तं भारतेन व्यावहारिकरूपेण स्वस्य ब्राड्गेज जालस्य पूर्ण विद्युत्करणं प्राप्य यूरोपीय संघस्य, यूनाइटेड किंग्स, अमेरिका संयुक्त राज्यस्य च प्रमुख रेल व्यवस्थाभ्यः अग्रे स्थितं वर्तते। मणिपुरस्य अपर प्रमुख वस्त्र वाणिज्य उद्योग सचिवः अनुराग वाजपेयी इत्यनेन उक्तं यत् राज्य सर्वकारः राज्यस्य समृद्धानि वस्त्र हस्तकरघा परम्पराणि प्रवर्तयितुं अन्ताराष्ट्रिय विपणिषु निर्यातं कर्तुं च कार्यं कुर्वन् अस्ति। आईपीएल इति 20-20 क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां अद्य सायं 7:30 कोलकाता नाइट राइडर्स दलं कोलकाता नगरे मुंबई इंडियंस दलं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा समाप्त कर इटली पहुंच गए हैं। नॉर्वे की 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। हमारी संवाददाता ने बताया है कि तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री ने भाग लिया।
3: ऑस्लो दौरे में हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, जहाज निर्माण, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए नॉर्डिक देशों को आमंत्रित किया। नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट और कड़ी निंदा की। सारे प्रधानमंत्रियों ने भारत नॉर्डिक देशों के सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला शिखर सम्मेलन फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित किया जाएगा। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी।

0: ओस्लो नॉर्वे।
1: रोम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। यात्रा के दौरान भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में समझौता होने की संभावना है। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया।
2: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की यह योजना 1 जून से प्रभावी होगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। इस योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका है। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया जाएगा। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। इससे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल और पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के AI संचालित होलोबॉक्स स्थापित किए जा चुके हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शनिवार को भारत की 4 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बताया कि श्री रूबियो कोलकाता, आगरा और जयपुर भी जाएंगे। श्री रूबियो 26 मई को क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। क्वाड समूह में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका शामिल हैं। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने सेना खेल नियंत्रण बोर्ड के अंकित और रेलवे के जयेश पाटिल पर 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों खिलाड़ी डोपिंग जांच में विफल रहे थे। अंकित ने 69वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 3रा स्थान और पाटिल ने 5वां स्थान प्राप्त किया था। आरोपों को स्वीकार करने के बाद दोनों खिलाड़ियों के प्रतिबंध की अवधि में 1 साल की कमी कर दी गई है। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। राजस्थान ने 221 रन का लक्ष्य 7 विकेट के नुकसान पर 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 220 रन बनाए थे। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। उत्तर प्रदेश भीषण लू की चपेट में है। प्रदेश में बढ़ता तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। बांदा में तापमान लगातार 3रे दिन 48.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: FM 100.8 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है रूपरेखा हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आज रात्रि 8:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन और रात्रि 9:23 पर चर्चा का विषय है। श्रोताओं, ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। प्रातः 7:10 पर श्रीराम चरितमानस से सुनिएगा 99वां प्रसंग। कुमाऊनी लोकगीत आप सुनते हैं लोकमंजरी कार्यक्रम में प्रातः 7:30 पर और शैलस्वर कार्यक्रम में शाम 5:05 पर। कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकसुर आप सुनेंगे सुबह 11 बजकर

तीस मिनट पर। कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीतों का कार्यक्रम उत्तराखंड के लोकगीत आप सुनते हैं दोपहर 2 बजे। शास्त्रीय संगीत का आनंद लीजिएगा प्रातः 8:30 पर। मिले जुले गीत और गजलों का कार्यक्रम सबरंगों का सुबह 10:05 पर। सुगम संगीत दोपहर 1:15 पर और पुनः सुगम संगीत आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे। दोपहर 12:30 पर घर संसार कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा फिजूल खर्ची को कैसे समझें। साथ ही सुनिएगा हुनर को प्रशिक्षण दे रोजगार से जुड़ती जिंदगियां विषय पर श्रीमती नीमा बिष्ट अध्यक्ष जय शारदा जन कल्याण समिति हल्द्वानी से सुनीता जोशी की क्षेत्र संकलित बातचीत। दोपहर 1:30 पर सुनिएगा एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की 1288वीं कड़ी। दोपहर 2:30 पर खेती की बातें कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे कृषि में सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता विषय पर डॉक्टर पंकज कुमार मिश्रा की वार्ता। शाम 5:15 पर युवाणी कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा खान पान की आदत और आपका स्वास्थ्य। शाम 5:45 पर उत्तरायण कार्यक्रम में चर्चा के विषय होंगे विश्व मधुमक्खी दिवस और मिशन लाइफ जल की बचत। साथ ही सुनिएगा मौन पालन कर कैसे लाभ कमाए विषय पर नारायण सिंह फर्त्याल से प्रमोद कुमार पांडे की भेंट वार्ता। भक्ति संगीत कार्यक्रम में कुछ भक्ति रचनाओं का आनंद लीजिएगा शाम 6:41 पर। शाम 7 बजे ग्राम जगत कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा शोधित बीजों का प्रयोग और चर्चा का विषय होगा मोटे अनाज के फायदे। रात्रि 8 बजे सुनिएगा लोक गाथा नल दमयंती का 9वां भाग। फिल्म संगीत हम आपके लिए लेकर आएंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम गीत निर्झर में सुबह 9:05 पर। सुरबहर कार्यक्रम में सुबह 10:35 पर। सैनिकों के लिए कार्यक्रम में सुबह 11 बजे। मेरी पसंद कार्यक्रम में दोपहर 12 बजे। एक ही फनकार कार्यक्रम में दोपहर 2:45 पर। सदाबहार फिल्मी गीत कार्यक्रम में अपराह्न 3 बजे और फिल्म संगीत कार्यक्रम में शाम 7:40 पर और रात्रि 10:30 पर। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्रीराम चरितमानस से 99वां प्रसंग।

राजा जनक के यज्ञ में धनुष भंग हो चुका है। परशुराम वहां का दृश्य देख क्रोधित हैं। उनके वचनानुसार जिसने शिव का यह धनुष तोड़ा है वो सहस्रबाहु के समान उनका दुश्मन है। परशुराम निरे मुनि और बाल ब्रह्मचारी ही नहीं अत्यंत क्रोधी हैं और विश्व भर में क्षत्रिय कुलनाशक के रूप में विख्यात हैं। अपने भुजबल से उन्होंने कई बार क्षत्रिय वंश का नाश करके पृथ्वी ब्राह्मणों को दे डाली है। क्रोध की चरम सीमा स्वरूप उन्होंने लक्ष्मण को अपना विश्व विख्यात फरसा दिखाया, किंतु लक्ष्मण कौतुकवश खेल ही खेल में मुनि के कुपित वचन सुनते जा रहे हैं। मुनि को भृगुवंशी समझ और यज्ञोपवीत देखकर सब कुछ सहते जा रहे हैं।

श्री रामचरितमानस से अभी आप सुन रहे थे 99वां प्रसंग। गायक कलाकार थे रविंद्र साठे और श्रीकांत पारगांवकर। संगीत निर्देशन था सतीश भाटिया का। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:20 होने को हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल। पहले मुख्य समाचार। पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी का आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बस्तर में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में मानंदा राजजात यात्रा और कुंभ मेले की तैयारियों का विषय प्रमुखता से उठाया। राज्य सरकार ने जिला योजना के तहत सभी 13 जिलों के लिए 1018 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि स्वीकृत की और उत्तराखंड में पेट्रोल डीजल और LPG की आपूर्ति सामान्य। IOCL ने अफवाहों से बचने की अपील की। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेजर जनरल सेवानिवृत्त

0: भुवन चंद खंडूरी का अंतिम संस्कार आज हरिद्वार में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। उनके निधन पर राज्य सरकार ने आज सार्वजनिक अवकाश और 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी का जीवन किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं बल्कि राष्ट्र के प्रति पूर्ण समर्पण की जीवंत गाथा रहा। 1 अक्टूबर 1934 को प्रारंभ हुई उनकी जीवन यात्रा भारतीय सेना के रणक्षेत्रों से लेकर लोकतंत्र के सर्वोच्च मंचों और उत्तराखंड की जनसेवा तक पहुंची, लेकिन हर भूमिका में उनकी पहचान एक ही रही, राष्ट्र प्रथम। 1954 में भारतीय सेना की कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स में कमीशन प्राप्त करने के साथ उन्होंने मातृभूमि की सेवा का जो संकल्प लिया उसे जीवन भर निभाया। उन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध, 1965 और 1971 के भारत पाक युद्धों में देश के लिए अपना कर्तव्य निभाया। सीमा पर बिताए गए वे वर्ष केवल एक सैनिक के साहस की कहानी नहीं है बल्कि उन अनगिनत त्यागों की भी कहानी है जो एक सैनिक का परिवार मौन रहकर करता है। सेना में लगभग 36 वर्षों की गौरवपूर्ण सेवा के दौरान उन्होंने

0: की जीवन यात्रा भारतीय सेना के रण क्षेत्रों से लेकर लोकतंत्र के सर्वोच्च मंचों और उत्तराखंड की जनसेवा तक पहुंची, लेकिन हर भूमिका में उनकी पहचान एक ही रही, राष्ट्र प्रथम। 1954 में भारतीय सेना की कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स में कमीशन प्राप्त करने के साथ उन्होंने मातृभूमि की सेवा का जो संकल्प लिया उसे जीवन भर निभाया। उन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध, 1965 और 1971 के भारत पाक युद्धों में देश के लिए अपना कर्तव्य निभाया। सीमा पर बिताए गए वे वर्ष केवल एक सैनिक के साहस की कहानी नहीं है, बल्कि उन अनगिनत त्यागों की भी कहानी है जो एक सैनिक का परिवार मौन रहकर करता है। सेना में लगभग 36 वर्षों की गौरवपूर्ण सेवा के दौरान उन्होंने नेतृत्व, साहस और कर्तव्य निष्ठा की ऐसी मिसाल स्थापित की कि 26 जनवरी 1982 को उन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। मेजर जनरल के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद भी उन्होंने विश्राम का मार्ग नहीं चुना। 1991 में सार्वजनिक जीवन में प्रवेश कर उन्होंने जनसेवा को अपना नया दायित्व बनाया। खंडूड़ी पहली बार 1991 में गढ़वाल लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। इसके बाद वे कई बार संसद पहुंचे और भाजपा के मजबूत पहाड़ी चेहरे बनकर उभरे। केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में उन्हें सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का दायित्व मिला। ये वही दौर था जब देश में सड़क क्रांति की नींव रखी गई। देश के दूरस्थ गांवों को सड़क से जोड़ने के पीछे खंडूड़ी की प्रशासनिक दृष्टि और सख्ती को आज भी याद किया जाता है। 2007 में उत्तराखंड में भाजपा की सरकार बनने के बाद भुवन चंद्र खंडूड़ी पहली बार मुख्यमंत्री बने। उनका कार्यकाल जीरो टॉलरेंस और सख्त प्रशासन के लिए जाना गया। भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी छवि इतनी मजबूत थी कि सरकारी मशीनरी तक में उनका नाम अनुशासन के प्रतीक के रूप में लिया जाता था। हालांकि उनकी सख्ती कई नेताओं और विधायकों को असहज भी करती रही। 2009 लोकसभा चुनाव में भाजपा के खराब प्रदर्शन की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया, लेकिन पार्टी ने 2011 में फिर उन पर भरोसा जताया और दूसरी बार उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। भुवन चंद्र खंडूड़ी एक ऐसे राजनेता रहे जिनमें सादगी, ईमानदारी और प्रशासनिक दृढ़ता एक साथ दिखाई देती थी। उत्तराखंड राज्य निर्माण के बाद की राजनीति में उनकी भूमिका हमेशा निर्णायक मानी जाएगी। उनके निधन के साथ उत्तराखंड ने एक ऐसा जननेता खो दिया जिसकी पहचान सत्ता से ज्यादा सिद्धांतों और अनुशासन से थी। मजबूत लोकायुक्त कानून, प्रशासनिक सुधार और जनहित को सर्वोच्च रखने का उनका आग्रह सदैव याद रखा जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से आशुतोष उनियाल।
1: केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ के बस्तर में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सहभागिता की। बैठक में राज्यों के बीच बेहतर समन्वय, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने, आधारभूत संरचना के विकास तथा जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने वर्ष 2027 में उत्तराखंड में आयोजित होने वाले विश्व प्रसिद्ध महानंदा राजजात यात्रा और कुंभ मेले की तैयारियों का विषय भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि ये आयोजन देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत से जुड़े महत्वपूर्ण अवसर हैं, जिनके सफल संचालन के लिए केंद्र और राज्यों से समन्वित सहयोग की आवश्यकता होगी। मुख्यमंत्री ने सीमावर्ती राज्यों के बीच समन्वय बढ़ाने, साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण, आपदा प्रबंधन व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा तकनीकी संसाधनों के अधिकतम उपयोग पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि आधुनिक चुनौतियों से निपटने के लिए राज्यों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान और संयुक्त प्रयासों को और मजबूत बनाया जाना आवश्यक है।
2: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे YouTube चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
1: राज्य सरकार ने जिला योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रदेश के सभी 13 जिलों को विकास कार्यों के लिए कुल 1,018,20,60,000 रुपए की धनराशि आवंटित की है। ये राशि जिलों की आवश्यकताओं के अनुरूप निर्धारित की गई है। आवंटित धनराशि में अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत 200,22,10,000 रुपए, अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए 30,07,00,000 रुपए तथा सामान्य मद में 787,97,80,000 रुपए शामिल हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस धनराशि से जिला योजना के माध्यम से स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप आधारभूत संरचना, ग्रामीण विकास, पेयजल, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य जन उपयोगी योजनाओं को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार संतुलित और समावेशी क्षेत्रीय विकास के लिए प्रतिबद्ध है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद

0: उत्तराखंड में पेट्रोल डीजल और एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति जारी है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के राज्य स्तरीय समन्वयक कृष्ण कुमार गुप्ता ने कहा कि तेल उद्योग अपने व्यापक आपूर्ति नेटवर्क के माध्यम से ईंधन की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने बताया कि टर्मिनल डिपो, एलपीजी बॉटलिंग प्लांट और रिटेल आउटलेट के जरिए राज्य भर में आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। सभी पेट्रोल पंपों पर ईंधन वितरण बिना किसी प्रतिबंध के निर्धारित सुरक्षा और परिचालन मानकों के अनुरूप किया जा रहा है। घरेलू उपभोक्ताओं को एलपीजी की आपूर्ति भी सामान्य रूप से जारी है तथा राज्य भर में वितरण व्यवस्था सुचारू बनी हुई है। आईओसीएल ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से ईंधन की खरीद या संग्रहण से बचें। साथ ही ईंधन उपलब्धता से जुड़ी सही और प्रमाणित जानकारी के लिए केवल तेल विपणन कंपनियों के आधिकारिक संचार माध्यमों पर ही विश्वास करें। प्रदेश में गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने हरिद्वार, देहरादून और उत्तरकाशी के आसपास के क्षेत्रों में आज और कल कहीं कहीं लू चलने की संभावना जताई है। इस बीच राजधानी देहरादून में कल आज अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो से तीन दिनों में अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। मैदानी जिलों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क बना रहेगा। वहीं उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश और गरज चमक की संभावना है। इन क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और आकाशीय बिजली चमकने का भी अनुमान है। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर के समय तेज धूप से बचने और पर्वतीय क्षेत्रों में खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है। प्रदेश में चारधाम यात्रा पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ जारी है। राज्य सरकार और पर्यटन विभाग के अनुसार अब तक 16,50,000 से अधिक श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं। देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुँचने से यात्रा मार्गों और धामों में निरंतर रौनक बनी हुई है। और अब एक नज़र समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी के निधन की खबर आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खियों में है। अमर उजाला लिखता है, लंबी बीमारी के बाद पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल खंडूरी का निधन, अंतिम दर्शन आज होंगे। इसी खबर पर दैनिक जागरण की सुर्खी है, चला गया सरहद और सियासत का सच्चा सिपाही, आज हरिद्वार में होगी अंत्येष्टि। हरिद्वार में दो बाघों को जहरीला पदार्थ देकर मारने की घटना भी लगभग सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता के साथ प्रकाशित की गई है। हिंदुस्तान समाचार पत्र के अनुसार इस घटना के संबंध में वन विभाग ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 3 अन्य आरोपी फरार हैं। एक अन्य खबर पर हिंदुस्तान समाचार पत्र लिखता है, उपनल कर्मियों को पक्का करने के लिए सरकार ने उच्च न्यायालय से फिर समय मांगा है। अर्थ जगत की खबरों के साथ दैनिक जागरण लिखता है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाकर विदेशी मुद्रा बचाई जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवनचंद खंडूरी का आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बस्तर में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में मां नंदा राजजात यात्रा और कुंभ मेले की तैयारियों का विषय प्रमुखता से उठाया। राज्य सरकार ने जिला योजना के तहत सभी 13 जिलों के लिए 1,018 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि स्वीकृत की और उत्तराखंड में पेट्रोल डीजल और एलपीजी की आपूर्ति सामान्य। आईओसीएल ने अफवाहों से बचने की अपील की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह्न 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी। कार्यक्रम के आरंभ में आइए सुनते हैं शंकर उप्रेती का गाया कुमाऊनी लोकगीत।

0: उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कमलेश कुमार के गाए कुमाऊनी लोकगीत।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
1: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी। कार्यक्रम के समापन में आइए सुनते हैं कमलेश कुमार के स्वर में ये छपेली।

ककड़ खजाए चिर अरे हुनी रोली भेट हीरा ककड़ खजाए चिर अरे हुनी रोली भेट हीरा ककड़ खजाए चिर।

बेली के साथ ही श्रोताओं, आज का हमारा कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकमंजरी अब यहीं पर संपन्न हुआ। FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 8 बजने को हैं। कुछ ही पलों में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप, आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 1.6% की वृद्धि होगी। नागर विमानन महानिदेशालय ने इस वर्ष के शुरू में तकनीकी गड़बड़ी के बाद एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की आगे की जांच के आदेश दिए। और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप, आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इटली से हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
1: प्रधानमंत्री मोदी इटली की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर कल रात रोम पहुंचे। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। अनंतारा प्लाजो नायदी होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी गर्मजोशी से समुदाय के सदस्यों से हाथ मिलाया। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के संयुक्त लेख में दोनों नेताओं ने कहा है कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक

0: भागीदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: नॉर्वे की दो दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: ओस्लो दौरे में हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, जहाज निर्माण, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए नॉर्डिक देशों को आमंत्रित किया। नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट और कड़ी निंदा की। सारे प्रधानमंत्रियों ने भारत नॉर्डिक देशों के सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला शिखर सम्मेलन फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित किया जाएगा। संगीता गुड़बोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जिनेवा में 19वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और वैश्विक स्वास्थ्य एकजुटता के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वैश्विक स्वास्थ्य का पुनर्निर्माण एक साझा दायित्व विषय पर आयोजित सभा में श्री नड्डा ने संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण पर आधारित सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में भारत की प्रगति का उल्लेख किया।
3: India is accelerating towards universal health coverage.
4: भारत गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का विस्तार करके सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए हमने 185,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए हैं। इसके अलावा हम महामारी की तैयारियों और आपातकालीन राहत के लिए मजबूत और सुदृढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
3: Pandemic preparedness and emergency responses.
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की यह योजना 1 जून से प्रभावी होगी। एक रिपोर्ट।
4: इस योजना के अंतर्गत राशि पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। पात्र महिलाएं आयकर का भुगतान नहीं करती हों और किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत ना हो। नए आदेश के अनुसार लक्ष्मी भंडार योजना के सभी वर्तमान लाभार्थी स्वतः ही अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे। नए आवेदकों के लिए अन्नपूर्णा योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% की बढ़ोतरी हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने कल शाम गुजरात के गांधीनगर में पत्रकारों को ये जानकारी दी।
7: में जो इनपुट मिला है उसमें हमने और का इसको और इम्प्रूव करो और एक रोल मॉडल के रूप में हम पूरे देश में सारे सरकार को हम भेजेंगे, भाई इस रूप में आप हमें अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करके दो। जैसे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट करे, इंडस्ट्रीज में क्या लॉस होता है, प्रोडक्शन का कितना लॉस होता है, लेबर एक तरह से दूसरी तरह माइग्रेट करती है, सबको का अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करें और उसका संकलन करके आगे दे सके।
0: नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की जांच मूल उपकरण निर्माता केंद्र पर महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में करने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय के अनुसार एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान का संचालन इस वर्ष 2 फरवरी को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से बेंगलुरु के लिए उड़ान AIC-132 संचालित करने के बाद रोक दिया गया था। एक रिपोर्ट।
8: यह कार्रवाई पायलट डिफेक्ट रिपोर्ट में दर्ज एक प्रविष्टि के बाद की गई थी। इसमें कहा गया था कि बायां ईंधन नियंत्रण स्विच थोड़ा सा दबाने पर रन से कट ऑफ स्थिति में फिसल जाता है और चयनित स्थिति

0: में ठीक से लॉक नहीं होता है। महानिदेशालय ने कहा कि एयर इंडिया ने मूल उपकरण निर्माता की निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार और महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में ईंधन नियंत्रण स्विच का निरीक्षण और कार्यात्मक परीक्षण किया। निरीक्षण परिणामों और उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा के बाद निष्कर्ष निकाला गया कि ईंधन नियंत्रण स्विच यांत्रिक रूप से डिजाइन के अनुसार कार्य कर रहा था और इकाई को सेवा योग्य घोषित किया। हालांकि महानिदेशालय ने निगरानी के अंतर्गत निर्देश दिया है कि ईंधन नियंत्रण स्विचों का भविष्य में निरीक्षण किया जाए। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया जाएगा। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
2: IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना भी बनी हुई है। राजस्थान रॉयल्स ने 221 रन का लक्ष्य 7 विकेट के नुकसान पर 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। वरिष्ठ भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने भारतीय हॉकी खिलाड़ियों के फिटनेस स्तर की सराहना करते हुए इसे खेल के लिए समर्पण की पहचान बताया है। कोहली ने कहा कि क्रिकेटरों की फिटनेस भारतीय हॉकी खिलाड़ी की फिटनेस के 15% के बराबर भी नहीं है। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय दल की पहली सूची की घोषणा कर दी गई है। यह प्रतियोगिता इस महीने की 25 तारीख से 6 जून तक गोवा में आयोजित की जा रही है। उधर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के अंकित और रेलवे के जयेश पाटिल पर 3 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आया था। अंकित ने राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 3रा स्थान जबकि पाटिल ने 5वां स्थान प्राप्त किया था। दोनों खिलाड़ियों ने आरोपों को स्वीकार कर लिया जिसके परिणाम स्वरूप उनकी अयोग्यता अवधि में 1 वर्ष की कमी हुई है।
1: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में बढ़ता तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। एक रिपोर्ट।
3: राज्य के बुंदेलखंड इलाके का बांदा जिला लगातार 3रे दिन भी देश का सबसे गर्म क्षेत्र बना हुआ है, जहां अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राज्य के अन्य हिस्सों में भी भीषण गर्मी से राहत नहीं मिली है और कई स्थानों पर दिन का अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है और रात के समय भी तापमान 30 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। पारा बढ़ने से आम जनजीवन पर तो असर पड़ा ही है, पशु पक्षी भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश भी भीषण गर्मी की चपेट में है। राज्य में पहली बार पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
4: धन्यवाद विशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा लोकसत्य सहित कई अखबारों में है। भारत नॉर्वे के बीच अंतरिक्ष, हेल्थ, डिजिटल क्षेत्रों सहित 12 समझौते। भारत नॉर्डिक समिट में पीएम मोदी के शब्द, नवभारत टाइम्स में है। आतंकवाद पर हो एक रुख, कोई समझौता नहीं, कोई दोहरा मापदंड नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की इटली यात्रा पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों का साझा लेख, दैनिक जागरण में है। रणनीतिक साझेदारी के युग में भारत और इटली शीर्षक से छपे लेख के अनुसार भारत का तेजी से बढ़ता नवाचार तंत्र और कुशल पेशेवरों की बड़ी संख्या तथा इटली की उन्नत औद्योगिक क्षमता दोनों देशों के सहयोग को स्वाभाविक और रणनीतिक सहयोगी बनाती है। आवारा कुत्तों पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सभी अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, खूंखार कुत्तों को सजाए मौत। शीर्ष न्यायालय ने कहा, बच्चों और बुजुर्गों के जीवन को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकते। राजस्थान पत्रिका ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को दिया है, भयमुक्त जीवन लोगों का अधिकार। नक्सलवाद की तरह 3 वर्ष में हर केस खत्म करने का लक्ष्य, गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान दैनिक भास्कर में है।
1: धन्यवाद आकर्षिता। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3000 रुपए की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. Two leaders to discuss ways to boost cooperation on India-Middle East-Europe economic corridor and review joint strategic action plan 2025-2029. West Bengal government to roll out Annapurna scheme providing 3,000 rupees per month to women aged 25 to 60 years from June 1st. Joint Parliamentary Committee on One Nation, One Election says simultaneous Lok Sabha and Assembly elections can save nearly 7 lakh crore rupees and increase India's GDP growth by 1.6%. DGCA orders further inspection of fuel control switch of an Air India Boeing 787-8 aircraft following technical snag earlier this year. And in IPL cricket, Rajasthan Royals beat Lucknow Super Giants by 7 wickets in Jaipur. Prime Minister Narendra Modi arrived in Rome last night on an official visit to Italy. Mr. Modi was received at the airport by Italy's Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, Antonio Tajani. Later, Italian Prime Minister Giorgia Meloni hosted a dinner in honor of Mr. Modi. After the dinner, PM Modi reached Anantara Palazzo Nayadi Hotel, where a jubilant and cheering Indian diaspora welcomed him. Mr. Modi will hold talks with his Italian counterpart, Giorgia Meloni, President Sergio Mattarella, and discuss with them ways to boost India-Italy cooperation. PM Modi's visit will focus on how to boost India-Italy cooperation, especially focusing on the India-Middle East-Europe Economic Corridor, IMEC. The Joint Strategic Action Plan 2025-2029 will also be reviewed. Mr. Modi will also be visiting the headquarters of the Food and Agriculture Organization, FAO, and strengthening India's commitment to multilateralism as well as global food security. A correspondent covering the Prime Minister's visit has filed this report.
6: Prime Minister Narendra Modi will call on the President of Italy, Sergio Mattarella, at the Quirinal Palace today, where he will be accorded a guard of honor. The day's engagements include delegation-level talks, press statements, exchange of memoranda of understanding, bilateral meetings, and a visit to the Food and Agriculture Organization. Prime Minister Modi will also plant a Morus nigra black mulberry tree, a species that symbolically connects India and Italy through its culinary, medicinal, and agricultural significance. This is Suparna Bhatia from Rome.
5: Earlier yesterday, Indian Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland elevated the bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the third India-Nordic summit in the Norwegian capital, Oslo.
7: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
5: Prime Minister Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in the past decade.
7: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट

अभी आप सुन रहे थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का शहनाई पर बजाया राग देशकार। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं पंडित नरेश मल्होत्रा का राग बैरागी में गाया ख्याल। विलंबित रचना एक ताल में निपत है। बोल हैं हरी नाम ले, द्रुत ख्याल की बंदिश तीन ताल में निपत है। बोल हैं मन सुमिरन इस दिन तुमरो नाम। आपके साथ तबला संगत की है पंकज कुमार चौधरी ने।

अभी आप सुन रहे थे पंडित नरेश मल्होत्रा का राग बैरागी में गाया ख्याल। आपके साथ तबला संगत की थी पंकज कुमार चौधरी ने। और इसी के साथ ही आज का हमारा शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजने को हैं। अब समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप, आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौते होने पर संभावना है। इटली से हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी इटली की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर कल रात रोम पहुंचे। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। एक रिपोर्ट।
2: इस योजना के अंतर्गत राशि पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। पात्र महिलाएं आयकर का भुगतान नहीं करती हों और किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत ना हो। नए आदेश के अनुसार लक्ष्मी भंडार योजना के सभी वर्तमान लाभार्थी स्वतः ही अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे। नए आवेदकों के लिए अन्नपूर्णा योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। कल्याण लाह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने कल शाम गुजरात के गांधीनगर में ये जानकारी दी। नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की जांच मूल उपकरण निर्माता केंद्र पर महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में करने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय के अनुसार इस वर्ष 2 फरवरी को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से बेंगलुरु के लिए उड़ान AIC-132 संचालित करने के बाद एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमानों को संचालन रोक दिया गया था। महानिदेशालय ने कहा कि एयर इंडिया ने मूल उपकरण निर्माता की निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार ईंधन नियंत्रण स्विच का निरीक्षण और कार्यात्मक परीक्षण किया। परिणामों और उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा के बाद निष्कर्ष निकाला गया कि ईंधन नियंत्रण स्विच यांत्रिक रूप से डिजाइन के अनुसार कार्य कर रहा था। इसके बाद इकाई को सेवा योग्य घोषित किया गया। भारतीय रेल ने ब्रॉडगेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका है। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावनाएं बनी हुई हैं। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 220 रन बनाए। जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 5 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में भीषण गर्मी को देखते हुए दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में लू की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:05 हुए हैं। लीजिए अब पेश है परमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्झर।

कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ज्योति जाटव का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कभी कभी ना सब कुछ होते हुए भी दिल में एक अजीब सी खामोशी रह जाती है, जैसे किसी की याद हवाओं में हो लेकिन वो खुद पास ना हो, कुछ एहसास आवाज नहीं करते, बस धीरे धीरे दिल में उतरते रहते हैं, बिल्कुल इस गीत की तरह जो आज की इस सुबह को एक खूबसूरत सा एहसास देने वाला है। तो चलिए श्रोताओं, इस हल्की सी खामोशी और खूबसूरत एहसास के साथ शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की इस खूबसूरत से गीत के साथ।

कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन रहे थे श्रेया घोषाल की आवाज़ में, कृष्णा कॉटेज फिल्म से। गीत नीलेश मिश्रा का था और संगीत अनु मलिक का। फरमाइश करता थे नई दिल्ली टैगोर गार्डन से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा। फूल चिचौली तालुका पंढरपुर से जाकिर मुलाणी, सुमैया मुलाणी, सुबान मुलाणी, समीर मुलाणी, सलमा मुलाणी, मुमताज़ मुलाणी, दिलशाद मुलाणी, नसीर मुलाणी, बानू बी मुलाणी, बादशाह मुलाणी और इनके परिवार के सभी सदस्य। मुताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रत्नमाला सुरलकर और आरती कुमारी। साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली से गुरमीत सिंह मीता। नेहरू चौक पैठण से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती, पूजा, प्रसाद जाधव, सोनल जाधव, बीबी सिया जाधव। जालना शहर से सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम जाधव, सुभाष जाधव, चंदन जाधव, एकनाथ जाधव और संगीता जाधव ने। श्रोताओं लीजिए, अब पेश है धड़कन फिल्म का गीत अलका याग्निक की आवाज़ में। समीर के लिखे बोलों को संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने और इस गीत को सुनवाने का अनुरोध हमें किया है पर्वतीय कॉलोनी रामपुर रोड हल्द्वानी से गंगा सिंह रावत। वीरम गाम गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला भावसार, भावेश, सनी, जैमिन भावसार। नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नोहाकर, निर्मला नोहाकर, विशाल नोहाकर। मलकापुर से नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे, आशीष मुहेरकर। मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा बेरणी से नानाजी लामसे, मीना लामसे, तेजस, जय लामसे और हर्षिता लामसे ने। तो लीजिए, आप सभी की फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं धड़कन फिल्म का ये गीत।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं परमर्शी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्झर। कार्यक्रम का अगला गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के लिए भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा, ईशान छिंपा और पूजा परिहार। गाड़गे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई लोखंडे, प्रतीक्षा लोखंडे, शैलेश लोखंडे, स्वप्निल लोखंडे, रक्षिता लोखंडे और रयांश लोखंडे। नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़ और साई गायकवाड़। जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हीना कौसर। जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, नीरा वर्मा, ज्योति और प्रहलाद वर्मा। हमारे ही सभी श्रोता सुनना चाहते हैं गुनाह फिल्म का गीत अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की आवाज़ों में। आनंद बख्शी और परवीन भारद्वाज के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है आनंद राज आनंद और साजिद वाजिद ने।

और मानसराज, रानीगंज बंगाल से रवि और इंदर, डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये, सनावद एमपी से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बौड़ाना, सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदनी, रोहित, रितु, मुकेश और जगताप, शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना और रचिता खुराना। तो लीजिए पेश है आप सभी की फरमाइश पर दिल का रिश्ता फिल्म का ये गीत।

इस गीत के बाद लीजिए पेश है नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में समीर का लिखा गीत। आवाज अलका याग्निक की है और फिल्म का नाम है दिल का रिश्ता। इस गीत के इंतजार में है तेलीपारा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुणवंती श्रीवास, श्रीमती करुणा श्रीवास, आयुष श्रीवास, विवेक श्रीवास, बीबी आयुषी श्रीवास। कोरबी बेलतरा छत्तीसगढ़ से मोहन सिंह राज, अनीता राज, सुमित सोमू और

0: रहा।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
1: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: अपने फरमाइश के फिल्मी गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से। कार्यक्रम है गीत निर्झर। श्रोताओं लीजिए, पेश है मोहम्मद रफी का गाया, आनंद बख्शी का लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध गीत धर्मवीर फिल्म से। इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी गोस्वामी, शिवन्या गोस्वामी और अनु गोस्वामी, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, भानु प्रकाश, कमला रानी और गीतिका खोरवाल, जिला उज्जैन से विनोद मोड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मोड़त, चेतन नाटा, दिशा कुश मोड़त, पलाड़ी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, तनुजा देवांगन और ईशांत देवांगन ने।

इस गीत के बाद लीजिए पेश है गुरु फिल्म का गीत एआर रहमान, चिन्मय श्रीप्रदा और साथियों की आवाज़ों में। एआर रहमान के संगीत निर्देशन में शब्द रचना गुलजार की है। इस गीत को सुनना चाहते हैं जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, डॉक्टर सहानुभूति चक्रधर, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन। नेपा नगर एमपी से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। अररिया बिहार से फैजल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा प्रवीण और जोनाहुल हुदा। जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा मीना अश्वनी और विपुल कांबड़े। जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू और बेबी आराध्या साहू ने।

0: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स।
3: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
2: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
3: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
1: आप कौन?
4: आरबीआई कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं परमर्शी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्झर। श्रोताओं, लीजिए पेश है निखिल विनय के संगीत निर्देशन में फायज अनवर का लिखा गीत। आवाजें हैं सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल की। फिल्म का नाम है तुम बिन। फरमाइश करता है चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, रतलाम एमपी से जगदीश धाकड़ नायमा, श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़, गंज डुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी और मोहम्मद कलीम अंसारी, छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा, महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे। आप सभी की फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं तुम बिन फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम के समापन में लीजिए पेश है कच्चे धागे फिल्म का गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में। आनंद बख्शी के लिखे बोलों को संगीत से सजाया है नुसरत फतेह अली खान ने। फरमाइश करता है मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित राज और पीयूष कुमार। जालंधर से संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़ और भरत मक्कड़। नरहन स्टेट से लल्लन मिश्रा, नूतन मिश्रा, अमन परासर, बेबी आराध्या और लल्लू पंडित। लाला बाजार अल्मोड़ा से बाबा फरहान, खुशबू, संजू सामिया, आफिया, मुमताज अमान, माही, निलोफर, शन्नू और शब्बू। नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा से मास्टर आलिम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल। आप सभी की फरमाइश पर लीजिए पेश है कच्चे धागे फिल्म का ये गीत।

कुमार सानू और अलका याग्निक के गाए कच्चे धागे फिल्म के इसी गीत के साथ ही श्रोताओं, आज के फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम गीत निर्झर से ज्योति जाटव को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्झर। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजने को हैं। अब समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी इटली की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर कल रात रोम पहुंचे। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनकी इस यात्रा का मुख्य ध्यान भारत और इटली के बीच सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर रहेगा। इस दौरान विशेष रूप से भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर बातचीत होगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान वर्ष 2025 से 2029 के दौरान संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना की भी समीक्षा की जाएगी। एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7 लाख करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने कल शाम गुजरात के गांधीनगर में पत्रकारों को ये जानकारी दी। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। एक रिपोर्ट।
2: इस योजना के अंतर्गत राशि पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। पात्र महिलाएं आयकर का भुगतान नहीं करती हों और किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत ना हो। नए आदेश के अनुसार लक्ष्मी भंडार योजना के सभी वर्तमान लाभार्थी स्वतः ही अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे।

0: नए आवेदकों के लिए अन्नपूर्णा योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान की ईंधन नियंत्रण स्विच की जांच मूल उपकरण निर्माता केंद्र पर महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में करने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय के अनुसार इस वर्ष 2 फरवरी को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से बेंगलुरु के लिए उड़ान AIC-132 संचालित करने के बाद एयर इंडिया का बोइंग 787-8 विमान का संचालन रोक दिया गया था। भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज परमवीर चक्र से सम्मानित कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि 1947-48 के युद्ध में पीरू सिंह का अदम्य साहस, असाधारण वीरता और सर्वोच्च बलिदान भारतीय सैन्य इतिहास के स्वर्णिम अध्यायों में सदा अमर रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में भीषण गर्मी को देखते हुए दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:05 हुए हैं। लीजिए अब पेश है कार्यक्रम सबरंग। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं हसरत जयपुरी की रचना के साथ। आवाजें हैं उस्ताद मोहम्मद हुसैन और उस्ताद अहमद हुसैन की।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: सबरंग कार्यक्रम में आइए आप सुनते हैं सोनू निगम का गाया ये गीत।

0: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
3: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
2: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
3: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
2: आप कौन?
4: आरबीआई कहता है,
0: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरंग। लीजिए पेश है हेमा सरदेसाई की आवाज में ये गीत।

अभिजीत सावंत के गाए इसी नगमे के साथ ही श्रोताओं, आज का हमारा सबरंग कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:30 होने को हैं। अब प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे।

ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप नीताकांत पाल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी का आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ हरिद्वार के खड़खड़ी घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनकी पार्थिव शरीर को सुबह 10 बजे देहरादून स्थित बसंत विहार आवास से भाजपा प्रदेश कार्यालय ले जाया गया, जहां कार्यकर्ता और आम लोग अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में मौजूद हैं। पूर्वाह्न 11 बजे हरिद्वार के लिए अंतिम यात्रा निकलेगी। इस बीच उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज सुबह देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने मेजर जनरल खंडूरी को एक विशिष्ट सैनिक, ईमानदार प्रशासक और जनसेवा के प्रति समर्पित राजनेता बताते हुए कहा कि देश ने एक बड़ी राजनीतिक और सामाजिक हस्ती को खो दिया है। गौरतलब है कि 91 वर्षीय मेजर जनरल खंडूरी का कल सुबह निधन हो गया था। वे लंबे समय से देहरादून के एक निजी अस्पताल में भर्ती थे। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रैबी से संक्रमित लाइलाज बीमारी से ग्रस्त या अत्यधिक खतरनाक कुत्तों को पहली बार मौत का इंजेक्शन दिए जाने की अनुमति दी है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने देश में लावारिस कुत्तों की बढ़ती संख्या की समस्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। न्यायालय ने कहा कि उन क्षेत्रों में कुत्तों को मौत का इंजेक्शन दिया जा सकता है जहां कुत्तों की आबादी खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है और जहां कुत्तों के लगातार काटने और आक्रामक हमलों की घटनाओं से जन सुरक्षा खतरे में पड़ी हो। न्यायालय द्वारा ये आदेश लावारिस कुत्तों के काटने और रैबीज के मामले से जुड़ी मीडिया की खबरों के बाद पिछले वर्ष 28 जुलाई को स्वतः संज्ञान के मामले में जारी किया गया है। इस बीच शीर्ष न्यायालय ने लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थल भेजने और नसबंदी करने से पहले के आदेश को वापस लेने की मांग से जुड़ी याचिकाओं को खारिज कर दिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाएगा। श्री प्रधान ने कहा कि दोबारा परीक्षा सख्त सुरक्षा नियमों के अंतर्गत सुरक्षित, बिना किसी रुकावट और पूरी तरह से पुख्ता तरीके से आयोजित की जानी चाहिए। प्रदेश में चार धाम यात्रा पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ जारी है। राज्य सरकार और पर्यटन विभाग के अनुसार अब तक 16,50,000 से अधिक श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं। देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने से यात्रा मार्गों और धामों में निरंतर रौनक बनी हुई है। यमुनोत्री धाम में 2,78,000, गंगोत्री धाम में 2,77,000, बद्रीनाथ धाम में 4,28,000 और केदारनाथ धाम में 6,65,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि अब तक कुल 37,28,571 श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीकरण कराया है। पर्यटन मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और सुगम दर्शन व्यवस्था के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में VIP दर्शन पर रोक लगाई गई है ताकि आम श्रद्धालुओं को सुगमता से दर्शन मिल सके। यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य, परिवहन, पेयजल और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को भी मजबूत किया गया है। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की कि वे मौसम की जानकारी लेकर ही यात्रा करें और प्रशासन द्वारा जारी राज्य में 15 फरवरी से शुरू हुए फॉरेस्ट फायर सीजन के दौरान अब तक 295 स्थानों पर आग लगने की घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिनमें 239.47 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। वन विभाग के आंकड़ों के अनुसार आग की सबसे अधिक घटनाएं गढ़वाल क्षेत्र में दर्ज की गई। आग से करीब 3.5 हेक्टेयर प्लांटेशन क्षेत्र भी प्रभावित हुआ है। वन विभाग आग

0: नियंत्रण के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चला रहा है। प्रदेश में 1438 फॉरेस्ट फायर स्टेशन सक्रिय किए गए हैं, जबकि 5600 से अधिक फॉरेस्ट फायर वॉलेंटियर आग बुझाने के कार्य में सहयोग कर रहे हैं। इसके अलावा करीब 40 मास्टर फायर कंट्रोल रूम भी स्थापित किए गए हैं। विभाग का मुख्य फोकस रिहायशी क्षेत्रों के आसपास लगने वाली आग को समय रहते नियंत्रित करना है, ताकि जनधन की हानि को रोका जा सके। कुमाऊं मंडल के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले बागेश्वर जिले को जल्द ही एक अत्याधुनिक राज्य अतिथि गृह की सौगात मिलने जा रही है। राज्य संपत्ति विभाग ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को प्रशासनिक आवश्यकताओं के साथ ही पर्यटन और स्थानीय सांस्कृतिक पहचान से भी जोड़ने का निर्णय लिया है। लगभग 17,52,00,000 रूपये की लागत से 45 नाली भूमि पर प्रस्तावित इस अतिथि गृह को उत्तराखण्ड की पारंपरिक पहाड़ी वास्तुकला के अनुरूप विकसित करने पर विशेष जोर दिया गया। आवास और राज्य संपत्ति सचिव डॉ आर राजेश कुमार ने देहरादून में आयोजित बैठक में कहा कि भवन का स्वरूप पर्यावरण के अनुकूल हो तथा उसमें स्थानीय स्थापत्य कला की झलक दिखाई दे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 1:05 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:35 हुए हैं। निजी पेश है शीर्ष गीतों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरबहार। श्रोताओं, हमारा आज का शीर्षक है बिंदिया।

कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ज्योति जाटव का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, क्या कभी सोचा है कि मिट्टी के घरौंदे से लेकर आसमान के चांद तक सबसे ज्यादा चमक कहाँ होती है? कुछ लोग कहेंगे सितारों में, कुछ कहेंगे किसी के ख्वाबों में, लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए तो सबसे खूबसूरत चमक उस छोटी सी बिंदिया में होती है जो किसी के माथे पर सजकर पूरी कायनात को फीका कर देती है। वो बिंदिया सिर्फ एक श्रृंगार नहीं है, वो तो एक पूरी दास्तान है, प्यार की, इंतजार की और उस हसीन इकरार की जो बिना कुछ कहे ही सब कुछ बयां कर देता है।

श्रोताओं, कभी कभी ठहर कर जिंदगी को करीब से देखना कितना खूबसूरत लगता है ना। हम अक्सर बड़ी बड़ी खुशियों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन दिल का सुकून छुपा होता है बहुत छोटी छोटी चीज़ों में, जैसे सावन की पहली बूंद, पुरानी यादों का कोई पन्ना, या फिर किसी के माथे पर सजी वो एक छोटी सी गोल बिंदिया। वो बिंदिया जो सिर्फ एक श्रृंगार नहीं है, बल्कि सादगी की वो जुबान है जो बिना कुछ कहे भी देखने वाले के दिल में एक अजीब सी तसल्ली भर देती है।

0: उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरबहार। आज इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं शीर्षक गीत पर आधारित फिल्मी गीत और हमारा आज का शीर्षक है बिंदिया। श्रोताओं, कहते हैं खूबसूरती कपड़ों या गहनों में नहीं, इंसान की सादगी में होती है और उस सादगी को मुकम्मल करती है एक छोटी सी बिंदिया। जब कोई लड़की आईने के सामने ठहर कर मुस्कुराते हुए अपने माथे पर एक छोटा सा बिंदु सजाती है, तो मानो वो सिर्फ खुद को नहीं संवारती बल्कि अपने आसपास के पूरे माहौल को एक पावन, एक खूबसूरत एहसास से भर देती है। वो एक छोटा सा रूप बरसों पुराने उस क्लासिक रोमांस की याद दिला देता है जहाँ मोहब्बत आँखों से शुरू होकर रूह तक जाती थी।

0: न उड़ा दे तो कहना।
1: श्रोताओं, आज भी जब कोई किसी को बेहद सादगी में माथे पर एक छोटी सी बिंदिया के साथ देखता है तो दिल बस देखता ही रह जाता है। वो पल किसी मुशायरे की वो खूबसूरत नज्म बन जाता है जिसे बार बार सुनने का मन करे। श्रोताओं, ये बिंदिया गवाह है उस सम्मान की, उस ठहराव की और उस बेइंतहा मोहब्बत की

जो आज के इस दौर में भी बेहद प्योर और सच्ची है। ये बिंदिया सिर्फ दिलों को धड़काती नहीं, बल्कि उन्हें एक आदर और सुकून से भी भर देती है।

श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में आपने अभिमान, दो रास्ते, लम्हे और दिल ने जिसे अपना कहा फिल्मों के गीत सुने। इसी गीत के साथ ही आज के सुरबहार कार्यक्रम से ज्योति जाटव को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरबहार। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11 बजे हैं। लीजिए पेश है सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में हकीकत फिल्म से। गीत कैफ़े आज़मी का था और संगीत मदन मोहन का। लीजिए पेश है बप्पी लहरी के संगीत निर्देशन में अनजान का लिखा गीत। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की। फिल्म का नाम है आज का अर्जुन।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए। सैनिक भाइयों, लीजिए पेश है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर और अनूप जलोटा की। फिल्म का नाम है एक दूजे के लिए।

आइए अब सुनते हैं गदर फिल्म का गीत उदित नारायण और अलका याग्निक और एस निहार की आवाज़ों में, उत्तम सिंह के संगीत निर्देशन में, शब्द रचना आनंद बख्शी की है।

कार्यक्रम के समापन में लीजिए पेश है बलमा फिल्म का गीत आशा भोसले और कुमार सानू की आवाजों में। समीर के लिखे बोलों को संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए, FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक सुर। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं सुरेश प्रसाद के गाए कुमाऊनी लोकगीत के साथ।

आशा भोसले और कुमार सानू के गाए बलमा फिल्म के इसी गीत के साथ ही सैनिक भाइयों, फिल्म संगीत के कार्यक्रम सैनिकों के लिए संपन्न करने की हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक सुर। और इसी क्रम में, इस कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं एक गढ़वाली लोकगीत। गायिका हैं अनीशा गोसाई।

अभी श्रोता सुन रहे थे कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक सर लोक सुर। मध्याह्न के 12 बजे और इस समय हम श्रोताओं के लिए लेकर आते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद।

उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

मेरी पसंद के सभी श्रोताओं को अंजु पांक्ति का स्नेहिल नमस्कार। श्रोताओं, भारतीय सिनेमा और साहित्य का बहुत पुराना रिश्ता है और बेहद गहरा भी रहा है। हिंदी फिल्मों के कई महान निर्देशक और लेखक समय समय पर भारतीय उपन्यासों, कहानियों और साहित्यिक रचनाओं से प्रेरणा लेते रहे हैं। इन फिल्मों ने न केवल दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया बल्कि समाज, रिश्तों, भावनाओं और इंसानी संघर्षों को भी बेहद खूबसूरती के साथ दर्शाया है। कुछ फिल्में अपनी मूल साहित्यिक स्रोत के काफ़ी करीब रहीं, जबकि कुछ ने कहानी को आधुनिक समय और नए सिनेमाई अंदाज में ढालकर प्रस्तुत किया। लेकिन हर स्थिति में इन फिल्मों ने ये साबित किया कि एक मजबूत साहित्यिक आधार किसी न किसी फिल्म को कालजयी बना सकता है। आज उन्हीं महान रचनाकारों की कहानी पर बेस्ड या फिर कहिए प्रेरित फिल्मों से चुनिंदा नगमे सहेज कर मेरी पसंद में हम लेकर आए हैं। तो होंगी कुछ बातें फिल्म की, रचनाकारों की और कलाकारों की। तो सबसे पहले चलते हैं गोल्डन एरा में, और इस दौर की बात करें तो साल 1962 में साहेब, बीबी और गुलाम सिनेमाई पर्दे पर सबसे दर्द भरी और कलात्मक फिल्मों की एक खूबसूरत दास्तां रही। भारतीय सिनेमा के इतिहास में ये फिल्म ना केवल एक फिल्म कही जा सकती है बल्कि कला का उत्कृष्ट नमूना प्रस्तुत किया गया है इस फिल्म में। और ये फिल्म साहेब, बीबी और गुलाम भारतीय समाज के सामंतवादी पतन, अकेलेपन, प्रेम और महिलाओं की पीड़ा को बेहद गहराई से प्रस्तुत करती है। यह फिल्म सुप्रसिद्ध बांग्ला उपन्यासकार बिमल मित्रा के उपन्यास पर आधारित फिल्म थी, और ये उपन्यास बंगाल के जमींदारी प्रथा, सामंतवादी प्रथा के पतन और उस दौर की सामाजिक परिस्थितियों को बेहद खूबसूरती से दर्शाती है। इस फिल्म के निर्देशक थे अबरार अलवी, निर्माता गुरुदत्त, और इस फिल्म में मुख्य कलाकार स्वयं गुरुदत्त थे। मीना कुमारी, रहमान, वहीदा रहमान मुख्य भूमिकाओं में थीं। और इस फिल्म की कहानी की बात करें तो भूतनाथ नाम का एक युवक, जो कि गुरुदत्त ने अभिनय किया है भूतनाथ का, उसके इर्द गिर्द घूमती है, जो एक बड़े ज़मींदार परिवार से जुड़ता है, और वहीं उसकी मुलाकात छोटी बहू यानी मीना कुमारी से होती है, जो अपने पति का प्रेम पाने के लिए वो भरसक प्रयास करती है लेकिन वो कामयाब नहीं होती है, और पति बुरी आदतों में डूबा है, जबकि छोटी बहू अकेले

पन और भावनात्मक पीड़ा से जूझ रही है। पति को अपने पास रोकने के लिए वो यहाँ तक कि खुद शराब पीना शुरू कर देती है और यहीं से उसकी जिंदगी दुख और विनाश की ओर बढ़ने लगती है। और मीना कुमारी की बात करें श्रोताओं, तो इस फिल्म में छोटी बहू के किरदार को उन्होंने इतनी गहराई और दर्द के साथ निभाया कि ये भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे महान परफॉर्मेंसेस में से एक गिनी जाती है। मीना कुमारी ने अपने अभिनय के जरिए आंखों का दर्द, संवादों की उदासी और भावों को गहराई से जिस कदर प्रस्तुत किया, वो आज भी हम जब भी इस फिल्म को देखेंगे या देखते हैं तो दर्शकों को बेहद प्रभावित करती है और दिल को छू लेता है उनका अभिनय। उन्हें अक्सर ट्रेजेडी क्वीन कहा जाता है और ये फिल्म उस उपाधि का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। और इस फिल्म में एक तरह से संदेश भी दिया गया कि छोटी बहू का जो किरदार है उस दौर की महिलाओं की जो वो भावनात्मक रूप से जो पीड़ा से वो पीड़ित हैं उसको दर्शाता है, अकेलेपन को दर्शाता है। सिर्फ जेवरात, पैसा यही सब कुछ नहीं होता है, रिश्तों में जो एक अपनापन, गर्माहट होती है उसको महसूस करने की बात इस फिल्म में दिखाई गई है। और ये फिल्म ये भी दर्शाती है कि एडिक्शन किस तरह से इंसान की ज़िंदगी को तबाह कर सकता है। और संगीत की बात करें तो यादगार गीत रहे और इस फिल्म का जो गीत संगीत हो या फिर ये पूरी फिल्म अपने आप में क्लासिक फिल्म है। न जाओ सैया, पियासो जिया और साकिया आज मुझे जैसे कई गाने हैं जो इस फिल्म में प्रस्तुत किए गए थे। और मेरी बात रही मेरे मन में जैसे कई गाने हैं और इन गीतों में दर्द और भावों को बहुत ही खूबसूरती से व्यक्त किया गया है। और इस इमोशनल स्टोरी टेलिंग की इस फिल्म में बहुत प्रशंसा हुई। आज भी हम कह सकते हैं कि ये मॉडर्न बॉलीवुड की सबसे ख़ास फिल्मों में से एक रही है। तो आइए इस फिल्म का एक खूबसूरत गाना आपको सुनवाते हैं। ये क्लासिक ट्रेजेडी फिल्म रही और इस फिल्म को इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत सराहना मिली और भारतीय सिनेमा के गोल्डन एरा की ये सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में शामिल है।

0: सुहाग।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
1: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की नगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, अब चलते हैं साल 1965 की ओर और इस साल बहुत ही मशहूर फिल्म प्रदर्शित हुई गाइड, और भारतीय सिनेमा की सबसे महान फिल्मों में से ये एक मानी जाती है। और इस फिल्म की जो मूल प्रेरणा ली गई वो थी आर के नारायण जाने माने लेखक के नॉवल द गाइड से। इस फिल्म के निर्देशक थे विजय आनंद, निर्माता देव आनंद, मुख्य कलाकार थे देवानंद वहीदा रहमान। और फिल्म की कहानी की बात करें तो गाइड की कहानी राजू, जिस किरदार को देवानंद ने निभाया था, टूरिस्ट गाइड के इर्द गिर्द घूमती है, जिसकी मुलाकात रोजी नाम की एक विवाहित महिला से होती है। और इस किरदार को निभाया वहीदा रहमान ने। रोजी अपने पति के साथ खुश नहीं है और अपनी ज़िंदगी को वो एक तरह से दुखी होकर व्यतीत कर रही है, और एक नृत्यांगना वो अपनी ज़िंदगी में बनने का ख्वाब संजोए हुए है। ऐसे में राजू उसकी मदद करता है और दोनों के बीच धीरे धीरे प्रेम पल्लवित पुष्पित होता है। धीरे धीरे ये कहानी बढ़ती है और फिर महत्वाकांक्षा, लालच, गलतफहमी और आध्यात्मिक पथ की ओर ये कहानी बढ़ती है। फिल्म का अंतिम भाग भारतीय सिनेमा के सबसे गहरे और दार्शनिक क्लाइमैक्स में गिना जाता है। और इस फिल्म की बात करें तो ये फिल्म भी अपने समय से काफ़ी आगे की फिल्म मानी जाती है, क्योंकि इस फिल्म में महिलाओं की आत्मनिर्भरता की बात की गई है, विवाहेतर संबंधों को गंभीरता से प्रस्तुत किया गया और आध्यात्मिक पथ को सिंबॉलिक तरीके से दर्शाया गया। एसडी बर्मन का बहुत ही मीठा संगीत आज भी अमर है और इस फिल्म के बेहद चर्चित गाने रहे आज फिर जीने की तमन्ना है, तेरे मेरे सपने, दिन ढल जाए या फिर पिया तो से।

श्रोताओं, अब साल 2005 की ओर चलते हैं और इस साल बेहद प्रसिद्ध फिल्म रिलीज हुई, नाम था परिणीता। ये जाने माने बांग्ला साहित्यकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास पर आधारित फिल्म थी और ये उपन्यास पहली बार 1914 में प्रकाशित हुई थी और बांग्ला साहित्य की सबसे सुप्रसिद्ध प्रेम कहानियों में गिना जाता है इस उपन्यास को। ये कहानी भारतीय मध्य वर्गीय समाज, पारिवारिक रिश्तों और प्रेम के त्यागपूर्ण रूप को बेहद सहज, सरल और खूबसूरती के साथ ये फिल्म दर्शाती है। इस फिल्म के निर्देशक थे प्रदीप सरकार, निर्माता विधु विनोद चोपड़ा, मुख्य कलाकार थे विद्या बालन, सैफ अली खान, संजय दत्त, राइमा सेन। इस फिल्म की कहानी साल 1960 के कोलकाता की पृष्ठभूमि में दिखाई गई है। ललिता एक साधारण लेकिन संस्कारी लड़की होती है, जिस किरदार को विद्या बालन ने निभाया। वो अपने मामा के घर रहती है और उसके पड़ोस में रहने वाला शेखर, जिस किरदार को निभाया सैफ अली खान ने, एक अमीर परिवार से ताल्लुक रखता है। दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, दोस्ती होती है, धीरे धीरे उनके बीच प्रेम पनपने लगता है। लेकिन सामाजिक स्थिति, पारिवारिक अहंकार, गलत फहमियाँ उनके रिश्ते के बीच दीवार बन जाती है। तो ये फिल्म ना केवल एक

रोमांटिक फिल्म है, बल्कि ये इमोशनल कमिटमेंट और सेक्रीफाइस के रूप में प्रस्तुत की गई है। और फिल्म की ख़ास बात यह है कि ये फिल्म विद्या बालन की बॉलीवुड की डेब्यू फिल्म थी। इसमें उनकी सादगी, खूबसूरत भाव भंगिमाएँ और उनका जो सौम्य, उनका एक चरित्र इस फिल्म में दर्शाया गया। इस फिल्म के ज़रिए वो रातों रात स्टार बन गई। और इस फिल्म में पुरानी कोलकाता को बेहद खूबसूरती के साथ दर्शाया गया है, पुराना माहौल और पूरा जो एक सेट था उसमें माहौल जो है वो पुराने वक्त का उन्होंने दर्शाया था। और ये अपने आप में बड़ी कमाल की फिल्म थी। संगीत की बात करें तो इस फिल्म का संगीत भी बेहद मधुर और दिल को छू लेने वाला था। पिया बोले, कस्तो मज़ा और कैसी पहेली है ये जिंदगानी जैसे कई खूबसूरत गीत इस फिल्म में आपको सुनने को मिले, हमको सुनने को मिले। बहरहाल एक खूबसूरत गाना हम इसी फिल्म से आपको सुनवाते हैं। और इस फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों का ही खूब प्यार मिला। ख़ास तौर पर इसमें जो अदायगी की गई थी, सिनेमाटोग्राफी की बात करें और चाहे संगीत की बात करें, सभी कुछ इस फिल्म में ज़बरदस्त था। तो आइए सुनते हैं इस फिल्म का एक खूबसूरत सा गाना।

नॉवल पर केंद्रित फिल्म जो कि 5.1 पर आधारित थी, ये फिल्म आई 3 इडियट्स। इस फिल्म के निर्देशक थे राजकुमार हिरानी। मुख्य कलाकार इस फिल्म में थे आमिर खान, आर माधवन, शर्मन जोशी, करीना कपूर और बोमन ईरानी। ये फिल्म की कहानी की बात करें तो 3 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की ये कहानी है जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर केंद्रित रही। और इस फिल्म में एक स्टूडेंट की ज़िंदगी में उसकी जो तनाव है, प्रतिस्पर्धा है, तो इन सब को बड़ी ही खूबसूरती से दर्शाया गया। रेंचो नाम का जो कैरेक्टर, किरदार इस फिल्म में था, उसको ज़िंदगी को देखने का उसका एक अलग नज़रिया और अपने दोस्तों को वो कितना कुछ सिखाता है, ये इस फिल्म में दर्शाया गया है। और इस किरदार को निभाया आमिर खान ने, और जो दो दोस्त थे वो आर माधवन और शर्मन जोशी थे। और ये फिल्म एक कॉमेडी ड्रामा ही नहीं थी बल्कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल थी, और युवाओं के लिए खासकर ये प्रेरणा प्रतीक बनी ये फिल्म। और ये पूरे हमारे देश में नहीं, विदेशों में भी इस फिल्म को अच्छी खासी प्रसिद्धि मिली। और इस फिल्म के जो यादगार संवाद थे, जैसे ऑल इज़ वेल हो या फिर सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो, जैसे जो संवाद थे वो यादगार बने और बेहद चर्चित रहे युवाओं में आपस में बोलने के लिए। तो इसे फिल्म का एक गाना आपको सुनवाते हैं, ऑल इज़ वेल।

बहनों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के घर संसार कार्यक्रम में। आज मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो दोस्त सुनीता जोशी। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा स्नेही भरा नमस्कार। बहनों, कैसी हैं आप? हम तो यही उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगी, प्रसन्न होंगी और अपने परिवार के साथ अपना भी ख्याल रख रही होंगी। बहनों, आज के कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ खास बातें, सीख और अनुभव, और साथ ही आपको सुनवाएंगे कुछ खूबसूरत फिल्मी गीत। तो आइए निकालिए कुछ पल अपने लिए और जुड़े रहिए हमारे साथ आधे घंटे के इस खूबसूरत सफर में। बहनों, आज हम आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर घर और हर परिवार से जुड़ा है और जिसका पता हमें तब चलता है जब हमारे घर का बजट बिगड़ जाता है। बहनों, वो है फिजूल खर्ची, और फिजूल खर्ची को समझना बहुत ज़रूरी है। बहनों, आज के समय में जितना ज़रूरी पैसे कमाना है, उतना ही ज़रूरी है समझदारी से खर्च करना। बहनों, आए दिन हमें किसी न किसी समस्या का सामना करना ही पड़ता है, और ऐसे में अगर हम बिना सोचे समझे पैसे खर्च कर देते हैं तो महीने के अंत तक हमारे घर खर्च का बजट गड़बड़ा जाता है, और कई बार हम छोटी छोटी चीज़ों पर बिना सोचे पैसे खर्च कर देते हैं। उस समय तो हमें लगता है कि ये खर्च बहुत छोटा है, लेकिन धीरे धीरे यही छोटी छोटी फिजूल खर्ची घर के बजट को बिगाड़ देती है। बहनों, एक समझदार महिला केवल घर ही नहीं संभालती बल्कि घर की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत बनाती है। इसलिए ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि कौन सा खर्च ज़रूरी है और कौन सा केवल दिखावे या आदत की वजह से हो रहा है। पहले जिन चीज़ों की हमें वास्तव में ज़रूरत नहीं होती, अगर हम ऐसी चीज़ों पर पैसा खर्च करते हैं तो वो फिजूल खर्ची होती है। जैसे हम फैशन के लिए बिना ज़रूरत के बार बार नए नए कपड़े खरीद लेते हैं, या डिस्काउंट के लालच में आकर बिना ज़रूरत ऑनलाइन सामान मंगा लेते हैं, और कभी कभी हम खाने पीने की चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा खरीद लेते हैं, जिससे सही समय पर उनका उपयोग न करने से वे खराब हो जाती हैं, और कई बार हम देखा देखी भी अनावश्यक चीज़ों पर खर्च कर देते हैं और हमें लगता है कि इतना सा खर्च करने से क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन बहनों, यही छोटे छोटे खर्च धीरे धीरे हमारी बचत में कमी करते हैं। बहनों, फिजूल खर्ची से एक ओर जहां हमारी बचत कम हो जाती है जिससे ज़रूरत के समय पैसों की कमी हो जाती है, तो वहीं दूसरी ओर हमारा मानसिक तनाव भी बढ़ता है और कभी कभी कर्ज लेने की भी नौबत आ जाती है। बहनों, फिजूल खर्ची से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम हर महीने ये तय करें कि हमें कितना पैसा किन चीज़ों पर खर्च करना है, और ज़रूरत और इच्छा में फ़र्क समझना भी ज़रूरी है। बहनों, पहले ज़रूरत पूरी करें, फिर इच्छा के बारे में सोचें। फिजूल खर्ची से बचने के लिए बाज़ार जाते समय पहले से सामान की सूची बना लें, इससे आप फालतू चीज़ें खरीदने से बचेंगे। बहनों, बच्चों को भी पैसों की कीमत बताना बहुत ज़रूरी है ताकि वे जिम्मेदार बने और उनमें बचत करने की आदत विकसित हो सके। बहनों, सच्ची खुशी महंगी चीज़ों में नहीं बल्कि संतोष और समझदारी में होती है, इसलिए दिखावे से दूर रहें। बहनों, फिजूल खर्ची रोककर हम अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित बना सकते हैं और परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बना सकते हैं। बहनों, समझदारी से किया गया खर्च और छोटी छोटी बचत जीवन में बड़ी खुशियां ला सकती हैं। बहनों, ये तो थी कुछ बातें फिजूल खर्ची को कैसे समझें विषय पर, और अब कार्यक्रम में करते हैं आपका मनोरंजन और सुनवाते हैं आपको ये गीत।

अभी श्रोता सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद। हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं। दिन के 12:30 हुए हैं। अब बहनें सुनेंगी घर संसार।

बहनों आप सुन रही हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम घर संसार। बहनों जब किसी महिला के हाथ में हुनर आता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और जब अपने हुनर से वो रोजगार से जुड़ती है तो वो आत्मनिर्भर बनती है और उसका परिवार भी मजबूत बनता है। और बहनों जब इसी तरह दिव्यांगजन अपनी क्षमता पहचान कर अपने पैरों पर खड़े होते हैं तो ये केवल उनका ही नहीं बल्कि उनके परिवार और समाज का

0: भी सम्मान बढ़ाता है। इन्हीं प्रेरणादायक प्रयासों को आगे बढ़ा रही हैं जय शारदा जन कल्याण समिति की अध्यक्ष श्रीमती नीमा बिष्ट। आज हम उनसे जानेंगे कि इस सेवा की शुरुआत उन्होंने कैसे की और किन चुनौतियों का सामना उन्हें करना पड़ा और किस तरह उनका संगठन लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है। तो आइए सुनते हैं, हुनर को प्रशिक्षण दे रोजगार से जुड़ती जिंदगियां विषय पर उनसे की गई हमारी ये क्षेत्र संकलित बातचीत। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम घर संसार में।
1: जी सर, नमस्कार।
0: नमस्कार मैम, हम सबसे पहले आपके काम के बारे में जानना चाहेंगे कि आप क्या काम करती हैं?
1: मैं एक अपनी एनजीओ चलाती हूँ।
0: एनजीओ खोलने का विचार आपके मन में आया कैसे?
2: मैम, इच्छा तो बचपन से थी, लेकिन ये पता नहीं था कि एनजीओ कैसे बनाई जाती है। जब मैं मास्टर ऑफ सोशल वर्क की डिग्री ले रही थी तो उसमें हमारा एक थर्ड सेमेस्टर जब आता है
0: जी,
2: तो उसमें एनजीओ मैनेजमेंट करके एक पार्ट है, जो एनजीओ मैनेजमेंट वाला पार्ट मैंने पढ़ा, तो मैंने उसको देख कर ही खुद की एनजीओ बना ली।
0: अच्छा, खुद आपने शुरू कर लिया?
2: मैंने खुद शुरू करी, मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया।
0: तो शुरू में तो आपने इसको अकेले ही शुरू किया होगा?
2: मैम, अकेले ही शुरू किया और हस्बैंड से सहयोग लिया, वो भी मेरा ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पाए थे उस समय, क्योंकि घर की परिस्थितियां भी ऐसी नहीं थी कि वो मेरे पीछे ही अपना पूरा समय दे दें। पर मेरी इच्छा थी कि मैं इसको आगे बढ़ाऊं, तो मैंने अपने जो मुझे अपने खर्चे के लिए पैसे मिलते थे वो भी मैं सीमा लगा देती थी।
0: तो शुरू शुरू में तो आपको बड़ी परेशानी और बड़ी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा होगा?
2: बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा मैम, क्योंकि जब हम एनजीओ बनाते हैं तो उसकी हर साल में ऑडिट रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है, और ऑडिट रिपोर्ट को तैयार करने के लिए भी बजट की जरूरत होती है, लेकिन हस्बैंड भी उतना नहीं कर पाते थे उस वक्त। लेकिन अब धीरे धीरे जब उनको लगा कि ये अच्छा काम कर रही है, और तब मेरा सपोर्ट करना शुरू किया। लेकिन 3 साल एनजीओ को मैंने अपने अकेले के दम पर चलाई है 3 साल, उसके बाद थोड़ा हस्बैंड ने सपोर्ट किया।
0: तो एक महिला होकर आपने ये रास्ता चुना?
2: जी मैम।
0: इसके पीछे आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या थी?
2: मेरी ताकत तो मेरी शिक्षा थी और मेरी सोच जो मेरी मम्मी ने दी थी मुझे, मेरी मम्मी के संस्कार जो थे उनने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है।
0: जी, अपनी एनजीओ में और कौन कौन से काम करती
1: हूँ? एनजीओ के द्वारा मैं महिलाओं को अपनी एनजीओ से जोड़ती हूँ और उनके हुनर के हिसाब से उनको प्रशिक्षण देती हूँ।
0: जी मैम।
1: और उसके बाद उनको स्वरोजगार से जोड़ने का कार्य करती
0: हूँ। जी मैम।
1: जो वृद्ध महिलाएं हैं उनके लिए भी हम करते हैं। कुछ ऐसा क्षेत्र भी होता है कि जहाँ पर वृद्ध महिलाएं होती हैं और उनको जानकारी का अभाव होता है, तो वो महिलाएं अपनी पेंशन तक नहीं लगा पाती हैं, क्योंकि वो उनको उसकी नॉलेज ही नहीं होती है। तो इसलिए मैं उन क्षेत्रों में जा जा करके उन महिलाओं की सारे जितने भी उनके डॉक्यूमेंट होते हैं वहाँ पर लगने के लिए वो भी बनवाती हूँ।
0: जिन महिलाओं को आप ट्रेनिंग देती हैं उनकी रुचि को आप कैसे समझती हैं? क्योंकि आपने कहा कि हम महिलाओं की रुचि के अनुसार उनको ट्रेनिंग देते हैं।
1: मैम, हम पहले ना जैसे जिला उद्योग केंद्र के द्वारा एक 2 दिवसीय प्रशिक्षण आता है
0: जी,
1: 2 दिवसीय जो उद्यमिता विकास प्रशिक्षण होता है वो हमें उनको जागरूक करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में हम लोग शिविर लगाते हैं। शिविरों में हम जाते हैं, वहाँ पर हम अपने जो हमारे एनजीओ के क्रियाकलाप हैं और जो हम प्रशिक्षण देते हैं उनके बारे में अगर हम बताते हैं तो वो लोग खुद ही कहते हैं कि मुझे ये करना है और मुझे ये करना है करके खुद बताते हैं।
0: अच्छा, महिलाएं स्वयं ही बताती हैं कि हम ये काम करना चाहते हैं।
1: उनके हुनर के हिसाब से हम कहते हैं उनसे कि देखो यहाँ पर आप लोग 25-30 लोग आए हो, सबके अलग अलग हुनर है, तो उसके आधार पर हमें उतने लोगों का बैच ढूंढना पड़ता है कि इनका बैच कब बनेगा, इनका कब बनेगा, उसी के अनुसार ट्रेनर भी देखना पड़ता है।
0: ट्रेनिंग लेने के बाद उन महिलाओं में क्या बदलाव आता है? क्या वो आत्मनिर्भर बनती हैं?
1: बिल्कुल मैम, आत्मनिर्भर बनती हैं। अभी हम उखलगांडा में एक ट्रेनिंग करवा के आए थे ब्यूटी पार्लर की, तो वहाँ पर जब ट्रेनिंग करवाई हमने पहले दिन, उस दिन तो एक दूसरे से शर्मा रहे थे वो पहले कि हम कैसे करेंगे करके, पार्लर के लिए सीखना चाहते हैं करके, तो उन्होंने बता दिया था हमको। जब हमने सिखाना शुरू किया तो वो आईब्रो बनाने में भी शर्मा रहे थे पहले हमने, लेकिन जब धीरे धीरे हमने उनको बताया तो वो सीखते गए। 15 दिन हो गए थे ट्रेनिंग को, उसके बाद मेरे पास एक कॉल आई वहाँ से कि गाँव में एक शादी थी, तो उसमें से 2-3 महिलाएं इतनी एक्सपर्ट हो गई थी क्योंकि उन्होंने ही उस शादी में, जो जिनके घर में शादी थी उनको तैयार करा।
0: अपनी एनजीओ में और कौन कौन से काम करती है इसके अलावा?
1: दिव्यांग बच्चों का हमारा एक आश्रम है, हल्द्वानी में ही है, वहाँ पर हमारे पास अभी 26 दिव्यांग बच्चे हैं जो बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते, और कुछ तो व्हील चेयर के सहारे चलने वाले बच्चे हैं, ऐसे बच्चों को हमने रख रखा है वहाँ पर। तो हमारा आवासीय आश्रम है जिसमें रहना खाना उनका फ्री है, और हम उन बच्चों का स्किल डेवलपमेंट करवाते हैं वहाँ पर बच्चों को कि हुनर क्या है। हमारे कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, लेकिन आंखों से देख सकते हैं और इशारों में ये बता सकते हैं कि हमें ये सीखना है। जैसे किसी बच्चे के अंदर बिजली की मालाएं बनाने की रुचि होती है
0: जी,
1: उनको हम उससे संबंधित प्रशिक्षण देते हैं और प्रशिक्षित करके उनको उसी हुनर के हिसाब से रोजगार में जोड़ देते हैं।
0: जैसे मैम आपने कहा कि आप दिव्यांग बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं, तो क्या आप बच्चों को

0: उनके द्वारा लिए गए प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र भी देते हैं,
1: सर्टिफिकेट भी देते हैं और सिखाते भी हैं। सीखने के बाद सर्टिफिकेट देने के साथ साथ उनका हुनर के हिसाब से उनको रोजगार देते हैं।
0: मैम, जैसे आपने बताया कि आप दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क ट्रेनिंग देने का काम करती हैं, जब कोई दिव्यांग बच्चा पहली बार आपके आश्रम में आता है तो आप उसकी क्षमता को कैसे पहचानती हैं, उसकी किस चीज में रुचि है, वो कौन सा काम कर सकता है?
2: मैम, वहाँ पर ना वहाँ पर अलग अलग प्रकार के प्रशिक्षण चलते हैं
0: जी,
2: तो बच्चे को हम बैठाते हैं सारे प्रशिक्षण में, उसकी रुचि का पता चल जाता है कि किसकी किस चीज में ज्यादा रुचि है करके वो पता चल जाता है वहाँ पर, के अनुसार उनका हम सिलेक्शन करते हैं।
0: आपके आश्रम तक ये बच्चे पहुँचते कैसे हैं?
2: कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि हमारे जो रोहित जोशी हैं उनके, वो पहले रामनगर में किसी आश्रम में जॉब करते थे, वहाँ उनकी पहचान लगी किसी से, माँ बाप से, तो उनने उससे कहा, उनने से कहा, या फिर हमारा फेसबुक पर भी एक पेज चलता है ना
0: जी
2: सेवालय के नाम से, तो वहाँ से भी पता चल जाता है, ऐसे करके आ ही जाते हैं बच्चे, इनको इनके हुनर के हिसाब से प्रशिक्षण करवाते हैं हम लोग। अभी एक बच्चा तो हमारा दिव्यांग बच्चा है, उसको गिटार बजाने का इतना शौक है कि वो गिटार में निकला और एक वॉलीबॉल में गुजरात तक चला गया है, नेशनल खेल के आ गया।
0: मतलब हर चीज की ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है?
2: हर चीज की कराते हैं हम, उसको स्टेडियम में ले जाते हैं, वहाँ पर उनको हम जिसको खेलने में रुचि है उसको खेल में भी कराते हैं।
0: तो इनके लिए क्या आप विशेष यहाँ पर ट्रेनर भी रखती हैं?
2: ट्रेनर रखते हैं हम, स्पोर्ट्स के लिए भी रख रखा है, और उसके अलावा लोग फ्री भी सेवा देते हैं हमारे आश्रम में आकर के, कि हम कहते हैं उनसे कोई दो आते हैं तो कि हमारे बच्चों को ये सीखना है, तो वो हम आकर के हमारा सहयोग करते हैं कि चलो कंप्यूटर हम सिखा देंगे आपके बच्चे को, सिलाई हम सिखा देंगे आपके बच्चे को, ऐसे करके भी आते हैं लोग।
0: जी, ये तो अच्छी बात है कि लोग भी इसमें आपका सहयोग कर रहे हैं।
2: हाँ, लोग सहयोग करते हैं, प्रतिष्ठित लोग आते हैं, वो अपनी तरफ से अपने बच्चों का बर्थडे मनाते हैं, कोई अपनी एनिवर्सरी मनाने आते हैं, किसी को अपने पूर्वजों के नाम से श्राद्ध के दिन आना होता है वो भी आ जाते हैं।
0: तो मैम, स्किल डेवलपमेंट से इन बच्चों के व्यवहार और सोच में क्या कोई बदलाव आता है? आप ऐसे
2: बिल्कुल मैम, व्यवहार में बदलाव आता है जब वो पहली बार हमारे वहाँ आते हैं तो मतलब घुलने मिलने भी नहीं होते हैं और वो जानते भी नहीं है एक दूसरे को, और यहाँ आने के बाद वो बच्चों को देखते हैं, एक दूसरे को देख करके वो अच्छे मतलब माहौल में ढल जाते हैं, तो अच्छा वो करते हैं, हमको सहयोग भी मिलता है उनसे, हमको कि हम उनके लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि खुद ही सपोर्ट करने लग जाते हैं।
0: जैसे दिव्यांग बच्चे आपके आश्रम में हैं, उनकी रुचि के अनुसार आप उनको ट्रेनिंग भी देती हैं, तो क्या ऐसे बच्चे भी हैं जो कि कोई जॉब में लग गए हों?
3: बच्चे प्राइवेट जॉब कर रहे हैं मैम, वो लोग प्राइवेट, जैसे हमारे के आश्रम के आसपास जो ज्यादा दूर भेजना भी उनके लिए रिस्की होता है ना मैम, क्योंकि बोल नहीं सकते, वो सुन नहीं सकते हैं ना, घर से 1 या 2 किलोमीटर की दूरी में कहीं पर हम बात करते हैं, मैं बोलती हूँ कि हमारा सेवालय का बच्चा है, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, लेकिन काम पूरा करता है।
0: अच्छा, तो वो वहाँ पर काम कर लेते हैं?
3: वो काम कर लेता है, वो अपना जो भी उसको तनख्वाह मिलती है वो सिर्फ मम्मी लोगों को बुला लेते हैं, उनको दे देते। कुछ बच्चे तो जैसे इलेक्ट्रिशियन की दुकान में करने लग गए,
0: कुछ अपना कोई स्वरोजगार भी करते हैं।
3: हाँ, कैंडल बना रहे हैं, अभी गणेश जी की मूर्तियां बना रखी उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी, मैक्रमे भी बना रहे हैं और कपड़े की भी बना रहे हैं, दिए जो मिट्टी के दिए होते हैं उनको पोत करके उनमें इतनी बढ़िया पेंटिंग कर रखी है, और ये फूल की मालाएं दिवाली में उन्होंने कम से कम 1-1.5 लाख की फूल की मालाएं बेची, सब दिव्यांग बच्चे कर रहे हैं।
0: मैम, आप अपनी एनजीओ के माध्यम से निःशुल्क सेवा देती हैं, तो इसके लिए आप धन की व्यवस्था कैसे करती हैं, क्योंकि एनजीओ को चलाने के लिए तो धन की आवश्यकता तो पड़ती होगी, तो वो आप कैसे करती हैं?
3: जो ये ट्रेनिंग मैं देती हूँ उसमें 50% तो मुझे गवर्नमेंट से ट्रेनिंग के लिए जो पैसा आता है वो आ जाता है, वहाँ सिखाने के लिए ट्रेनर का और रॉ मटेरियल का इतना मिल जाता है बस, 50% मैं अपना लगाती हूँ, तो मैं भी कुछ करती हूँ, मेरे हस्बैंड करते हैं, तो हम उसमें से यहाँ लगा देते हैं।
0: ये तो अच्छी बात है कि आप समाज के लिए काम कर रही हैं।
3: समाज के लिए काम करते हैं मैम, वो सोच पहले से मन में थी ना, छोटी थी जब 8 साल की 9 साल की तब से थी,
0: तो आपने उसको साकार करके दिखाया?
3: उसको साकार करके दिखाया है मैम।
0: मैम, आप इस काम को अकेले करती हैं या आपके साथ और लोग भी जुड़े हुए हैं?
3: मेरे साथ महिलाएं तो सब जुड़ी हैं, लेकिन महिलाओं का सपोर्ट वैसे है, लेकिन महिलाओं का सपोर्ट पैसे में नहीं है, पैसे में मेरे हस्बैंड और मैं ही करती
0: हूं। कैसे जुड़ी हैं और महिलाएं?
3: महिलाएं ऐसे जुड़ी हैं, जैसे मुझे ट्रेनिंग देने के लिए अगर मुझे एक ही दिन में 4 जगह ट्रेनिंग की ओपनिंग करनी है तो मैं सब जगह नहीं उपलब्ध हो सकती हूँ ना, तो मैं अलग अलग जगह को महिलाओं को भेजती हूँ, तो अभी हमारे पास बहुत पैसा नहीं मिल रहा है, तो महिलाएं ऐसा सपोर्ट देती हैं, अपना समय देती हैं।
0: मैम, अगर आपको समाज का पूर्ण सहयोग मिले तो आप अपने एनजीओ को कहाँ तक ले जाना चाहेंगी?
3: अगर मुझे समाज का अगर सहयोग मिले तो मैं जो महिलाएं आज तक मेरे साथ जुड़ना चाह रही हैं और मैं कुछ हिस्सा ही अपना पा रही हूँ अभी तक अपने समाज में कार्य करने के लिए, क्योंकि मैं पूरा समय इसमें नहीं दे पा रही हूँ, तो मैं पूरा समय दे दूंगी। अभी तो मैं 10,000 तक जोड़ा है, मैं पूरा ऑल इंडिया तक भी कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑल इंडिया तक की क्षमता तो है एनजीओ की।
0: जी मैम। मैम, क्या आपको लगता है कि जब महिलाएं सशक्त होती हैं तो उनके बच्चों का भविष्य भी बेहतर होता है?
2: महिला अगर सशक्त होती है तो उसका परिवार सशक्त होता है
0: जी,
2: और बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती है, बच्चे शिक्षित होते हैं, उनको अच्छी सोच मिलती है,

0: विचार मिलते हैं, अच्छा आचरण मिलता है।
1: जी मैम। मैम आप उन महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगी जो कुछ काम तो करना चाहती हैं लेकिन उसे शुरू करने से डरती हैं?
0: मैम डर को तो उनको भगाना ही पड़ेगा पहले,
1: जी
0: क्योंकि तो वैसे भी डर के आगे जीत ही होती है हमेशा। और महिलाओं को डर को दूर करना पड़ेगा और मतलब हिम्मत दिखानी पड़ेगी अपनी कि हमें कुछ भी हो, परिस्थितियां तो कैसे भी आ सकती हैं, लेकिन घबराना नहीं चाहिए। महिलाओं को बस एक मंच की जरूरत होती है, महिलाएं कर लेती हैं,
1: जो करना चाहती हैं अगर मन में ठान लें तो वो उस काम को करके ही रहती।
0: ऐसी हिम्मत होती है महिलाओं में, बस थोड़ा सा उनको एक कदम आगे बढ़ाने की जरूरत होती है।
1: जी नीमा जी, आप हमारे कार्यक्रम घर संसार से जुड़ी और अपने काम के बारे में इतनी अच्छी बातें आपने बताई। हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद मैम, नमस्कार।
2: बहनों अभी आप सुन रही थी हुनर को प्रशिक्षण दे रोजगार से जुड़ती जिंदगियां विषय पर जय शारदा जन कल्याण समिति की अध्यक्ष श्रीमती नीमा बिष्ट से की गई हमारी ये क्षेत्र संकलित बातचीत। बहनों अब समय है हमारे आज के खास सेगमेंट का जो होता है रसोई से। बहनों गर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है और गर्मियों का मौसम आते ही हमारे खान पान और दिनचर्या में भी बदलाव आने लगता है। तेज धूप, गर्म हवाएं और बढ़ता तापमान हमारे शरीर को जल्दी थका देता है। ऐसे समय में हमारी रसोई केवल खाना बनाने की जगह नहीं रह जाती बल्कि पूरे परिवार को संभालने वाली एक छोटी सी प्रयोगशाला बन जाती है। बहनों हम ये चाहते हैं कि हमारे परिवार को ऐसा भोजन मिले जो स्वादिष्ट भी हो और शरीर को ठंडक व ताकत भी दे। तो बहनों इसके लिए हमें गर्मी के मौसम में ऐसा भोजन बनाना चाहिए जो हल्का भी हो और पौष्टिक भी। ज़्यादा तला भुना और मसालेदार खाना शरीर में गर्मी बढ़ाता है जबकि दही, छाछ, खीरा, तरबूज, खरबूज, नींबू पानी, आम पन्ना और सत्तू जैसी चीज़ें शरीर को ठंडक देती हैं। यदि हम रोज़ाना खाने में एक मौसमी फल और एक ठंडी पेय सामग्री शामिल करें तो हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। बहनों आजकल बच्चे बाजार के कोल्ड ड्रिंक और जंक फूड की तरफ जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। हम उसकी जगह उन्हें घर में बने शरबत, लस्सी और ताज़े फलों का रस दे सकते हैं जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। साथ ही बहनों बच्चों को हाथ धोकर खाने की आदत सिखाएं और बाहर की खुली चीज़ों को खाने से रोकें। गर्मियों में साफ सफाई का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। थोड़ी सी लापरवाही से खाना जल्दी ख़राब हो सकता है और पेट की बीमारियां बढ़ सकती हैं, इसलिए रसोई को साफ रखें। बचे हुए खाने को ढककर सही तरीके से रखना और पीने के पानी को स्वच्छ रखना बहुत आवश्यक है। बहनों रसोई केवल भोजन बनाने की जगह नहीं बल्कि प्यार और देखभाल का केंद्र भी है। जब हम अपने हाथों से ठंडी छाछ बनाकर परिवार को देते हैं या फल काटकर परोसते हैं तब उसमें सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि अपनापन और स्वास्थ्य दोनों छिपे होते हैं। बहनों पुराने समय में हमारी दादी नानी घरेलू चीज़ों से ही गर्मी का इलाज कर लिया करती थी। आज ज़रूरत है कि हम उन पारंपरिक और प्राकृतिक तरीकों को फिर से अपनाएं। बहनों अगर हमारी रसोई में प्यार, स्वच्छता और सेहत का स्वाद बना रहेगा तो परिवार हमेशा खुश और स्वस्थ रहेगा। बहनों आज के रसोई से के सेगमेंट में बस इतना ही। अगले सेगमेंट में फिर आपसे करेंगे रसोई से जुड़ी कुछ खास बातें और अभी कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं ये मधुर गीत।

बहनों, अब इसी गीत के साथ वक्त हो गया है आपसे आज के घर संसार कार्यक्रम से विदा लेने का। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। अब आज के घर संसार कार्यक्रम को संपन्न करने की अपनी रेडियो दोस्त सुनीता को दीजिए अनुमति। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं दीपिका पंत। नमस्कार।

0: अभी बहनें सुन रही थीं अपना कार्यक्रम घर संसार। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं

इस बैठक में उन्होंने शी जिनफिंग से क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की थी। अमेरिका के राष्ट्रपति अगले महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और कई यूरोपीय सहयोगियों के बीच बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा।

0: मैं आशुतोष उनियाल और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी का अंतिम संस्कार आज हरिद्वार में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित कई वरिष्ठ नेता स्वर्गीय खंडूड़ी जी को अंतिम विदाई देने पहुंचे। इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वर्गीय खंडूड़ी के देहरादून आवास पर उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति ने शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात कर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इसके बाद देहरादून स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण सहित कैबिनेट मंत्रियों, विधायकों, पार्टी पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें नम आंखों से विदाई दी। मुख्यमंत्री ने पार्थिव शरीर को कंधा देकर अंतिम विदाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय खंडूड़ी का संपूर्ण जीवन अनुशासन, सादगी, ईमानदारी और राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित रहा। उन्होंने उत्तराखंड के विकास और जनसेवा में जो योगदान दिया उसे यह प्रदेश सदैव याद रखेगा। मुख्यमंत्री ने उनके निधन को राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति बताया। एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7 लाख करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने गुजरात के गांधीनगर में पत्रकारों को यह जानकारी दी।
1: में जो इनपुट मिला है उसमें हमने और कहा इसको और इम्प्रूव करो और एक रोल मॉडल के रूप में हम पूरे देश में सारे सरकार को हम भेजेंगे भाई इस रूप में आप हमें अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करके दो। जैसे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट करे इंडस्ट्रीज में क्या लॉस होता है, प्रोडक्शन का कितना लॉस होता है, लेबर एक तरह से दूसरी तरह माइग्रेट करती है, सबको कहा अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करें और उसका संकलन करके आगे दे सके।
0: नैनीताल जिले के भीमताल विकासखंड में बाखली नाम से ग्राम दुकान का शुभारंभ किया गया। नाबार्ड के सहयोग से शुरू की गई इस दुकान में क्षेत्र के करीब 50 स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा तैयार उत्पादों को बिक्री के लिए रखा जाएगा। दुकान में ऐपण कला, रिंगाल शिल्प, जूट उत्पाद, अचार, शहद, मोटे अनाज और अन्य स्थानीय उत्पाद उपलब्ध हैं। नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक मुकेश बेलवाल ने बताया कि ग्राम दुकान जैसी पहल महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएंगी।
2: भीमताल में ग्राम दुकान का इनॉग्रेशन यहाँ पर किया गया है और ये जो डक्स SHG है यहाँ पर जो बहुत अच्छा कार्य कर रहा था उनको हमने ये दुकान दी। तो उसमें नाबार्ड का 2 साल का अच्छा सपोर्ट रहता है, चाहे वो आपकी सैलरी हो या रेंट का दुकान का, उसका नाबार्ड वे करेगा। और इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो महिलाएं कम से कम 2 साल तक जो हम सपोर्ट करें आगे फिर इसको चलाएं। और ये ग्राम दुकान से हम चाहते हैं जो बाकी जो SHGs जो बाकी जो इस ब्लॉक में जो अदर SHGs हैं उनका जो प्रोडक्ट है यहाँ के SHG खरीदें और अपनी दुकान के माध्यम से इसको मार्केट करें। तो हम चाहते हैं आने वाले समय पे जो हमारी SHGs हैं उनको एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म तो दुकान दे रही है, साथ में जो अलग अलग एग्जीबिशन होते हैं उसके माध्यम से भी यहाँ पर एक बिजनेस बढ़ने की संभावनाएं हैं।
0: वहीं समूह से जुड़ी महिलाओं का कहना है कि इस दुकान से स्थानीय उत्पादों को बाजार मिलेगा और महिलाओं की आय में बढ़ोतरी होगी।
3: इसको ये फायदा मिलेगा महिलाओं की जो आजीविका है, एक तो अपने पैरों पर खड़ी हो जाएंगी और साथ साथ उनकी आजीविका बढ़ेगी। साथ ही जो हमारे क्षेत्रों में उत्पाद होते हैं, जैसे महिलाएं हैं हमारे क्षेत्रों में हस्तशिल्प बहुत ज्यादा बनाती हैं, जैसे ऐपण हो गया या मोमबत्तियां हो गया या ऊन से बने प्रोडक्ट हो गए, हमारे क्षेत्र में शहद का भी काफी अच्छा प्रोडक्शन होता है, तो वो हम सारा यहाँ राम बाकली दुकान में रखेंगे और उससे क्या है महिलाओं को कहीं ना कहीं आजीविका संवर्धन में सहायता मिलेगी।
4: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: पौड़ी गढ़वाल में श्रीनगर क्षेत्र के अंतर्गत डूंगरी पंथ रेलवे सुरंग का SDRF और NDRF के संयुक्त दल ने विस्तृत निरीक्षण किया। इस दौरान सुरंग की सुरक्षा व्यवस्थाओं, प्रवेश व निकासी मार्गों, आपातकालीन बचाव व्यवस्थाओं और संभावित आपदा की स्थिति में राहत और बचाव कार्यों की तैयारियों का आकलन किया गया। एक रिपोर्ट।
5: संयुक्त दल ने सुरंग के भीतर जाकर विभिन्न सुरक्षा बिंदु

0: का निरीक्षण किया और भविष्य में किसी भी आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आवश्यक रणनीतियों पर चर्चा की। अधिकारियों ने सुरंग में कार्यरत कर्मचारियों को सुरक्षा मानकों के अनुपालन, आपदा के समय त्वरित प्रतिक्रिया तथा समन्वित राहत कार्यों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान रेलवे अधिकारियों ने दल को सुरंग की संरचना, सुरक्षा उपकरणों, निकासी मार्गों और उपलब्ध आपदा प्रबंधन संसाधनों की विस्तृत जानकारी दी। इसके बाद SDRF और NDRF के दल ने पूरे सुरंग क्षेत्र का भ्रमण कर संवेदनशील स्थलों को चिन्हित करते हुए संभावित जोखिम वाले बिंदुओं का आकलन किया। SDRF निरीक्षक मंजरी नेगी ने बताया कि निरीक्षण का उद्देश्य डुंगरी पंथ रेलवे सुरंग की सुरक्षा व्यवस्थाओं का मूल्यांकन करना और किसी भी आपदा या आपात स्थिति में त्वरित व सुरक्षित राहत बचाव सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तैयारियों को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि SDRF और NDRF द्वारा समय समय पर ऐसे संवेदनशील स्थलों का निरीक्षण कर सुरक्षा तंत्र को और अधिक प्रभावी बनाया जाता है। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से संतोष थपलियाल।
1: चमोली जिले में स्थित सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट आगामी शनिवार को श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। इसके लिए जिला प्रशासन, सेना और हेमकुंड साहिब ट्रस्ट द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सेना के जवानों ने कठिन परिस्थितियों में पैदल मार्ग से बर्फ हटाकर रास्ता साफ कर दिया है। वहीं गुरुद्वारा ट्रस्ट द्वारा गोविंद घाट, घांगरिया और हेमकुंड साहिब में गुरुद्वारों को सजाने संवारने का कार्य भी तेज कर दिया गया है। सेवादार यात्रियों की सुविधा के लिए दिन रात जुटे हैं। जिलाधिकारी गौरव कुमार ने बताया कि कपाट खुलने को लेकर सभी तैयारियां तेजी से पूरी की जा रही हैं।
2: 23 तारीख को हेमकुंड साहिब के कपाट खुल रहे हैं। इसके लिए प्रशासन की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। आर्मी के द्वारा पहले इसमें बर्फ काट के रास्ता बनाया गया है। जो वहाँ पर अप्रोच रोड है जो PMG सुई की है, उनके द्वारा स्वस्थारीकरण कार्य लगातार किया जा रहा है। ट्रैक मार्ग पे PWD के द्वारा कार्य किया जा रहा है। साथ ही घोड़ा खच्चर की व्यवस्था को सुचारू करने के लिए इस वर्ष वहाँ पर ऑनलाइन टोकन की व्यवस्था भी प्रारंभ की गई है। जल संस्थान के द्वारा पानी की व्यवस्था और UPCL के द्वारा बिजली की व्यवस्था।
1: प्रदेश में गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, उधम सिंह नगर, नैनीताल और उत्तरकाशी के आसपास के क्षेत्रों में आज और कल कहीं कहीं लू चलने की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। मैदानी जिलों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क बना रहेगा। वहीं उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश और गरज चमक की संभावना है। इन क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और आकाशीय बिजली चमकने का भी अनुमान है। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर के समय तेज धूप से बचने और पर्वतीय क्षेत्रों में खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी का अंतिम संस्कार हरिद्वार में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की बचत और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 1.6% की वृद्धि होगी। पौड़ी गढ़वाल में श्रीनगर क्षेत्र में डूंगरी पंथ रेलवे सुरंग का SDRF NDRF ने संयुक्त निरीक्षण किया और 23 मई को खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। जिला प्रशासन, सेना और हेमकुंड साहिब ट्रस्ट द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:15 हुए हैं। पेश है सुगम संगीत। आगाज कर रहे हैं प्रेम वार्बर्टोनी के कलाम से, आवाज जगजीत सिंह की। जवानी के हीले हया के बहाने, ये माना कि तुम मुझसे पर्दा करोगी।

उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
0: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की नगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: और सुगम संगीत में अब श्रोताओं को हम सुनवाने जा रहे हैं लकी अली और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में ये नगमा।

कविता कृष्णमूर्ति और साथियों का गाया ये गीत अभी आपने सुना और अब सुगम संगीत संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की कड़ी संख्या 1288।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम उमंग में। मैं हूँ विमलेश, नमस्कार।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: आप कौन हैं, आपकी क्षमताएं क्या हैं और आपके संस्कार क्या हैं? इन सब का निर्धारण आपके द्वारा किए गए कार्यों के संचय से होता है। आपकी सफलता, आपका व्यवहार और आपके कार्यों का समाज पर प्रभाव ही वो स्वर है जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपकी पहचान की घोषणा करता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का। लिखते हैं,
2: 14 अप्रैल 2026 का उमंग प्रोग्राम बेहद पसंद आया, जिसमें आपने हाथ से लिखने की आदत के बारे में बताया। ये सही है कि इस डिजिटल युग में हाथ से लिखना बहुत कम हो गया है। ऐसे तो हाथ से लिखने से बहुत से फायदे हैं, जैसे कि याददाश्त तेज होती है, दिमाग शांत होता है, रचनात्मकता बढ़ती है, एकाग्रता सुधरती है, समझ गहरी होती है और हाथ की कसरत भी होती है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से। संदेश भेजने वाले हैं बबलू साहू, जामुन देवी साहू, पूजा, प्रेम, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
2: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी।
1: और चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा।
2: कृष्णा पार्क दिल्ली से याकूब आसमा फकीर, यूसुफ आसमा फकीर, असलम आसमा फकीर और अक्रम आसमा फकीर।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं इस श्रृंखला की अगली कड़ी। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं वर्षा वन यानी रेन फॉरेस्ट की।
2: जी,
1: तो विमलेश जी अब श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं।
2: जी। श्रोताओं, कल हमने ली थी वर्षा वन की सामान्य जानकारी। आगे हम आज चर्चा करेंगे क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया के प्रमुख वर्षा वनों की। तो करते हैं शुरुआत अमेजन वर्षा वन से।
1: जी जरूर श्रोताओं, अपने टीवी चैनलों में अमेजन वर्षा वन के रोमांचकारी दृश्यों को जरूर देखा होगा। समाचार पत्रों या अन्य संचार माध्यमों के द्वारा भी इसके बारे में कुछ न कुछ जानकारी तो अवश्य प्राप्त की होगी।
2: जी,
1: आइए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं।
2: श्रोताओं, अमेजन वर्षा वन दुनिया का सबसे बड़ा वनस्पति और जीव समृद्ध वर्षा वन है। ये लगभग 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और हाँ, इसे समुद्र के बाद पृथ्वी का सबसे बड़ा फेफड़ा भी कहा गया है।
1: ऐसा इसलिए कहा गया है श्रोताओं कि धरती की कुल ऑक्सीजन का लगभग 20% ऑक्सीजन हमें इसी वर्षा वन से मिलता है।
2: जी,
1: जहाँ तक इसके स्थान की बात है तो यह दक्षिण अमेरिका या लैटिन अमेरिका में फैला हुआ है, मुख्य रूप से ब्राजील में।
2: लेकिन इसके कुछ भाग पेरू और कोलम्बिया में भी फैले हुए हैं। यहाँ भारी वर्षा होती है, लगभग 2000 मिलीमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक।
1: और श्रोताओं, जहाँ तक इसमें पाए जाने वाले जीव जंतुओं की बात है, यहाँ उनकी लाखों प्रजातियाँ पाई जाती हैं। जानते हैं कुछ दुर्लभ और रोचक जीवों के नाम। तो सबसे पहला जीव है जगुआर। जी हाँ, अमेजन

0: का सबसे बड़ा शिकारी, पानी में तैरने और शिकार करने में माहिर।
1: दूसरा है गोल्डन मंकी, बिल्कुल सोने के सुनहरे रंग का दिखाई पड़ता है, केवल अमेज़न के जंगलों में ही मिलता है। एक और विशेष मेंढक यहाँ मिलता है, उसे पॉइजन डार्ट फ्रॉग भी कहते हैं। ये बेहद चमकीले रंग वाला मेंढक होता है। इसकी त्वचा में जहरीला पदार्थ होता है जिसे छूते ही तबीयत बिगड़ सकती है, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। पुराने समय में यहाँ के आदिवासी लोग युद्धों में इस जहर का इस्तेमाल तीरों पर करते थे।
0: और आपने श्रोताओ एनाकोंडा सांप के बारे में तो अवश्य ही सुना होगा। ये दुनिया का सबसे लंबा और भारी सांप है जो पानी में रहता है और बड़े जानवरों का शिकार करता है।
1: एक और चींटी की अनोखी प्रजाति यहाँ पाई जाती है जिसे बुलेट एंट कहते हैं। ये दुनिया की सबसे दर्दनाक डंक वाली चींटी है। कहते हैं इसके डंक मारने पर भाला मारने या तीर लगने जैसा दर्द होता है।
0: तो ये थी कुछ रोचक वन्य जीवों की जानकारी। श्रोताओ अमेज़न का जंगल यह औषधीय वनस्पतियों का बहुत बड़ा भंडार है।
1: जी
0: आइए अब जानते हैं कुछ रोचक तथ्य अमेज़न वर्षा वन के बारे में। तो विमलेश जी।
1: जी जी जी, एक सबसे रोचक तथ्य ये है कि अमेज़न वर्षा वन ज्यादातर अमेज़न नदी के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। मालूम है श्रोताओ, वैसे दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है, लेकिन जल की मात्रा के दृष्टिकोण से दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेज़न है। एक रोचक तथ्य आपको बता दें कि अमेज़न नदी में पुल नहीं के बराबर है। लेकिन ऐसा क्यों?
0: ऐसा इसलिए कि भारी वर्षा के कारण अमेज़न नदी उफान से भरी रहती है।
1: जी।
0: इसका कोई निश्चित तटबंध नहीं है। कभी कभी
1: इसकी धारा पतली हो जाती है तो कभी कभी बहुत चौड़ी, कभी 2 किलोमीटर ही रहती है तो कभी कभी 10 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है। इसलिए यदि यहाँ पुल भी बनाए जाते हैं तो लंबे समय तक नहीं टिकते, क्योंकि दुविधा ये रहती है कि पुल की लंबाई या चौड़ाई कितनी रखनी है।
0: इसलिए यह तय पाया गया श्रोताओं कि अमेज़न नदी में पुलों से बेहतर नौकायन ही है, और नौकायन कब हो इसका निर्णय नदी के उफान या पानी के कम होने पर किया जाता है।
1: जी तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी अमेज़न वर्षा वन के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो आज का प्रश्न है, अमेज़न नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: अमेज़न नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं?
0: 8800440559 यानी हमारे IVRS नंबर पर, और audio@cieet.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और श्रोताओ अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम दी क्रो।
1: एक प्रसिद्ध लोक कथा पर आधारित ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित है, जिसके द्वारा ये संदेश दिया गया है कि हमें तुरंत किसी की प्रशंसा से प्रभावित नहीं होना चाहिए, लेकिन तथ्यों की जाँच कर लेनी चाहिए और प्रशंसा सच में की जा रही है या नहीं ये भी जाँच लेना चाहिए।
2: CIET NCERT presents the series Singing the Poem. Under this series, let us listen to the program The Crow.
3: Hello, children.
4: Hello, ma'am.
5: Hello, ma'am.
3: Hello, hello. How are you all?
4: We are fine, ma'am.
5: I am fine, ma'am. How are you, ma'am?
3: I am good. Thank you so much, Vanya. All right. So, children, today I am going to share something with you. Are you ready?
4: Yes, ma'am.
5: Yes, ma'am.
3: All right. You all know that pets are special members of our family, isn't it?
4: Yes, ma'am.
5: Pets are so lovely.
3: Right, Soham.
6: Ma'am, I have a dog. It loves me so much.
3: Riddhi, that's very good. But how do you know that your dog loves you?
6: Ma'am, when I come back home, it leaps and jumps around me with happiness.
3: Wow, that's good. And what about you, Navya?
7: Ma'am, my dog shakes its tail at me.
3: Oh, that's lovely. You have a very nice dog. I'm very happy that you love pets. All right. What about you, Lavish?
8: Ma'am, when I come home, my cat jumps and sits on my lap.
3: Oh, that's so exciting, isn't it?
4: Yes, ma'am.
3: All right. So, we spoke about our animals. What about birds? Do you like birds?
4: Yes, ma'am.
3: Can you name some birds?
5: Sparrow.
3: Okay, Vanya. Good. That's a beautiful small bird. Okay, Soham, you tell.
5: Peacock. It dances so well. It looks so pretty.
3: Yes, peacock is a colorful bird.
8: Then parrot.
3: Oh, yes. Parrot is amazing.

0: लेकिन जब वो स्कूल से लौटा तो
1: दीदी दीदी
2: अरे राजू स्कूल से आ गए तुम?
1: हाँ दीदी।
2: अरे ये तुम्हारे हाथ में इतने सारे फूल कहाँ से आए?
1: दीदी सामने के बगीचे में कुछ फूल लगे थे, मुझे अच्छे लगे तो मैंने तोड़ लिए।
2: ये क्या राजू, कल पड़ोस के माली काका भी तुम्हारी शिकायत कर रहे थे, कह रहे थे कि तुमने उनके बगीचे में लगे पौधे उखाड़ दिए। क्या ये सच है राजू?
1: दीदी वो तो मैंने।
2: राजू पौधों में भी जान होती है, पता है ना तुम्हें?
1: हाँ दीदी ये तो मैंने पढ़ा है, मगर
2: मगर क्या? अच्छा अब इधर आओ, ये देखो दीवार पर लटकी ये तस्वीर, ये तुम्हारे बचपन की है ना?
1: हाँ दीदी ये तस्वीर तब की है जब मैं बहुत छोटा सा था, अब तो मैं कितना बड़ा हो गया हूँ।
2: बिल्कुल ठीक, उसी तरह पौधे भी बढ़ते हैं, हमारी तरह पौधों को भी भोजन और पानी की जरूरत होती है।
1: भोजन और पानी?
2: हाँ राजू तुम ऐसा क्यों नहीं करते, एक पौधा लगाओ।
1: हाँ दीदी ये तो बहुत अच्छा रहेगा, कल मैं एक पौधा लगाऊंगा।
2: अरे कल क्यों, आज शाम को जब दादाजी बगीचे में घूमने जाएंगे तो तुम भी उनके साथ जाना पौधा लगाने।
1: ये ठीक है दीदी।

0: अच्छा तो राजू बेटा, तुम पौधा लगाना चाहते हो?
1: जी दादाजी।
0: देखो बेटा, उसके लिए ये जगह ठीक है, यहाँ अच्छी धूप भी आएगी। चलो बेटा, पहले ये कंकड़ पत्थर हटाकर ये जगह साफ कर देते हैं।
1: हाँ, अब ठीक हो गया।
0: राजू बेटा, ये लो खुरपी और इस जगह पर एक छोटा सा गड्ढा खोदो, पर ध्यान रखना कहीं खुरपी हाथ में ना लग जाए।
1: अच्छा दादाजी, अभी खोदता हूँ, लाइए खुरपी दीजिए।
0: हाँ ये लो बेटा, इतनी देर में मैं तुम्हारे लिए माली काका से पौधा ले आता हूँ।
1: जी

0: वाह, ये पौधा कितना सुंदर लग रहा है।
1: देखा बेटा, ये पौधा माली काका तुम्हारे लिए खुद लेकर आए हैं। क्यों माली काका, मैं सच कह रहा हूँ ना?
2: हाँ राजू बेटा, इस पौधे को गड्ढे में रखकर इसकी जड़ों को मिट्टी से ढक दो और उसमें पानी डाल दो,

0: मालिका का, ये तो मैंने कर दिया।
1: शाबाश राजू बेटा, शाबाश।
0: मगर ये तो बताओ मालिका का, ये कौन सा पौधा है?
2: बेटा ये गेंदे का पौधा है।
0: गेंदे का पौधा?
2: जी।
0: गेंदे का पौधा तो सामने वाले बगीचे में भी है, पर उस पर तो कितने सारे फूल लगे हैं।
2: फूल तो बेटा एक दिन इस पौधे पर भी आएंगे।
1: हाँ राजू बेटा, पर उसके लिए तुम्हें बहुत लगन और मेहनत से इसकी देखभाल करनी होगी।
2: हाँ।
0: देखभाल? वो कैसे?
2: देखो बेटा, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम्हें रोज पौधे को पानी देना होगा और कभी कभी खाद भी डालनी होगी।
0: अच्छा।
2: और पौधे के आसपास की उगी हुई जो घास होती है ना, उसको हटाना होगा।
0: ये तो मैं जरूर

0: ठीक है बेटे, अच्छा आज तो अब्बा।
1: राजू बेटा
2: जी?
1: अच्छा अब घर चलें?
2: जी धन्यवाद मालिका का।
0: अरे बेटा
1: चलो बेटा।
2: चलिए दादाजी,

0: राजू सुनते हो?
1: हाँ बोलो जी।
0: राजू कहाँ चला गया?
1: राजू कहाँ चला गया?
2: रात को तो यहीं सोया था।
1: अरे हाँ, लगता है बागीचे में गया होगा।
0: पता नहीं लड़के को क्या हो गया है, जब से इसने पौधा लगाया न खाने की चिंता न खेलने की।
1: जब देखो बागीचे में जाकर पौधे की देखभाल में लगा रहता है।
3: देखो दीदी, उस पौधे में कितने सारे फूल लगे हैं।
4: हाँ, कितने सुंदर लग रहे हैं। अच्छा राजू, क्या मैं एक फूल तोड़ लूँ?
3: नहीं दीदी, मैंने इतनी मुश्किल से गड्ढा खोदा, पौधा लगाया, खाद डाली और रोज पानी से सींचा, और अब ये फूल आ गए हैं तो आप इसे तोड़ना चाहती हैं?
4: दीदी, कितने सुंदर लग रहे हैं ये फूल, आप क्यों तोड़ोगी भला?
5: शाबाश राजू, लगता है तुम समझ गए।
4: हाँ दीदी, मेहनत से लगाए हुए पौधे से अगर कोई एक भी फूल तोड़ ले तो कैसा लगेगा?
3: दीदी, ये तो बहुत ही गलत काम है। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम एक पौधा राजू का, और अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग
2: एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग अभी आप सुन रहे थे।
3: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
2: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2 बजे और इस समय श्रोताओं के लिए हम लेकर आते हैं उत्तराखंड के लोकगीत, जिसमें कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीतों का आनंद श्रोता लेते हैं। तो शुभारंभ कर रहे हैं कुमाऊनी लोकगीत के साथ, कलाकार हैं हीरा सिंह राणा।
4: मधुली हीरा हीर मधुली

यूं दिना यूं माशूकनी मेरे होशिया भेटने रह जाया जो मन की यहाँ बह गया ये मधुली हीरा हीर मधुली अरे लौटी बैको आया मधुली हीरा हीर मधुली लौटी बैको आया मधुली हीरा हीर मधुली लौटी बैको आया मधुली हीरा हीर मधुली इस कोती का जो

घेर ओ जुगाज तुल कुछ है मेर होशिया जुगा है बेरा कुल जानो जग पिले मेर होशिया मधली हीरा हिर मधली अरे यो जुगा है बेरा मधुली हीरा हिर मधुली यो जुगा है बेरा मधुली हीरा हिर मधुली हीरा हिर मधुली हीरा हिर मधुली हीरा हिर मधुली चितकोटी का जोला मधुली हीरा हिर मधुली चितकोटी का जोला मधुली हीरा हिर

आहिर मधुली अरे चैत कैसी डाई मधुली हीराहिर मधुली चैत कैसी डाई मधुली हीराहिर मधुली चैत कैसी डाई मधुली हीराहिर मधुली चैत कैसी डाई मधुली हीराहिर मधुली चेत कौती का झोला मधुली हीराहिर मधुली तिल धारो बोला मधुली हीराहिर मधुली तिल धारो बोला मधुली हीराहिर मधुली तिल धारो बोला मधुली हीराहिर मधुली मनु को मानो नन भो चुपाण

0: गीता जोशी के गाय से कुमाऊनी लोकगीत के साथ उत्तराखंड के लोकगीत कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:15 होने को हैं। कुछ ही पलों में समाचार दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल UL-PGM-MP3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी, कई स्थानों पर तापमान 44 डिग्री के पार। और IPL क्रिकेट में आज शाम

0: कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के साथ साथ मौजूदा वैश्विक परिदृश्य पर भी व्यापक बातचीत करेंगे। दोनों देशों के बीच आज कई महत्वपूर्ण समझौते होने की संभावना है। दोनों नेता कई विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। आज की बातचीत से भारत इटली की मित्रता को और बढ़ावा देने पर चर्चा की जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के महत्व को दर्शाने के लिए रोम में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे इटली के प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक व्यवस्था में गहन परिवर्तन हो रहे हैं, भारत इटली साझेदारी उच्चतम राजनीतिक और संस्थागत स्तरों पर नियमित आदान प्रदान से निर्देशित है। दोनों नेताओं ने कहा कि उनका सहयोग इस साझा समझ को दर्शाता है कि 21वीं सदी में समृद्धि और सुरक्षा राष्ट्रों के नवाचार करने, ऊर्जा परिवर्तन का प्रबंधन करने और कूटनीतिक संप्रभुता को मजबूत करने की क्षमता पर निर्भर करेगी। दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता दोनों दिशाओं में व्यापार और निवेश के प्रवाह को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियाम पावलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशक से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यूबैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस अत्यंत उपयोगी बैठक में दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। ये समझौता ज्ञापन भारत के राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, कोरिया राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सहयोग के बीच हुआ। रक्षा मंत्री ने कहा कि वे दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए उत्सुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: ये परीक्षण आंध्र प्रदेश में कुरनूल के पास डीआरडीओ की टेस्ट रेंज में एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों तरह से किए गए। इस दौरान मिसाइल प्रणाली को एक एडवांस्ड इंटीग्रेटेड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से संचालित किया गया। इन परीक्षणों से विभिन्न परिस्थितियों में मिसाइल की सटीक मारक क्षमता, विश्वसनीयता और

0: भावशीलता प्रदर्शित होती है। इस मिसाइल को हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के साथ मिलकर विकसित किया है। पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित ये मिसाइल आत्मनिर्भर भारत पहल की बढ़ती उपयोगिता को दर्शाती है। इससे देश के भीतर रक्षा प्रणाली को और सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी। विजयवाड़ा से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ULPGM-V3 मिसाइल के सफल विकास परीक्षणों के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की है। उन्होंने टैंक रोधी भूमिका के लिए हवा से जमीन मोड और ड्रोन हेलीकॉप्टर तथा अन्य हवाई लक्ष्यों के लिए हवा से हवा मोड में इसकी प्रभावशीलता के बारे में जानकारी दी। श्री सिंह ने इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के तहत जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका आज खारिज कर दी। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। पीठ ने कहा कि इस तरह के आंकड़े एकत्र करने में कोई बुराई नहीं है और मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्तियों में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक ट्रस्ट की याचिका पर नोटिस जारी किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता उत्तर बंगाल का सर्वांगीण विकास है। उन्होंने कहा कि वो विकास परियोजनाओं की समीक्षा और सरकारी योजनाओं के प्रभावों की निगरानी के लिए हर महीने एक बार उत्तर बंगाल का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल विकास मंत्री, उत्तर बंगाल सचिवालय, उत्तर कन्या सिलीगुड़ी में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक जनता दरबार का आयोजन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जनता दरबार के बाद दिन में 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक अधिकारियों के साथ प्रशासनिक समीक्षा बैठक होगी और उसके बाद उसी दिन दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक विकास मंत्री क्षेत्र के सभी सांसदों और विधायकों के साथ विकास कार्यों को गति देने के लिए समीक्षा बैठक करेंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व मापन दिवस 2026 के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र के महानिदेशक नवीन कुमार सिंह ने आज कहा कि देश के डिजिटल अर्थव्यवस्था से वर्ष 2030 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद GDP में लगभग 20% के योगदान देने की उम्मीद है। वे नई दिल्ली में फिक्की के साइबरकॉम के 7वें संस्करण के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मध्य प्रदेश के भोपाल में नोएडा की 33 वर्षीय महिला की संदिग्ध मौत का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर त्वरित, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। महिला आयोग ने 7 दिन में विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबुधाबी से काम कर रहा था। पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी का अंतिम संस्कार आज हरिद्वार में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति बताया।
2: मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी का जाना पूरे राज्य के लिए और देश के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है और उन्होंने सेना के अधिकारी के रूप में देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं दी, अभूतपूर्व योगदान दिया। उसके बाद भारत सरकार में मंत्री के नाते और राज्य में मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने शुचिता, पारदर्शिता और अनुशासन और समय की पाबंदी, ऐसे बहुत सारे अनुकरणीय जो कार्य हैं अपने समय में किए, वो हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे।
1: ये समाचार

आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं ताजा समाचार। जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में लू की स्थिति बने रहने का अनुमान

0: विभाग ने अगले 4 दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में लू की स्थिति बने रहने का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान के अधिकांश जिले भी इस समय भीषण लू की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के 2 जिलों में लू की स्थिति को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जबकि 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
1: प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। ज्यादातर जिलों में दिन का पारा 42 से 46 डिग्री वहीं रात का तापमान 46 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। इस बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन को लेकर सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए अलग से बेड आरक्षित रखने, जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराने के साथ छाया और पेयजल का प्रबंध करने को कहा गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: पंजाब और हरियाणा में भी भीषण गर्मी जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने दोनों राज्यों में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
2: चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग के डायरेक्टर सुरेंद्र पाल ने आकाशवाणी को बताया कि आने वाले 3-4 दिनों में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान बढ़ेगा। दोनों राज्यों के पश्चिमी जिलों में लू की स्थिति रहेगी। पंजाब में ये जिले अमृतसर, फिरोजपुर, तरनतारन, मानसा, संगरूर, बठिंडा और मुक्तसर होंगे और हरियाणा में हिसार, रोहतक, झज्जर, भिवानी, गुरुग्राम और फरीदाबाद में सबसे ज्यादा गर्मी महसूस होगी। पिछले 24 घंटों में पंजाब में फरीदकोट 47.3 डिग्री सेल्सियस और हरियाणा में रोहतक 46.9 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म जिले रहे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वार्ता से बीजिंग और मॉस्को के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी और संयुक्त राष्ट्र, दक्षिण अफ्रीका परिषद और ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से समन्वय बढ़ेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और कई यूरोपीय सहयोगियों में बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 101 अंक गिरकर 75,100 जबकि निफ्टी 24 अंक की गिरावट के साथ 23,594 पर कारोबार कर रहा था। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल ULBGM-V3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:30 हुए हैं और इस समय श्रोता सुनते हैं खेती की बातें। आज इस कार्यक्रम में जानकारी का विषय है कृषि में सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्रा।
4: किसान भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। भारत में कृषि सिंधु घाटी की सभ्यता के दौर से की जाती रही है और 1960 के बाद कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति के साथ साथ नया दौर आया। सन 2007 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एवं संबंधित कार्यों जैसे वानिकी का सरल घरेलू उत्पाद GDP में 16.6% हिस्सा था। उस समय संपूर्ण कार्य करने वालों का 52% कृषि में लगा हुआ था। अगर भारत में देखें तो भारत में कृषि में 1960 के दशक के मध्य तक पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था जिनकी

उपज अपेक्षाकृत कम थी, उन्हें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती थी। किसान उर्वरकों के रूप में गाय के गोबर आदि का प्रयोग करते थे। 1960 के बाद से फसल के उच्च उपज बीजों का प्रयोग शुरू हुआ। इससे सिंचाई और रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग अधिक मात्रा में होने लगा, जो कि पृथ्वी की उर्वरक शक्ति को तो धीरे धीरे कम कर ही रहे थे, साथ ही साथ वातावरण को भी प्रदूषित कर रहे हैं। फसलों में अधिक रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों के प्रयोग करने के बाद भी कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है। अतः आज हमें रासायनिक उर्वरकों के साथ साथ सूक्ष्म जीवों यानी कि जैव उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। आज मैं अपने किसान भाई और बहनों को इन्हीं सूक्ष्म जीवों के बारे में जानकारी दूंगा कि किस प्रकार ये सूक्ष्म जीव पृथ्वी की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के साथ साथ कृषि विकास में सहायक हैं। जैसे कि किसान भाइयों, सूक्ष्म जैविकी उन सजीवों का अध्ययन है जो कि नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, और उन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। सूक्ष्म जैविकी में तत्पर शोध होते रहते हैं एवं यह क्षेत्र अनवरत प्रगति पर अग्रसर है। अभी तक हमने शायद पूरी पृथ्वी पर के सूक्ष्म जीवों में से केवल 1% का ही अध्ययन किया है। सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार के होते हैं, जिनमें जीवाणु प्रमुख हैं। जीवाणु एक कोश के जीव हैं जिनका आकार कुछ मिलीमीटर तक ही होता है। इनकी आकृति गोल, मुक्त चक्राकार से लेकर छड़ आदि के आकार की हो सकती है। ये मुख्यतः प्रोकैरियोटिक कोशिका भित्ति युक्त एक कोशिकीय सरल जीव हैं जो प्राय सर्वत्र पाए जाते हैं। ये पृथ्वी पर मिट्टी में, अम्लीय गलन, जलधाराओं में, नाभिकीय पदार्थों में, जल में, भूम पपड़ी में, यहाँ तक कि कार्बनिक पदार्थों में तथा पौधों एवं जंतुओं के शरीर के भीतर भी पाए जाते हैं। साधारणतः 1 ग्राम मिट्टी में 4 करोड़ जीवाणु तथा 1 मिलीमीटर जल में 10 लाख जीवाणु पाए जाते हैं। संपूर्ण पृथ्वी पर अगिनत जीवाणु पाए जाते हैं जो संसार के बायोमास का एक बहुत बड़ा भाग है। ये कई तत्वों के चक्र में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के साथ साथ पौधों को आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं, जो कि पौधों को आवश्यक मुख्य पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम तथा सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे लौह, जस्ता आदि उपलब्ध कराते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव हार्मोन जैसे इंडोल एसिटिक अम्ल, जिब्रेलिक अम्ल उत्पन्न करते हैं, जो कि पौधों की जड़ों के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। इसके अलावा ये सूक्ष्म जीव कुछ ऐसे पदार्थ भी छोड़ते हैं जो कि फसलों में होने वाले रोगों से बचाते हैं, और इनके प्रयोग का भूमि पर कोई दुष्परिणाम भी नहीं पड़ता है, बल्कि ये भूमि के भौतिक एवं जैविक गुणों में सुधार कर उर्वरक शक्ति को बढ़ाने में सहायक होते हैं। जैसा कि हमारे किसान भाई और बहन जानते हैं कि दलहनी फसलों की जड़ों पर जो ग्रंथियां या गांठें पाई जाती हैं, उनमें बड़े लाभ देने वाले सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जो कि वायुमंडल की आण्विक नाइट्रोजन, जिसका पौधे सीधे उपयोग नहीं कर पाते हैं, को पौधों के लिए सुलभ अमोनिया रूप में परिवर्तित कर देते हैं, और कृषि विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले जो प्रमुख सूक्ष्म जीव हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। पहला, जैसे पौधों को नाइट्रोजन पोषक तत्व सुलभ कराने वाले सूक्ष्म जीव 2 प्रकार के हैं। पहले, पौधों को के साथ सहजीवी रूप से रहते हुए वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करने वाले, जैसे कि राइजोबियम, मेसोराइजोबियम, सिनोराइजोबियम एवं एजोराइजोबियम। अलग अलग दलहनी फसलों में अलग अलग जाति या प्रजाति के राइजोबियम जीवाणु जड़ों पर गांठों का निर्माण करते हैं, इसलिए फसल के अनुसार ही इनका प्रयोग करना चाहिए। इनका प्रयोग विभिन्न दलहनी फसलों जैसे फ्रेंच बीन, मटर, मसूर, सोयाबीन, गहत, अरहर, मूंगफली, राजमा इत्यादि में किया जा सकता है। इनके प्रयोग से विभिन्न दलहनों की उपज में 10-15% तक की वृद्धि पाई गई है एवं किसान भाई और बहनों, इनके प्रयोग से फसलों को 50 से 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उर्वरक नाइट्रोजन के बराबर लाभ प्राप्त होता है। वैसे तो विभिन्न दलहनों की जड़ों पर गांठों का निर्माण करने वाला राइजोबियम जीवाणु भूमि में प्राकृतिक रूप से विद्यमान होता है, परंतु कई स्थानों पर मिट्टी में इनकी पर्याप्त संख्या नहीं होने के कारण अथवा प्राकृतिक रूप से विद्यमान राइजोबियम जीवाणु की कम सक्रियता एवं नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता कम होने के कारण इस जीवाणु का दलहनी फसलों में प्रयोग करने की सिफारिश की जाती है, जिससे कि पर्याप्त मात्रा में जड़ ग्रंथियों का निर्माण हो सके और दलहनी फसलों में राइजोबियम जीवाणु के उपयोग का लाभ अगली बोई जाने वाली फसल में भी देखा गया है। दूसरे जो आते हैं वो हैं दूसरे स्वतंत्र रूप से रहते हुए वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करने वाले जीवाणु, जैसे एजोटोबैक्टर जीवाणु, जो कि पूर्ण स्वतंत्र रूप से रहते हुए वायुमंडलीय आण्विक नाइट्रोजन को भूमि में स्थिर करते हैं, जिसका उपयोग पौधे सीधे कर पाते हैं। इनका प्रयोग विभिन्न धान्य फसलों जैसे कि गेहूँ, जौ, मक्का, मड़ुआ, मादेरा, इसके अलावा सब्जियों में जैसे टमाटर, गोभी, बैंगन, शिमला मिर्च इत्यादि में किया जा सकता है। इस जीवाणु के प्रयोग से फसलों को प्रति हेक्टेयर 20

0: से 25 किलोग्राम उर्वरक नाइट्रोजन के बराबर लाभ प्राप्त होता है एवं इसकी उपज में 10 से 15% तक की वृद्धि करने में सक्षम है। इसके अतिरिक्त इस जीवाणु से बीज की जमाव क्षमता में भी वृद्धि देखी गई है एवं पौधों में रोगों का प्रकोप भी कम होता है, परंतु यह फसलों को संपूर्ण नाइट्रोजन तत्व की पूर्ति कर पाने में सक्षम नहीं है। अतः अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए शेष नाइट्रोजन का प्रयोग रासायनिक उर्वरकों द्वारा करना चाहिए। इसी क्रम में दूसरे जीवाणु बिजरिंकिया एजोमोनास ड्रेक्सिया जो कि स्वतंत्र रूप से रहते हुए वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करते हैं। एजो स्पाइरलम जीवाणु आंशिक स्वतंत्र रूप से रहते हुए वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यौगिकीकरण कर फसलों को लाभ पहुँचाते हैं। इस जीवाणु द्वारा फसलों को 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उर्वरक नाइट्रोजन के बराबर लाभ प्राप्त होता है और जीवाणु का प्रयोग कर फसलों की उपज में 6 से 10% तक की वृद्धि देखी गई है। इसका प्रयोग विभिन्न धान फसलों में किया जा सकता है जैसे कि, परंतु धान मक्का ज्वार बाजरा आदि फसलों में इस जीवाणु का लाभ अधिक देखा गया है क्योंकि इन फसलों के साथ इस जीवाणु की विशेषता पाई गई है। इस जीवाणु का प्रयोग धान की फसल में भी किया जा सकता है। उर्वरक नाइट्रोजन के साथ ही एजोस्पाइरलम उपयोग का लाभ फसल को प्राप्त होता है। ये भी देखा गया है कि एजोस्पाइरलम के प्रयोग करने से जड़ों का अधिक विकास होता है जिससे कि वह भूमि से अधिक मात्रा में पोषक तत्वों को ग्रहण कर सकती हैं। इससे पौधों को अतिरिक्त लाभ होता है। इसी प्रकार कुछ सूक्ष्म जीव अघुलनशील फॉस्फोरस को घुलनशील रूप में परिवर्तित कर इसे पौधों के उपयोग योग्य बना देते हैं। इन्हें फॉस्फेट विलयकारी सूक्ष्म जीव या PSB के नाम से जाना जाता है। जीवाणुओं में बैसिलस स्यूडोमोनास राइजोबियम इत्यादि और कवकों या फफूंदों में एस्परजिलस पेनिसिलियम ट्राइकोडर्मा इत्यादि उदाहरण हैं। इन जीवाणुओं का उपयोग सभी धान्य तलहनी तिलहनी फसलों में किया जा सकता है। भूमि में विद्यमान घुलनशील फॉस्फोरस के प्रकार के आधार पर इन फसलों को 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उर्वरक फॉस्फोरस के बराबर लाभ पहुँचाते हैं। रॉक फॉस्फोरेट के साथ इनके प्रयोग से 30 से 35 किलोग्राम फॉस्फोरस के बराबर लाभ प्राप्त किया जा सकता है। फॉस्फोरस के उर्वरक अपेक्षाकृत महंगे होते हैं एवं इन उर्वरकों की प्रयोग क्षमता भी कम होती है। अतः फॉस्फेट विलयकारी जीवाणु का प्रयोग फसलों में फॉस्फोरस तत्व को उपलब्ध कराने के लिए करना चाहिए। इनका उपयोग नाइट्रोजन प्रदान करने वाले जीवाणु जैसे राइजोबियम एजोटोबैक्टर एजोस्पर्लम के साथ मिलाकर भी किया जा सकता है। अब किसान भाई सवाल यह होता है कि इन सूक्ष्म जीवों या जैव उर्वरकों का प्रयोग किस प्रकार करें। इसके लिए इन विशेष जीवाणुओं की निर्धारित मात्रा को किसी नमी धारक धूलीय पदार्थ जैसे चारकोल लिग्नाइट टैल्क पाउडर आदि में मिलाकर जैव उर्वरक तैयार किए जाते हैं जिन्हें प्राय कल्चर बायोफर्टिलाइजर या जैव उर्वरक के नाम से जाना जाता है और ये बाजार में भी उपलब्ध हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अलग अलग दलहनी फसलों में अलग अलग जाति या प्रजाति के राइजोबियम जीवाणु जड़ों पर गांठों का निर्माण करते हैं, इसलिए फसल के अनुसार ही इनका प्रयोग करना चाहिए। सामान्यतः किसी भी फसल के 10 किलोग्राम बीज को उपचारित करने के लिए 200 ग्राम जैव उर्वरक पर्याप्त होता है। सबसे पहले किसी छायादार जगह पर साफ बोरी अखबार पॉलिथीन बिछाकर उस पर बीजों की एक ढेरी बना लें और हाथ में दस्ताने पहनकर 200 से 250 ग्राम गुड़ चीनी या CMC के ठंडे घोल में जैव उर्वरक की निर्धारित मात्रा को अच्छी प्रकार मिलाकर बीजों के ऊपर उड़ेलकर उसे बीजों के साथ इस प्रकार मिलाएं कि प्रत्येक बीज के ऊपर जैव उर्वरक की एक समान परत चिपक जाए। इस प्रकार उपचारित बीज को 20 से 25 मिनट छाया में सुखाकर बुआई कर देनी चाहिए। दो या अधिक जैव उर्वरकों को एक साथ प्रयोग करने के लिए इनकी आवश्यक मात्रा का एक साथ घोल बनाकर बीजों का उपचार करना चाहिए। अब बात करते हैं धान और सब्जियों की फसलें जिनकी रुपाई की जाती है उनमें जैव उर्वरक का प्रयोग करने के लिए जैव उर्वरकों की 250 ग्राम मात्रा का 25 से 30 मिलीलीटर पानी में घोल बना लिया जाता है। पहले जड़ों को बहते हुए पानी में धो लें और धोने के पश्चात जड़ों को इस घोल में 15 से 20 मिनट तक डुबोकर रखने के पश्चात उसकी रुपाई कर दें। ये तो बात हुई कि जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं वो किस तरीके से लाभ पहुँचाते हैं। अब इन सूक्ष्म जीवों का को प्रयोग करते समय हमारे किसान भाई और बहन किन किन बातों का ध्यान रखें जिससे कि वो अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चूँकि जैव उर्वरक एक प्राकृतिक उत्पाद है अतः इनका प्रयोग का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान भाइयों को कुछ सावधानियों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। पहला है, राइजोबियम कल्चर से मिलने वाला लाभ बहुत हद तक उनकी गुणवत्ता पर निर्भर करता है, अतः किसी सरकारी या विश्वसनीय स्रोत से ही अच्छी गुणवत्ता का जैव उर्वरक ही क्रय करना चाहिए। राइजोबियम कल्चर का प्रयोग इनकी लिए निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व ही कर लेना चाहिए। राइजोबियम कल्चर को सीधे रासायनिक उर्वरकों एवं खेती में प्रयोग किए जाने वाले रसायनों जैसे कीटनाशी खरपतवारनाशी आदि के साथ प्रयोग नहीं करना चाहिए। राइजोबियम कल्चर से बीज का उपचार किसी साफ फर्श अखबार पॉलिथीन या बोरे पर ही करना चाहिए। राइजोम कल्चर से उपचारित बीजों को धूप में नहीं सुखाना चाहिए। जैव उर्वरकों से उपचारित बीजों को किसी साफ फर्श, पॉलीथीन या बोरे पर ही करें। इस प्रकार यदि हमारे किसान भाई और बहन इन कृषि उपयोगी सूक्ष्म बीजों का प्रयोग अपनी फसलों में करेंगे तो निश्चित ही अधिक फसलोत्पादन कर कृषि विकास में सहायक होने के साथ साथ पृथ्वी की उर्वरक शक्ति को भी बढ़ा सकेंगे।
1: कृषि में सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता, इस विषय पर खेती की बातें कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर पंकज कुमार मिश्रा से जानकारी। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होती है संध्या 5 बजे। आज रात 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन और रात 9:30 पर चर्चा का विषय है। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। शाम 6:50 पर गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार और शाम 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे। शाम 5:05 पर शैल स्वर कार्यक्रम होगा, जिसमें आज कलाकार होंगे भोला दत्त तिवारी। संध्या 5:15 पर युववाणी कार्यक्रम में आज की बात का विषय रहेगा खान पान की आदत और आपका स्वास्थ्य, साइंस का संसार, आज का इतिहास भी युवा साथी सुनेंगे। संध्या 5:45 पर उत्तरायण कार्यक्रम प्रसारित होगा, जिसमें आज चर्चा के विषय रहेंगे विश्व मधुमक्खी दिवस, मिशन लाइफ, जल की बचत। इसी कार्यक्रम में रीप परियोजना के लाभार्थी मौन पालन कर कैसे लाभ कमाए, इस विषय पर नारायण सिंह फर्तियाल से भेंट वार्ता सुनवाई जाएगी। भेंट करता होंगे प्रमोद कुमार पांडे। संध्या 6:41 पर भक्ति संगीत सुनिएगा, जिसमें आज लता मंगेशकर के गाए भजन आपको सुनवाएंगे। संध्या 7 बजे समय रहेगा ग्राम जगत का, आज की बातें शोधित बीजों का प्रयोग विषय पर होंगी और चर्चा सुनिएगा मोटे अनाज के फायदे विषय पर। आज रात 8 बजे लोक गाथा नल दमयंती का नवा भाग सुनवाया जाएगा। श्रोता आज रात 10:30 पर सुनेंगे पंडित सुमित्रा नंदन पंत की जन्म जयंती के अवसर पर उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित रूपक बरसो ज्योतिर्मय जीवन, प्रस्तुति होगी डॉक्टर संजय वर्मा की। फिल्म संगीत आप सुनेंगे संध्या 7:40 पर और रात 9:15 पर इंद्रधनुष में सुगम संगीत सुनिएगा रात 10 बजे। ये था विवरण हमारे केंद्र से आज सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:45 हुए हैं, इस समय श्रोता सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फनकार, और आज फनकार हैं जानी मानी मशहूर अभिनेत्री ज़रीना वहाब। श्रोताओं बेहद मंझी हुई, बेहद खूबसूरत शालीन अदाकारा, जिन्होंने अपनी बेहतरीन अदायगी से अपनी हर फिल्म में अपनी खास भूमिकाओं के जरिए अपनी खास पहचान बनाई है और दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय रही हैं ज़रीना वहाब। और आज एक ही फनकार की फनकारा हैं ज़रीना वहाब।

तो श्रोताओं, 70 और 80 के दशक की बेहद जानी मानी सुप्रसिद्ध अभिनेत्री रहीं ज़रीना वहाब। 17 जुलाई 1956 को विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में आपका जन्म हुआ। बचपन से ही कला में आपको ख़ास रुचि थी और पुणे स्थित फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी FTII से उन्होंने अभिनय का प्रशिक्षण प्राप्त किया। उनके हिंदी फिल्मों में करियर की शुरुआत की बात करें तो साल 1974 में आई फिल्म इश्क इश्क इश्क से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा।

0: शुद्धों इश्क इश्क इश्क फिल्म से बॉलीवुड में उन्होंने कदम रखा और साल 1976 में आई फिल्म चितचोर जो कि अमोल पालेकर के साथ उनकी ये फिल्म आई। इस फिल्म के ज़रिए वो इस फिल्म इंडस्ट्री यानी बॉलीवुड में अपना अभिनय कौशल दर्शाने में बेहद कामयाब रहीं और ये फिल्म भी हिट फिल्म साबित हुई। इनकी जीवन की ये मील का पत्थर फिल्म थी। इसके बाद 1977 में घरौंदा फिल्म आई और इस फिल्म में भी उनके अभिनय को दर्शकों ने बेहद सराहा और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर का नामांकन उन्हें इस फिल्म के लिए मिला। हिंदी के अलावा उन्होंने मलयालम फिल्मों में भी काम किया है और हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू और अपनी मातृभाषा तेलुगु में वो धारा प्रवाह बोलती हैं। और फिल्मों के अलावा वो टीवी शो में भी बेहद सक्रिय रहती हैं और उनकी फिल्मों में हम बात करें तो कई फिल्में हैं जो बेहद चर्चित रहीं, लेकिन कुछ फिल्मों का जिक्र हम करेंगे जैसे इश्क इश्क इश्क है, गोपाल कृष्ण, घरौंदा, चितचोर, सावन को आने दो, जज्बात जैसी कई फिल्में हैं जिसमें ज़रीना वहाब के अभिनय कौशल को हमने यानी दर्शकों ने देखा है, सराहा है और उन्हें खूब पसंद किया है।
1: दीवाना,
2: एक दीवाना शहर में,
1: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी।
2: दो दीवाने शहर में,

तो श्रोतों, एक ही फनकार में आज फनकार थीं ज़रीना वहाब। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 3 बजे हैं और इस समय श्रोता सुनते हैं सदाबहार फिल्मी गीत।

सभी श्रोताओं को अंजु पंक्ति का स्नेहिल नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, हम सभी जानते हैं दुनिया एक किताब की तरह है और हर राह एक सबक, हर राह बांचता है संकेत जिंदगी के, आनंद के, उत्सव के। तो ठहरने से बेहतर है कि चला जाए, रुकने की क्या जरूरत, बढ़ते चलिए, जिंदगी का लुत्फ उठाते रहिए। कौन जाने अगले पल जिंदगी में क्या हो, कैसा हो, हर लम्हा भरपूर जिए, यही जिंदगी का असल सबक है जिसे महसूस करने की जरूरत हर एक को है। बहरहाल, ये खूबसूरत गाना इसी बात को दर्शाता है और फिल्म है वक्त। आशा भोसले की मीठी आवाज, साहिर का गीत और रवि का मधुर संगीत है।

ज़िंदगी में हर चीज़ बदलती है, चाहे मौसम हो, रिश्ते हों, लोग हों। बदलाव शायद यही प्रकृति का नियम है और लोग भी बदलते हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जैसे कि कहा ना, प्रकृति का नियम है बदलाव। तो ऐसे में उदास न होकर, हताश न होकर ज़िंदगी को एक नए सिरे से गुना जाए, बुना जाए, रिश्तों को संभाला जाए, मौसम को महसूस किया जाए, तो ज़िंदगी और भी आसान हो जाती है। जैसे इस खूबसूरत गाने में बयां किया गया है, फिल्म है बदलते रिश्ते, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, सुमन कल्याणपुर की आवाज़ें हैं, अनजान का गीत और लक्ष्मी कांत प्यारेलाल का मधुर संगीत है। अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफ़र के हम हैं, अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफ़र के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। पहले हर चीज़ थी अपनी, मगर अब लगता है अपने ही घर में किसी दूसरे के घर के हम हैं।

शुद्ध आँखें हमारे पूरी शख्सियत का आईना होती हैं। आँखें बहुत कुछ कह देती हैं जो हम कह भी ना पाएं। और आँखों का जिक्र चला है तो ये खूबसूरत नगमा आँखों के ही नाम है। फिल्म है घर, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ें हैं, बोल गुलजार के हैं, तर्ज बनाई है आरडी बर्मन ने। नई नई आँखें हो तो हर मंजर अच्छा लगता है।

नई नई आँखें हो तो हर मंजर अच्छा लगता है। कुछ दिन शहर में घूमे लेकिन अब घर ही अच्छा लगता है।

जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, ये ज़मीं चांद से बेहतर नज़र आती है हमें। उमराव जान फिल्म का ये नगमा श्रोताओं पेश है अब। तलत अज़ीज़ की आवाज़ है, बोल शहरयार के, तर्ज बनाई है खय्याम ने।

लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं, लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं, तेरे जैसा कोई हमको मिला नहीं। जमाने भर की बातें उनसे कह दी, जो कहना चाहिए था वो कहा नहीं। प्रोग्राम के आखिर में पेश है खूबसूरत तराना आहिस्ता आहिस्ता फिल्म से। आशा भोसले अनवर की आवाज़ें हैं, निदा फाजली साहब ने इसे लिखा है।

श्रोता भी सुन रहे थे सदाबहार फिल्मी गीत FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 3:30 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा यहीं पर संपन्न होती है। सायंकालीन सभा में संध्या 5 बजे हम फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: FM बैंड 14.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन एयर पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 5 बजने वाले हैं। अब हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और इटली द्विपक्षीय व्यापार को 20 बिलियन यूरो तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। इटली के रोम में प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी में तकनीक और नवाचार मुख्य केंद्र हैं।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि श्री मेलोनी के नेतृत्व में दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा और ऊर्जा मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की सभ्यता बहुत पुरानी है।
2: रोम को विश्व में इटर्नल सिटी के रूप में जाना जाता है। भारत में मेरी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी काशी उसको भी अनादि और शाश्वत नगर माना जाता है। जब दो सभ्यताएं मिलती हैं तो बातचीत केवल एजेंडा तक सीमित नहीं होती। इसमें इतिहास की गहराई, भविष्य की दृष्टि और मित्रता की सहजता तीनों साथ दिखाई देते हैं।
1: हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। ये संबंध स्वतंत्रता, लोकतंत्र और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण के मूल्यों पर आधारित हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक व्यवस्था में गहन परिवर्तन हो रहे हैं, भारत इटली साझेदारी उच्चतम राजनीतिक और संस्थागत स्तर पर नियमित आदान प्रदान से निर्देशित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासन के मंत्री ली जोंग चुल से मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों पक्ष संयुक्त विकास, संयुक्त उत्पादन और संयुक्त निर्यात के अवसर पैदा करने के लिए आपसी प्रयासों का लाभ उठाने पर सहमत हुए। दोनों देशों के नवाचार इकोसिस्टम को आपस में जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी काइंड एक्स पहल की क्षमता को पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए एक रूपरेखा पर भी चर्चा की गई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च्ड

0: प्रिसियंस गाइडेड मिसाइल के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया। यह आत्मनिर्भर भारत की पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की। उन्होंने इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक रणनीतिक उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में एक जनहित याचिका का जवाब मांगा है। इसमें सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्ति में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई है। सरकार ने जम्मू कश्मीर के गांदरबल में कश्मीरी लड़ाकों द्वारा सेना के वाहन पर हमले के बाद सैनिकों के मारे जाने की सोशल मीडिया की खबरों का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तंत्र जांच इकाई ने बताया कि क्षेत्र में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। मुंबई प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है, जबकि कोलकाता प्लेऑफ में जाने के लिए अगले दोनों मैचों में जीत के साथ साथ दूसरे टीम के परिणाम पर निर्भर है। मौसम विभाग ने इस सप्ताह उत्तर पश्चिमी और मध्य क्षेत्र में लू की आशंका व्यक्त की है। अगले 4 दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड में लू चल सकती है, जबकि असम, मेघालय, केरल, माहे, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। शैलफल कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं भोला दत्त तिवारी का गाया ये कुमाऊनी लोकगीत।

शैलफर कार्यक्रम में श्रोता आज आप सुन रहे थे भरदत्त तिवारी का गया ये कुमाऊनी लोकगीत। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है जानकारी हमारे केंद्र से हमारी आज की सायंकालीन सभा के शेष तथा कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। चर्चा का विषय है ये कार्यक्रम आज रात 9:30 पर हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। अब से कुछ देर बाद सायं 5:15 पर युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवा वाणी। कार्यक्रम उत्तरायण का समय रहेगा सायं 5:45, जिसमें आज हम आपको सुनवाएंगे रीप परियोजना के लाभार्थी नारायण सिंह फरत्याल से मौन पालन कर कैसे लाभ कमाए विषय पर भेंटवार्ता। भेंटकर्ता होंगे प्रमोद कुमार पांडे। भक्ति संगीत कार्यक्रम में सायं 6:41 पर कलाकार होंगे लता मंगेशकर। ग्रामोत्सव कार्यक्रम होगा ग्राम जगत आज सायं 7:00। फिल्म संगीत हम आपको सुनवाएंगे आज सायं 7:40 पर। लोकगाथा कार्यक्रम के अंतर्गत आज रात्रि 8:00 आप सुनेंगे लोकगाथा नल दैवंती का नवा भाग। फिल्म संगीत एक बार फिर हम आपको सुनवाएंगे इंद्रधनुष कार्यक्रम में रात्रि 9:15 पर। सुगम संगीत आप सुनेंगे आज रात्रि 10:00 बरसो ज्योतिर्मय जीवन पंडित सुमित्रानंदन पंत के व्यक्तित्व व कृतित्व पर आधारित ये रूपक हम आपको सुनवाएंगे आज रात्रि 10:30 पर। प्रस्तुति डॉक्टर संजय वर्मा की होगी। हमारी प्रातःकालीन सभा में कल प्रातः 6:05 पर आप सुनेंगे विचार बिंदु, तत्पश्चात भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। प्रातः 7:10 पर श्री रामचरितमानस गान और प्रातः 7:30 पर लोकमंजरी कार्यक्रम में कलाकार होंगे अर्जुन कुमार। हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत कल प्रातः 7:50 पर हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर गीता बिष्ट की वार्ता आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष भारतीय संस्कृति साहित्य और सूचना का प्रेषक आकाशवाणी। शास्त्रीय संगीत आप सुनेंगे कल प्रातः 8:30 पर। फार्मेसी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्धारण हम आपको सुनवाएंगे कल प्रातः।

सैनिकों के लिए फिल्म संगीत प्रसारित किया जाएगा कल प्रातः 11 बजे। लोकसुर ये कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे कल प्रातः 11:30 पर। मेरी पसंद फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे कल दोपहर 12 बजे। महिलाओं का कार्यक्रम होगा अर्पण कल दोपहर 12:30 पर। सुगम संगीत कार्यक्रम में कल दोपहर 1:15 पर कलाकार होंगे चंदन दास, सोनू निगम, हरिहरन और मेहंती हसन। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की 1289वीं कड़ी हम आपको सुनवाएंगे कल दोपहर 1:30 पर। उत्तराखंड के लोकगीत आप सुनेंगे कल दोपहर 2 बजे। किसान भाई सुनेंगे अपने कार्यक्रम खेती की बातें कल दोपहर 2:30 पर। एक ही फनकार फिल्म संगीत का कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे कल दोपहर 2:45 पर। और सदाबहार फिल्मी गीत आप सुनेंगे कल अपराह 3 बजे।

संदेश टू सोल्जर्स, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कल सायं 4 बजे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शैल स्वर कार्यक्रम में कल सायं 5:05 पर कलाकार होंगे प्रताप सिंह और साथी। युवा साथियों कार्यक्रम होगा युवावाणी कल सायं 5:15 पर। कार्यक्रम उत्तरायण का समय रहेगा कल सायं 5:45, जिसमें आप सुनेंगे गायत्री जोशी की वार्ता चाह खेती दगड़ विकास और समावेशन। इसके अतिरिक्त चंदन सिंह जीना की वार्ता भी हम आपको सुनवाएंगे, संवाद और विकासन लीजिए सांस्कृतिक विविधता विश्व अंतर्राष्ट्रीय दिवस। भक्ति संगीत कार्यक्रम में कल सायं 6:41 पर कलाकार होंगे बिजू चौधरी और अनूप जलोटा। किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम किसान वाणी कल सायं 7 बजे। फिल्म संगीत हम आपको सुनवाएंगे कल सायं 7:40 पर। मिले जुले गीतों और गजलों का कार्यक्रम सबरस का समय रहेगा कल रात्रि 8 बजे। फिल्म संगीत एक बार फिर आप सुनेंगे कल रात्रि 9:15 पर। गूंजती याद चिरंजीत का लिखा ही नाटक आप सुनेंगे कल रात्रि 9:30 पर। सुगम संगीत हम आपको सुनवाएंगे कल रात्रि 10 बजे। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से हमारी आज की सायंकालीन सभा के शेष तथा कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अब युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवा वाणी।

0: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो मित्र मीनाक्षी।
1: और मैं हूं आपकी दोस्त ममता। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो सीधे हमारे रोजमर्रा की जिंदगी और हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ है। आज का हमारा विषय है खान पान की आदतें और हमारा स्वास्थ्य।
0: बिल्कुल ममता, अक्सर ये देखा जाता है कि हम अपनी पढ़ाई, करियर और काम की भागदौड़ में सबसे पहली चीज जो दांव पर लगाते हैं वो है हमारा स्वास्थ्य। और स्वास्थ्य की शुरुआत होती है हमारी थाली से, यानी हमारे खान पान से।
1: सही कहा मीनाक्षी, आजकल के दौर में फास्ट फूड या पैकेट बंद चीजों का चलन बहुत बढ़ गया है। स्वाद में तो ये चीजें अच्छी लगती हैं, लेकिन इनमें पोषण बिल्कुल नहीं होता। ज्यादा मैदा, अत्यधिक चीनी और रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल हमारे शरीर को अंदर से कमजोर कर रहा है।
0: हाँ, और

0: इसका सीधा असर हमारी कार्य क्षमता पर पड़ता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमें इतनी जल्दी थकान क्यों हो रही है या हम तनाव में क्यों हैं? इसका एक बड़ा कारण हमारी स्किप करने की आदत भी है, जैसे सुबह का नाश्ता न करना और फिर सीधे दोपहर में भारी भोजन कर लेना।
1: बिल्कुल। तो दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी छोटी और व्यवहारिक आदतों के बारे में बात करेंगे जिन्हें हम अपनी व्यस्त जीवन शैली में आसानी से शामिल कर सकते हैं। मीनाक्षी, सबसे पहले शुरुआत तो सुबह के भोजन से ही होनी चाहिए।
0: बिल्कुल, सुबह का नाश्ता कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। नाश्ते में हमें हल्का और पौष्टिक नाश्ता शामिल करना चाहिए।
1: इसके साथ ही हमें सजग होकर खाना चाहिए, क्योंकि अक्सर हम मोबाइल टीवी देखते हुए खाना खाते हैं। इससे हमें ये अंदाजा नहीं रहता कि हम कितना खा रहे हैं और भोजन ठीक से पचता भी नहीं है।
0: बिल्कुल। तो दोस्तों, आप सभी अपने खान पान पर ध्यान दें, अच्छा खाइए और स्वस्थ रहिए।
1: तो दोस्तों, अब हो गया है समय आपके मनोरंजन का। पेश है आप सभी के लिए एक प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों, अब हो गया है समय हमारे आज के अंक यानी साइंस के संसार का,
1: जिसमें आज हम आपको ले चलने वाले हैं एक ऐसे सफर पर जो जमीन से नहीं बल्कि सीधे आसमान और सितारों की दुनिया से जुड़ा है।
0: बिल्कुल सही। अच्छा मीनाक्षी, एक बात बताओ, जब हम रात को छत पर लेटकर आसमान को देखते हैं तो मन में क्या आता है? यही ना कि इन टिमटिमाते तारों के पार आखिर क्या है?
1: हाँ ममता, बचपन में तो लगता था कि बस चांद है और कुछ तारे, लेकिन विज्ञान ने हमें बताया कि वहाँ तो पूरी की पूरी आकाशगंगा, ब्लैक होल और न जाने क्या क्या छुपा है। और जानते हैं दोस्तों, इस छुपे हुए ब्रह्मांड को हमारी आंखों के सामने लाने का सबसे बड़ा श्रेय जाता है हबल स्पेस टेलीस्कोप को।
0: वहाँ हबल स्पेस टेलीस्कोप यानी ब्रह्मांड में तैरती इंसानी आंख। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 1990 में जब इसे अंतरिक्ष में भेजा गया था तो इसने खगोल विज्ञान की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया।
1: और आज हम हबल की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज यानी 20 मई को हबल ने अंतरिक्ष से अपनी पहली तस्वीर पृथ्वी पर भेजी थी।
0: सही कहा। अच्छा मीनाक्षी, हमारे कई युवा दोस्त सोच रहे होंगे कि जमीन पर इतने बड़े बड़े टेलीस्कोप हैं तो इस हबल को अंतरिक्ष में भेजने की क्या जरूरत थी?
1: बहुत पते की बात पूछे ममता। दरअसल हमारी पृथ्वी के चारों ओर हवा और बादलों का एक घेरा है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। जमीन के टेलीस्कोप जब आसमान को देखते हैं तो ये वायुमंडल तस्वीरों को थोड़ा धुंधला कर देता है। हबल को इस वायुमंडल से ऊपर अंतरिक्ष की खाली जगह में फिट किया गया है, इसलिए इसकी तस्वीरें एकदम क्रिस्टल क्लियर होती है।
0: अरे वाह दोस्तों, हबल ने हमें कई ऐसी चीजें बताई जो पहले सिर्फ कल्पना थी। जैसे इसने बताया कि हमारा ब्रह्मांड करीब 13.8 अरब साल पुराना है।
1: हबल ने सिर्फ उम्र नहीं बताई बल्कि ब्रह्मांड के सबसे बड़े विलेन सुपर मैसिव ब्लैक होल की मौजूदगी को भी साबित किया।
0: और इसकी खींची हुई तस्वीरें तो कमाल हैं, फिलर्स ऑफ क्रिएशन, जहां नए तारे जन्म ले रहे हैं।
1: वैसे दोस्तों, अब हबल काफी बूढ़ा हो गया है लेकिन इसका जज्बा युवाओं जैसा ही है। अब इसका साथ देने के लिए नासा ने एक नया साथी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप भी भेज दिया है।
0: तो दोस्तों, जब भी आप रात को आसमान की तरफ देखें तो एक पल के लिए उस हबल टेलीस्कोप को थैंक यू जरूर कहें।
1: इस अंक को यहीं पर रोकते हैं, लेकिन ज्ञान और गानों का सफर यूं ही जारी रहेगा। तो पेश है फिर से आप सभी के लिए ये खूबसूरत सा गीत।

0: दोस्तों, कैलेंडर का हर दिन अपने आप में एक पूरी किताब समेटे होता है। आज हम इतिहास की उसी किताब का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पन्ना पलटने जा रहे हैं।
1: बिल्कुल, आज हम बात करेंगे 20 मई की। ये वो तारीख है जिसने व्यापार, विज्ञान, भूगोल और राजनीति की दिशा को बदल दिया।
0: शुरुआत करते हैं उस दौर से जिसने भारत की किस्मत और दुनिया के भूगोल को बदल दिया। 20 मई 1498 को पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत के कालीकट तट पर पहुंचे थे। ये कोई आम यात्रा नहीं थी। वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत आने का एक बिल्कुल नया और सुरक्षित समुद्री रास्ता खोज निकाला था। इससे पहले मसालों के व्यापार पर अरब के व्यापारियों का कब्जा था। इस खोज के बाद यूरोपीय ताकतों के लिए भारत के दरवाजे खुल

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
0: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों, अब हो चला है समय अंतिम चरण का, जिसमें हम पूछते हैं आपसे प्रश्न, साथ ही जानते हैं बीते दिन पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर।
3: और हमारा कल का प्रश्न था, विश्व परिवार चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? जिसका सही उत्तर है, विश्व परिवार चिकित्सक दिवस 19 मई को मनाया जाता है। इसका सही उत्तर हमें लिख भेजा है मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन सुहान, अरजान और अबान अब्बासी उपरकोट बुलंदशहर से, ग्राम नागर कोहरा से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, बेबी आराध्या साहू, गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और जगदीश जौहरी ने, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिम्पा, कपिल छिम्पा, पूजा परिहार, एसएम जावेद कुमला झारखंड से, ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़।

0: कर से विनय शंकर पांडे, नयन पांडे, सुमांशु पांडे, कबीर रेडियो श्रोता संघ डोडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामोरिया, अजय तुसार देव तामोरिया, प्रज्ञानंद देवांगन ने। दोस्तों आप सभी बधाई के पात्र हैं।
1: अब नोट कर लीजिए हमारा आज का प्रश्न। हमारा प्रश्न है वास्को डी गामा भारत कब आया?
0: और अगर जानते हैं आप इस प्रश्न का सही उत्तर और भेजना चाहते हैं हमें तो नोट कीजिए हमारा व्हाट्सएप नंबर 9411011122।
1: इसी के साथ दोस्तों आज का ये सफर यही समाप्त होता है। ज्ञान विचारों और नई जानकारियों का ये सिलसिला थमा नहीं है। कल फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ।
0: दीजिए अनुमति अपनी रेडियो मित्र मीनाक्षी को
1: और ममता को।
0: कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आप साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युवावाणी। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 5:45 हुए हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम उत्तरायण।

नमस्कार। कार्यक्रम उत्तरायण सुनने सभी श्रोताओं का आपू दगड़ी दिग्विजयी। श्रोताओं, आज पूर्व दुनी में मनाई जानो विश्व मधुमक्खी दिवस। यको मनोनत लीजिए, यो प्रस्ताव लियाई गो संयुक्त राष्ट्र महासभा में उस साल से 2017 में पहल बार मधुमक्खी दिवस मनोने प्रस्ताव लाए गो। यमी 115 देश शामिल छे जिन्होंने यो प्रस्ताव दे। वे बात संयुक्त राष्ट्र सभा यो प्रस्ताव को मंजूरी दे। वे बात अगर हम बात करूँ, पहल बार विश्व मधुमक्खी दिवस मनाए गो साल 2018 हूँ 20 मई दिन। ये दिन पूर्व दुनिया मानूल विश्व मधुमक्खी दिवस मना। यह एक मुख्य उद्देश्य यो छू कि जो हमार प्रकृति छू, प्रकृति में विभिन्न जीव छन और हर कह का अपन अपन महत्व छू। वीक महत्व बार में हर कोई जानो, हर कोई वीक महत्व को पछाणो। यह लीजिए विश्व मधुमक्खी दिवस मनाई जा। और अगर हम यो साल यानी कि साल 2026 एक बात करूँ, यो साल यह एक थीम छू लोगों और ग्रहों के लिए एक साथ मधुमक्खियाँ एक साझेदारी जो हम सभी को जीवित रखती हैं। यो थीम का मतलब छू यो बार कार्यक्रम यह विषय पर आधारित हल। मधुमक्खी हमारे लिए बहुत ज़रूरी छन। ये जहाँ परागण कर भी जो हमार आसपास प्रकृति फूल डाव छ जो उनको जीवन धारण काम करनी। दोहर तरफ है यो एक किसानक मतलब छू यह पालन कर भेर उलोक मौ यानी कि शहदक उत्पादन कर सकनी वीर उनको आर्थिक फायदा हूँ। और जैसे हम पहले कहो हमार प्रकृति लीजिए यो मधुमक्खी यो मौन वरदान छन। अगर मौन नहीं हो तो हम यह दुनिया कल्पना लय नहीं कर सकना। यो हमार पारिस्थितिकी तंत्र में एक मजबूत आधार छुन, एक मजबूत कड़ी छू। जब यह हॉल तब हमार जो यह प्रकृति यदु सुंदर प्रकृति छू, यदु भलियांग जीवन छू, हमार आसपास यदु सुंदर फूल छन बोट डाव छन, तो यह जो आधार में जो एक महत्वपूर्ण छू उ छू हमारे यहाँ मौन यो मधुमक्खी। यह विषय में आखिर आखिर बात करूँ ओवर पहले सोनिया राधा तिवारी जी।

0: श्रोताओं, जैसे मैंने बताया कि आज विश्व मधुमक्खी दिवस छो, यह विषय पर पिछड़ दिना हमारे केंद्र में रांची रीप परियोजना लाभार्थी नारायण सिंह फर्तियाल जो यंथी मौन पालन कर कैसे लाभ कमाए विषय पर हमारे दगड़ी प्रमोद कुमार पांडेजूर बातचीत करी। आओ आपको सुनो यो भेंटवार्ता।
1: आज हमारे आकाशवाणी अल्मोड़ा के स्टूडियो में आए हुए हैं श्री नारायण सिंह फर्तियाल जी, जो कि ग्राम कनालमुंगा ब्लॉक हवालबाग जिला अल्मोड़ा के रहने वाले हैं। फर्तियाल जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे आकाशवाणी अल्मोड़ा के स्टूडियो में। फर्तियाल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप एक मधुमक्खी पालक हैं, तो आप मधुमक्खी पालक होने के नाते मधुमक्खी दिवस के अवसर पर क्या कहना चाहेंगे?
2: मधुमक्खी एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है। मधुमक्खी से आज की डेट में हमें बहुत कुछ फायदे हैं
1: जी।
2: जैसे ये एक बेरोजगारी से स्वरोजगार की ओर, आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। मैंने 3 बॉक्सेस शुरू किया था मधुमक्खी का पालन। उस समय मैं कोरोना काल में दिल्ली से अपने गांव शिफ्ट हुआ था
1: जी,
2: तो मेरे पास कुछ भी काम नहीं था। मैंने 3 बॉक्सेस शुरू किया, तो धीरे धीरे करते करते आज हम इस कंडीशन में गए हैं कि हमारे पास 200-250 बॉक्स मधुमक्खी के हैं, जिसको एपिस सेरेना इंडिका पहाड़ी मौन कहते हैं जिसको, ठीक है। इसमें ये एक जो बॉक्स मधुमक्खी का होता है, उसमें एक रानी होती है, कुछ ड्रोन होते हैं और पूरे वर्कर होते हैं
1: जी।
2: ये एक परिवार की तरह काम करते हैं, अपने परिवार के लिए ये अपने प्राणों का भी बलिदान करते हैं। मधुमक्खी से हमें कई फायदे हैं, जैसे अगर हम कोई फसल हमने बोई होगी तो हमारी पैदावार डबल हो जाती है। इससे हमें शहद का उत्पादन होता है, मोम का उत्पादन होता है, पोलन का उत्पादन होता है, रॉयल जेली हम प्राप्त कर सकते हैं, प्रोपोलिस प्राप्त कर सकते हैं
1: जी।
2: इस व्यवसाय को हम एक छोटे से व्यवसाय से शुरू करके एक बड़े लेवल पर हम इस काम को कर सकते
1: जी। फर्तियाल जी, तो फर्तियाल जी, मधुमक्खी पालन करने के लिए हमें सबसे पहले किस चीज की आवश्यकता होती है?
2: एक मधुमक्खी पालन करने के लिए हमें 5,000-10,000 में हम मधुमक्खी का एक छोटा व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।
1: कैसे?
2: अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप इसको 1-2,000 से भी शुरू कर सकते हैं। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा जिस घर में कहीं मधुमक्खियां हैं, जब बसंत का सीजन होता है उस समय बकछूट होते हैं
1: जी,
2: तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कोई बकछूट हो रहा है। तो अगर आप बॉक्स लेने के लिए आपके पास पैसे नहीं है तो आप लकड़ी का एक होल बना के एक लकड़ी का छोटा मोटा बॉक्स बना सकते हैं, उसके जरिए आप इसको छोटे व्यवसाय से शुरू कर सकते हैं
1: जी।
2: ठीक है, आपको जब स्टार्टिंग में शहद मिलेगा, एक ही बॉक्स से आपको 2-3 बॉक्स बना के फिर आप मधुमक्खी भी सेल कर सकते हैं, शहद भी सेल कर सकते हैं और फिर इसको धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं
1: जी। तो इसके लिए कोई सरकारी सहायता जो आपने प्राप्त करी हो?
2: हाँ, आज के दिन में हर विभाग आपको मधुमक्खी में बहुत अधिक सपोर्ट कर रहे हैं। अगर उद्यान विभाग में आपने कोई ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी आपको किसी भी संस्था से, जैसे ब्लॉक लेवल पर, जिला लेवल पर, जहाँ भी होती है, अगर आपने ट्रेनिंग ले ली तो आप साहिबगढ़ उसकी एक फोटोकॉपी को लेके और आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेके उद्यान विभाग में जाएंगे, वहाँ एक फॉर्म मिलता है, उसको भरना पड़ेगा आपको
1: जी।
2: तो आपको वहाँ 10 बॉक्स के अलावा अप्लाई करेंगे तो आपको 80% सब्सिडी के आधार पर 10 बॉक्स मिल जाएंगे
1: जी।
2: और उसके अतिरिक्त अगर आप इस काम को धीरे धीरे बड़ा करेंगे तो आपको उद्यान विभाग से भी हेल्प मिलती है और रिप द्वारा भी हेल्प मिलती है। जैसे हमें रिप द्वारा भी 6,00,000 का उन्होंने हमें हेल्प दी है।
1: अच्छा।
2: और उद्यान विभाग से भी हमें हेल्प मिली थी, हमने ट्रेनिंग दी, कई लोगों को ट्रेनिंग दी, तो वहाँ पर हमको 80% सब्सिडी के हिसाब से 10 बॉक्स मिले।
1: प्रतियाल जी, आपने कहा कि हमें रिप द्वारा सब्सिडी मिली, हमें सहायता मिली, तो आपने उद्यान विभाग से न लेके आए सरकारी, उससे आप रिप की ओर गए, क्या कारण है?
2: हमारे गांव से नजदीक हमारे वहीं पर ब्लॉक है, हॉलबाग ब्लॉक, तो हम हॉलबाग ब्लॉक जाते रहते थे, तो वहां पर हमें रिप से ऐसे ही संपर्क हुआ, क्योंकि वहां पर हॉलबाग में ट्रेनिंग भी होती रहती है। ठीक है, तो जो उद्यमी थे उनका वहां पर जो लोग कोरोना काल में आए उन्होंने क्या व्यवसाय किया, तो वहां पर उसका बारे में डिटेल बताई, तो हमने जब कहा तब रिप से हमारा संपर्क हुआ, तब हमें रिप द्वारा ही प्रोत्साहन मिला, क्योंकि तब मिला, उन्होंने हमारा काम देखा, जिस लेवल पर हमारा काम था उन्होंने कहा कि आप इस काम को और बढ़ाइए, तो तब हमको उनके जरिए इस सहायता मिली।
1: कितना मिला आपको सब्सिडी?
2: 6,00,000 का मिला है सर, वहाँ से
1: 6,00,000 रुपए आपको रिप द्वारा दिया गया। जैसा कि आपने भी कहा फर्तियाल जी कि ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, वो उसका अगर हमको अनुभव हो जाए, उसके बारे में हमको प्रशिक्षण प्राप्त हो जाए, तो उस काम को हम आसानी के साथ फिर आगे को कर सकते हैं, चाहे वो मशरूम उत्पादन हो, चाहे वो कृषि कार्य में भी हम कहेंगे कि अगर अच्छे ढंग से उस कार्य को

0: किया जाए तो हमको फायदा होता है। तो फर्तियाल जी, कितना शहद आप निकाल लेते हैं?
1: सर, हम साल में इसमें 4 से 5 क्विंटल करीब शहद निकालते हैं। 4 से 5 के बीच में कभी 480 kg तक हो जाता है, मतलब 5 क्विंटल तक हमारा शहद निकल जाता है। बट इससे अधिक हम मधुमक्खियाँ सेल पर अधिक फोकस करते हैं।
0: अच्छा, यानी कि आप मधुमक्खियों की क्या बॉक्स बेचते हैं?
1: हाँ, मधुमक्खी पूरी कॉलोनी बॉक्स से ही।
0: अच्छा, तो एक कॉलोनी में आप कितने मॉन होते हैं?
1: सर, एक कॉलोनी में हमारे जो कॉलोनी होती है उसमें एक अच्छी डेवलप कॉलोनी होती है, सुपर कॉलोनी जिसको बोलेंगे हम, उसमें क्वीन भी मिलेगी आपको, वर्कर भी मिलेंगे और कुछ ड्रोन भी मिलेंगे
0: जी।
1: वर्कर की संख्या उसमें 40 से 50 हज़ार करीब होती है, जो एक स्ट्रांग कॉलोनी मानी जाती है।
0: यानी कि आप एक स्ट्रांग कॉलोनी जो है वो तैयार करके बेचते हैं?
1: हाँ, बॉक्स सहित बेचते हैं।
0: बॉक्स सहित, एक बॉक्स कितने का बेचते हैं?
1: हम बेचते हैं सर 6500 का।
0: यानी कि 6500 का एक बॉक्स बेचते हैं। और सरकार, जो सरकारी विभाग है, वहाँ एक बॉक्स कितने का मिलता है?
1: वो 4000 का लेते हैं।
0: तो आपके बॉक्स में और उनके बॉक्स में कितना अंतर होता है?
1: सरकार मधुमक्खियाँ नहीं देती हैं, बॉक्स ही देती हैं खाली।
0: अच्छा, खाली बॉक्स?
1: हाँ, वो खाली बॉक्स ही। अगर आपने ट्रेनिंग ली है तो आपको सब्सिडी के रूप में 400 में एक बॉक्स मिलेगा आपको,
0: खाली बॉक्स।
1: खाली बॉक्स
0: जी।
1: मधुमक्खियाँ वहाँ से नहीं मिल पा रही अभी सरकार। अच्छा, से
0: अच्छा, मधुमक्खियाँ आपको नहीं मिलेंगी, आपको खाली एक बॉक्स मिलेगा। तो उस मधुमक्खी के बॉक्स में वो कौन सा उचित समय है जब हमें मधुमक्खियाँ उनमें डालनी चाहिए?
1: सर, उचित समय तो ऐसे बसंत का है, बस लोग बसंत का कहते हैं। बट मेरा ये मानना है, अगर आपने ट्रेनिंग ली है तो आप किसी भी सीजन में कर सकते हैं
0: जी।
1: बट आपको थोड़ा प्रैक्टिकली ज्ञान होना ज़रूरी है कि बरसात के मौसम में, क्योंकि अब जून जुलाई में बरसात शुरू हो जाती है, तो उस समय बरसात के मौसम में मोमी कीड़ा लगने का बहुत अधिक चांस होता है
0: जी।
1: तो आपको ये थोड़ी प्रैक्टिकली ज्ञान होना चाहिए कि बरसात में हमें मधुमक्खियों को कैसे बचाना है, क्या रोकथाम है। अगर बरसात कंटिन्यू चल रही तो उसमें उसको हमें सिरप देना है, क्या करना है, ये चीज़ का ध्यान हमें ज़रूर देना है। और उचित समय एक ट्रेनर के लिए वैसे बसंत का समय है, एक नया मौन पालक के लिए। अगर आपको थोड़ा प्रैक्टिकली ज्ञान है तो आप किसी भी समय मधुमक्खी पालन शुरू कर सकते हैं।
0: हरदयाल जी, एक बात आप और बताइए कि मधुमक्खी पालन से क्या क्या लाभ हो सकता है?
1: देखिए, मधुमक्खी पालन से हमें फायदे ही फायदे हैं।
0: क्या क्या फायदे हैं?
1: नंबर 1 फायदे ये हैं, एक तो हमें मधुमक्खी शहद देती है फ्री कॉस्ट
0: जी,
1: ठीक है। दूसरा, हम जो खेती करते हैं, हमारी जो जैसे जो भी साग सब्जी जो भी बोया रहता है, अगर हमारी मधुमक्खी उसमें जाएगी, उसके जरिए हमें शहद तो प्राप्त हो ही रहा है, बट हमारी सब्जी का पैदावार डबल हो रही है।
0: बिल्कुल,
1: ठीक है। तो तीसरा, शहद के साथ हमें इसका पोलन भी हम कलेक्ट कर सकते हैं, रॉयल जेली कलेक्ट कर सकते हैं, मोम कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इसका मोम विष कलेक्ट कर सकते हैं। तो एक मधुमक्खी अपने जीवन काल में जब तक वो जीवित रहती है हमें फायदे ही फायदे देती है।
0: बिल्कुल,
1: उससे हमारा पर्यावरण भी शुद्ध हो रहा है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल,
1: सबसे बड़ी चीज ये है। तो एक मधुमक्खी हमें फायदे, पूरा जीवन जो हम मधुमक्खी जो अपने लिए कर रही है वो हमें हमारे लिए ही फायदे कर रही है।
0: बिल्कुल। और जबकि मैं तो ये कहूँगा फर्तियाल जी कि कृषि कार्य के लिए अगर कृषि हमने करनी है तो उसके लिए हमें मधुमक्खी पालन करना बहुत जरूरी है।
1: बहुत जरूरी।
0: फर्तियाल जी, कहा जाता है कि इसका जो डंक है वो भी बहुत फायदेमंद है, तो क्या क्या फायदा होता है उससे वो बता दीजिए। क्या होता है, मतलब इससे क्या बना सकते हैं हम?
1: आज की डेट में मधुमक्खी के डंक को जो बीमारियां हैं, कैंसर नाम की बीमारी है, उसके लिए भी इसका यूज किया जा रहा है
0: जी।
1: एक तो हम लोगों के मन में क्या धारणा दी गई कि मधुमक्खियाँ मौन काट देते हैं हमको, ठीक है, काट। पर आदमी को ये पता नहीं है हम लोगों को कि अगर मधुमक्खी हमको काट रही है तो उसके डंक से हमारी इम्यूनिटी मजबूत हो रही है, ठीक है। और अगर आपको मधुमक्खी कंटिन्यू काटेगी तो लोगों को जो बात नाम की बीमारी होती
0: जी,
1: है
0: जी, जी, जी।
1: उसकी क्षमता बहुत कम हो जाती है
0: जी।
1: तो इससे, इसके डंक से हमें कई चीज़ें फायदे हैं। बस लोगों के मन में एक डर है कि मधुमक्खी काटती है। भाई, कोई भी मधुमक्खी क्यों काटेगी आपको? आपको तब काटेगी ना जब वो आपके, आप उसके छत्ते में कुछ कोई मधुमक्खी दब जाएगी, हो जाएगी। अगर आप आराम से मधुमक्खी को करेंगे तो कभी नहीं काटती है। तो ये चीज़ें हमें ज़रा प्रैक्टिकली ज्ञान होना चाहिए। तो मधुमक्खियाँ कभी नहीं काटती, अगर काट भी रही तो वो आपके लिए फायदेमंद है
0: जी। और इसका डंक भी काफ़ी महंगा बिकता है,
1: बहुत महंगा।
0: फर्तियाल जी, आज हम देख रहे हैं कि मधुमक्खियों की संख्या कम होते हुए जा रही है, आखिर आप क्या कारण मानते हैं इसका?
1: देखिए, आज की डेट में मधुमक्खियों की संख्या कम होने के 3-4

0: कारण है सर, एक कारण है जो हर शहर में आजकल ये मोबाइल टावर लग गए हैं,
1: जी
0: इससे ये मधुमक्खियाँ अपनी दिशा भटक जा रही हैं,
1: हम्म,
0: नंबर 1। नंबर 2 क्या है, जंगल के जंगल कट गए हैं,
1: जी
0: ठीक है। नंबर 3, लोगों ने खेती करना बंद कर दी
1: बंद
0: है,
1: कर दिया है।
0: तो खेती करना बंद कर दिया तो पोलन हो नहीं रहे, तो उसकी वजह से भी मधुमक्खियों की संख्या कम हो रही है। चौथा कारण है, लोगों ने गाय भैंस पालने बंद कर दिए हैं। पहले से लोग गाय भैंस पालते थे, तो उसके लिए जंगल से पिरूल लाते थे,
1: हाँ
0: अब वो पिरूल लाना इन लोगों ने बंद कर दिए हैं। तो गर्मी में जब आग लग जा रही है, पूरे जंगल के जंगल जल जा रहे हैं,
1: जल जा
0: जिससे
1: रहे
0: पूरा पोलन खत्म हो जा रहा है, और जो जंगलों में जो मधुमक्खियाँ जहाँ पर भी हैं वो भी सब जल के नष्ट हो जा रही
1: नष्ट हो
0: हैं।
1: जा रही हैं, बिल्कुल सही कह रहे
0: तो
1: हैं
0: ये
1: आप
0: 4 कारण बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी वजह से मधुमक्खियाँ बहुत कम हो गई। एक
1: जी।
0: छोटी मोहन होती है, डाबर जिसको बोलते हैं, वो झाड़ियों में लगाती है छत्ते, उसकी पैदावार इतनी कम हो गई है क्योंकि जब जंगल में आग लगती है वो पूरा छत्ते ही जल
1: नष्ट
0: जा
1: हो
0: रहे होते
1: जाता
0: हैं।
1: है जी, ठीक
0: तो
1: कह
0: ये
1: रहे हैं आप,
0: कारण है सर।
1: सही बात कह रहे हैं फरतियाज जी। फरतियाज जी, हमें मोनो को आहार क्या देना चाहिए?
0: देखिए, मोहनों को आहार देने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, मधुमक्खियाँ अपने लिए आहार खुद ही ले आती हैं, बट जब अगर आप उनका शहद अगर आप निकाल देंगे, जैसे मई जून में हम शहद निकाल देते हैं, पूरा शहद निकाल देंगे, तो उनमें जब बरसात के मौसम में उनको भी चीनी का घोल आपको देना पड़ेगा।
1: चीनी का गोल,
0: हाँ, वो भी तब देना पड़ेगा जैसे बरसात के मौसम में कंटिन्यू 3-4 दिन या हफ्ते भर बरसात रह गई, तो उस पोजिशन में मधुमक्खियाँ बाहर नहीं जा पाती, ठीक है, पोलन नहीं ला पाएंगे, क्योंकि बाहर जाएंगे तो बरसात में भीग के मर जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में हमें मधुमक्खियों को चीनी का सिरप, जैसे हम ये जलेबी के लिए चीनी को उबाल के गर्म करते हैं ना, वैसे
1: जी
0: सिरप
1: जी
0: बनाना है
1: जी
0: पतला
1: जी जी
0: पतला,
1: जी
0: जब वो ठंडा हो जाए तो उसको आपको फीडर में देना है।
1: जी अब आप हमारे जो और मधुमक्खी पालक हैं या जो मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं सभी श्रोताओं से ये कहना चाहता हूँ, मधुमक्खी पालन आप छोटे व्यवसाय से शुरू कर सकते हैं, 1 या 2 बॉक्स आपको शुरू करना है, उसके लिए आपको पहले इसमें प्रैक्टिकली ज्ञान होना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक ये बहुत अच्छा व्यवसाय है, जिसमें आपका खर्चा कुछ नहीं है, आपको कुछ ऐसा टाइम नहीं देना है, जैसे हमने गाय भैंस पाल ली उसके लिए घास लानी है, या उसके ग्वाला जाना है, उसके कमरे की सफाई करनी है, यहाँ ही मधुमक्खियाँ खुद ही अपने लिए खाना लाने वाली हैं, सब कुछ लाने हैं, बट आपको प्रैक्टिकली ज्ञान होना चाहिए। बस धीरे
1: जी
0: धीरे 1-2 बॉक्स करके इसको शुरू कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त अगर आप मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देना चाहते हैं, इसको बड़े लेवल पर करना चाहते हैं, उसके लिए आपको जिन पेड़ों में पोलन होता है, जैसे तून हो गया, बांज हो गया, सदाबहार हो गया, बोटल ग्रास हो गया, अमरूद हो गया, नीम, कई ऐसे पेड़ हैं, उन पेड़ों को भी लगाना पड़ेगा या फसल बोनी पड़ेगी, जैसे आपको दैना, राई हाई, ये कई चीज़, धनिया,
1: हम्म,
0: ये, क्योंकि उसमें आपको डबल फायदा है, ठीक है, आप मधुमक्खी से शहद तो कलेक्ट आपका कर ही रहे हैं, आपकी फसल भी डबल हो रही है।
1: जी
0: तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखेंगे और प्रैक्टिकली ज्ञान रखेंगे तो आप एक अच्छा व्यवसाय मधुमक्खी का कर सकते हैं।
1: बहुत बढ़िया जानकारी आपने हमें दी फरतियाल जी। तो फरतियाल जी, आप हमारे आकाशवाणी अल्मोड़ा के स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, री परियोजना लाभार्थी नारायण सिंह फरतियाल दगे अल्लाह पुलियो भेंटवार्ता सुनी, विषय ची मौन पालन कर कैसे लाभ कमाए। जना दगे भेंट करने लग रहा ची हमार दगड़ी प्रमोद कुमार पांडे जी, तो यह वार्ता आप लोग ने जरूर काम आल, जो लोग मौन पालन विषय में सोचने लग रही, जो लोग अपू व्यापार में नई नई काम करना चाहनी, दगड़ में खेत बाड़ करना चाहनी, उन्होंने जी यह वार्ता बहुत सार्थक सिद्ध हो यह सम्मान। और अब सुनो यह जरूरी संदेश।

0: उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: श्रोताओं, आज हम लोग प्रकृति सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंजुग जयंती लय मनो लग रहा। सुमित्रानंदन पंजुग जन्म आज एक दिन यानी कि 20 मई 1900 हो। यह हिंदी साहित्य में छायावादिक युवक एक बहुत ठुल नाम छी।

यन को प्रकृतिक सुकुमार कविलय कही जाए। सुमित्रानंदन पंतक अगर हम जन्म की बात करूँ जस किताबन में लिख रहो यह नरजन्म कौसानी नामक जाग में हो जो एल बागेश्वर जिले में छू 19 और जन्मक बाद यनर जो देहांत है पड़ो वेग बाद यनर लालन पालन यनर अमल करो और यो नंचना बटी प्रकृति प्रेमी छी यो पढ़ने लिखने में होशियार छी यनूल अलमण बटी शिक्षा ले यह एक बात यो अपू दद दगे काशीपुर नगर काशी नगर वहाँ यनूल क्वींस कॉलेज बटी पढ़ाई करी। यह एक बात जो लगातार पढ़ते रही और आज़ादी आंदोलन में यनूल योगदान दे 1921 असहयोग आंदोलन में गांधी जी दगड़ यनूल आंदोलन प्रतिभाग करो और महाविद्यालय पढ़ाई छोड़ दे। यनूल संस्कृत बंगला हिंदी में लिखो लिखो दगड़ में अंग्रेजी भाषा साहित्य के लिए अध्ययन करो। इलाहाबाद में यह लगातार अपन रचना धर्म में लग रही और कई बार यह आर्थिक संकट मिले डूब रही भी बाद यनूल लगातार अपन जो रचना कर्म छी को लगातार यो करते रही और यनर लिखी गई कविता यनर लिखी साहित्य आज पूर्व दुनिया में पढ़ जानो। यनर साहित्य में प्रकृति के तो सुंदर चित्रण छू कि हर कोई जो ल प्रकृति तक प्रेम करूँ वो यनर कवितान को पढ़ भेर प्रफुल्लित हो जाँ यन को यनर काव्य कर्मक ले जी पुरस्कृत ले करेगा। यन को 1961 में पद्मभूषण मिला 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्यिक अकादमी उले यन को दिएगा और स्विट्जरलैंड नेहरू पुरस्कार लाए यन को दिएगा। यनूल लगभग 28 किताब नक रचना करी जमे हैं ग्रंथी गुंजन ग्राम्या युगांतर स्वर्ण किरण स्वर्ण धूली कला बूढ़ा चांद चितंबरा सत्यकाम आदि प्रमुख छुन। यो हमार उत्तराखंडक एक ठुल पछाण छी जनूल याक साहित्य को पूर दुनी में पछाण दिलाए। यो प्रकृतिक सुकुमार कवि कई जानी यनूल बहुत से गीत ले लिखी यनर पहाड़ दग रिश्त आजीवन बढ़ रहो यनर लिखी गई गीत ले बहुत लोगों ने गाई और कार्यक्रम में अखिल के हम आपको यनरा लिखी एक गीत सुन यो गीत गायक कलाकार छन शंकर उप्रेती जी। तो आओ सुनो सुमित्रानंदन पंजूक लिखी यो सुंदर गीत।

श्रोताओं, अन्नपूर्ण यो सुंदर गीत सुनो। जिसमें पहली बता ये एक रचनाकार सुमितानंदन पंजू छी, जो हमर उत्तराखंडक पछाण छी, हमर उत्तराखंडक शान छी। और अगर बात करूँ हिंदी साहित्यक एक बहुत ठुल सेवी छी। उन्होंने यह बहुत सेवा करी और छायावादी जो कवि युग छी वी क्यों एक मजबूत हस्ताक्षर छी। यनर लिखी गई कविता हम लोग अपू स्कूलन में पढ़नों और कॉलेज में यह एक अध्ययन कराई जहाँ बहुत से लोग यनर साहित्य में PhD करने लग रही। यस यो ठुल साहित्यकार छी। बात अगल के लिए करना रूल, पहली सुनू यो जरूरी संदेश।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इको सिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
0: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: तो श्रोताओं, जस आज हम बात करिए हमारे प्राकृतिक सुकुमार कवि सुमितानंदन पंत जी बारे में। ओ प्रकृति प्रेम मिला थी और जो अपन आसपास का वातावरण थी प्रेम करो, जरूरी नहीं है कि हर कोई कविता लिख सकूं। यो कुछ लोग होने जो अपो भावन का कविता माध्यम लिख वेर पूरे दुनिया को वील रूबरू करोनी। और हम अधिकांश लोग जब वो कविता को सुनो तो हमको लगना बिल्कुल यानो ठीक लिख रहा हो, यानो हमारे मन

बात करें, और आज हम प्रकृति का बात करना हाँ, हमर लिए जी पानी बहुत जरूरी छू। अगर हमर पास पानी नहीं होलो, जो हमारे जो सुंदर प्रकृति छू यो ले नहीं बचेली, तो हम लोगों का जलक संरक्षण करने के लिए जी हमेशा प्रयासरत रहना चाहें। हम लोगों को पानी बेफजूल खर्च नहीं करना चाहें। जो कई जगह की जल ही जीवन है, तो वे बात को हमको मनन करना चाहें, वो बात को मानन चाहें। और हम आजकल देखने लग रहे हैं हमारे आस पास जगहों में, जो नगरी क्षेत्र में रहनी उन्हें देखने लग रहा है कि लगातार धुँ देखे जाना हो जगहों में आग लगना हो, और जो हमारे ग्रामीण अंचल के लोग छुन वो लोग यह विचार होने लग रही है। लेकिन उनका आस पास अगर जगह जग नहीं, तो वीक सबसे ज़्यादा दुष्परिणाम वी लोग भोगने लग रही। लगातार वीक धूप जो दुष्परिणाम छू वीक ले वो चाहे अनचाहे नुकसान झेल नहीं। और यह जो सांसक रोगी छुन, जो बुढ़खुण छुन, हमारे गोपन जो बुजुर्ग आदमी छुन, उन लोगों के लिए बहुत दिक्कत होने लग रहा है। तो कुण मतलब यह छू कि हम लोगों को आपको आस पास जगहों रक्षा करना चाहें। अगर हम आपको आस पास जगहों रक्षा करूँ, तो वील के और हमारे जगहों हरी भरी रोल, और जो हमारे गौनों में हमारे जगहों में जो पानी शीर छिन उल बची रोल। जब शीर बची रोल तो उन्हें पान ले लगातार आल। और अगर हमारे आस पास जगहों इसके जलते रोल वीक नुकसान मुनी मुनी करना उन्हीं वाले टाइम में हम सब लोगों को भोगन पड़ल। आप वो गाँव से आने बात करें और लोग कॉल आप लोगों की पहली फण शीर में या अमकुण नाव में उद्धार में बहुत पानी होची। अब मुनी मुनी करना पानी कम होगो, और यह तक उन्होंने जगहों में पहले खूब चाल खाल होची, वहाँ पानी होची। लेकिन जब बटी लगातार जगहों में आग लगना हो वीक दुष्परिणाम हम सब लोग भोगन लग रहे हैं। तो यह हमारे लोगों की नैतिक जिम्मेदारी छू। अगर हमूल या प्रकृति की रक्षा करण छूँ या हाव पान को साफ शुद्ध धरण छूँ, तो हम लोगों को जो जंगों में आग लगने भी रोकथाम लीजिए प्रयास करना चाहें। और अगर कहीं आप उस लोगों ने जंगों में आग आप लोग भिक्षा लगते हुए अगर संभव हो, तो गांव लोग उनको मिलकर बुझा सकता है। और आप लोगों को लागू या मुश्किल काम छू, तत्काल आप लोग संबंधित विभाग को मतलब फायर ब्रिगेड को फ़ोन कर सकता, वो गांव प्रधान को बता सकता, वो अखिल का वो जानकारी दियल। और आग बुझने के लिए जो हमारे फायर ब्रिगेड कर्मचारी छिन, अग्निशमन विभागक जो हमारे जवान छिन वो लोग आल। तो कभी ना अगर आप लोगों ने आस पास आप लोगों को जगहों में आग दिखी, तो तत्काल वीक सूचना दे चाहें और उनको बुझने भरसक प्रयास करना चाहें। बातचीत अखिल कला करुल एल आपको सुनना गढ़वल गीत, कलाकार छिन नरेंद्र सिंह नेगी जी।

श्रोताओं, जैसे हम लोग आपको देखो कि हम लोग उनका कुछ जगहों रक्षा के लिए हमेशा प्रयासरत होना चाहिए। जब हमारे आस पास जगहों बचल तब हमारे प्रकृति लय ठीक रहल, अगर हमारे आस पास जगह नहीं बचल तो हम लोग उनको वेक खामियाजा भुगतान पड़ल। और यह के लिए हम लोग उनको प्रकृति रक्षा के लिए हमेशा आगे होना चाहिए और यथासंभव है सको प्रकृति बचाव के लिए हम लोगों को पूर्व प्रयास करना चाहिए। जब हम एक पूर्व प्रयास करूँ तब हमारे आसपासक सब चीज़ स्वस्थ रहल, सुरक्षित रहल।

श्रोताओं अगला पुल नरेंद्र सिंह नेगी जीव यो गढ़वाल की सुनाओ। आजकल जैसे हम देखने लग रहा है जैसे यो रूल पढ़ने लग रहा है जैसे गर्मी आजकल होने है तो हर कोई यह कामना कर रहा हूँ कि मुणि द्योक रूम झुमाट है जैसी मुणि बरखा पान है जैसी तो जो मौसम जो तपिश छू वो कम है जैसी जैसे मुला है जंगू ने आगे बात करी तो द्यो कारण वो आग ले निम जाची और अगर जंगों में नमी हो ची तो आग हमार आसपास जंगों में कम लग ची तो प्रकृति में हर चीज़ चाहें द्योपाण ना चाहें गाम ना चाहें सब चीज़ों बराबर सामंजस्य चाहें। और यह ना बात दगा हमार आज उत्तरायण कार्यक्रम इलाका संपन्न हों भूलूँ आप लोग दगा फिर भेंट हल उमल रोजा कचारी दुजार बात ची दगड़ में गीत श्रोताओ थोड़ी देर में आपो उत्तराखंड प्रादेशिक समाचार देहरादून केंद्र पट्टी सुनना मुणि प्रतीक्षा करिया।

0: जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से

0: पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी की अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब। हरिद्वार के खड़खड़ी शमशान घाट में राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल ULPGMV-3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। अग्निवीर भर्ती के लिए 1 जून से 12 जून के बीच ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। और प्रदेश में गर्मी का प्रकोप जारी, अगले 24 घंटों के दौरान हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, उधम सिंह नगर और नैनीताल जिलों में कहीं कहीं लू चलने की संभावना। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आशुतोष उनियाल और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी को आज हरिद्वार स्थित खड़खड़ी शमशान घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। सेना और पुलिस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर उन्हें अंतिम सलामी दी। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर सहित प्रदेश के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। मेजर जनरल खंडूड़ी की अंतिम यात्रा में जन सैलाब उमड़ पड़ा और हर वर्ग के लोगों ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय खंडूड़ी ने उत्तराखंड के विकास और जनसेवा में जो योगदान दिया उसे प्रदेश सदैव याद रखेगा। मुख्यमंत्री ने उनके निधन को राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति बताया।
1: मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी जी का जाना हमारे पूरे परिवार के लिए, राज्य के लिए और देश के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है। और उन्होंने सेना के अधिकारी के रूप में देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं दी, अभूतपूर्व योगदान दिया। उसके बाद भारत सरकार में मंत्री के नाते और राज्य में मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने शुचिता, पारदर्शिता और अनुशासन और समय की पाबंदी, ऐसे बहुत सारे अनुकरणीय जो कार्य है अपने समय में किए, वो हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे और उनका जीवन हमेशा हमें प्रेरित करता रहेगा कि हम अनुशासन से, संयम से, नियम से और समय से सभी चीजों को पूरा करें।
0: इससे पहले उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वर्गीय खंडूड़ी के देहरादून आवास पर उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद देहरादून स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण सहित कैबिनेट मंत्रियों, विधायकों, पार्टी पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र कर अंतिम विदाई दी। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGMV-3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि यह देश के रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: ये परीक्षण आंध्र प्रदेश में कुरनूल के पास DRDO की टेस्ट रेंज में एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों तरह से किए गए। इस दौरान मिसाइल प्रणाली को एक एडवांस्ड इंटीग्रेटेड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से संचालित किया गया। इन परीक्षणों से विभिन्न परिस्थितियों में मिसाइल की सटीक मारक क्षमता, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता प्रदर्शित होती है। इस मिसाइल को हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के साथ मिलकर विकसित किया है। पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित ये मिसाइल आत्मनिर्भर भारत पहल की बढ़ती उपयोगिता को दर्शाती है। इससे देश के भीतर रक्षा प्रणाली को और सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिसाइल के सफल विकास परीक्षणों के लिए रक्षा, DRDO, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और

0: उद्योग जगत की सराहना की। उन्होंने इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक रणनीतिक उपलब्धि बताया। देहरादून में रिस्पना पुल के पास स्थित एक अस्पताल में आज आग लगने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि 10 अन्य झुलस गए। सभी घायलों को उपचार के लिए निकटवर्ती अस्पताल में भर्ती किया गया है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और अग्निशमन दल ने राहत और बचाव अभियान चलाया। आग बुझाने के दौरान गैस रिसाव, ऑक्सीजन की कमी और धुएं से 3 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। उनका भी नजदीकी अस्पताल में उपचार चल रहा है। घटना के बाद अस्पताल को बंद कर दिया गया है और सभी मरीजों को अन्य अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है। पुलिस आग लगने के कारणों की जांच कर रही है।
1: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे YouTube चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: भारतीय सेना की ओर से अग्निवीर भर्ती के लिए 1 जून से 12 जून के बीच ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा का आयोजन देश भर के 206 शहरों में 403 परीक्षा केंद्रों में किया जाएगा। सेना भर्ती कार्यालय अल्मोड़ा के ARO कर्नल महेश कुमार ने ये जानकारी देते हुए बताया कि कुमाऊं मंडल के 4 जिलों अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल और उधम सिंह नगर के जिन अभ्यर्थियों ने हल्द्वानी परीक्षा केंद्र का चयन किया है, उनके लिए 5 स्थानों पर परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं।
2: मऊ रीजन के 4 डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल और उधम सिंह नगर के जिन अभ्यर्थियों ने हल्द्वानी परीक्षा केंद्र का चयन किया है अपने रजिस्ट्रेशन में, उन्हें सूचित किया जाता है कि परीक्षा हल्द्वानी के 5 विभिन्न स्थानों पर आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस बार 1 से अधिक श्रेणियों में जिन कैंडिडेट्स ने आवेदन किया है कि परीक्षा एक ही दिन में आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में सुविधा हेतु एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र की लोकेशन का लिंक भी उपलब्ध कराया गया है। साथ ही परीक्षा की तैयारी में सहायता के लिए अभ्यास प्रश्न पत्र, जिनको हम प्रैक्टिस पेपर बोलते हैं, GIA की वेबसाइट के ऊपर उपलब्ध कराए गए हैं। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे इनका उपयोग कर परीक्षा की बेहतर तैयारी करें। सभी अभ्यर्थियों से एक और अनुरोध है कि वो अपना ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे जाके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें, जो कि कलर्ड प्रिंट आउट होना चाहिए। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में किसी भी प्रकार से किसी भी अभ्यर्थी को, इन 4 डिस्ट्रिक्ट के अभ्यर्थियों को कोई परेशानी आती है, तो वो जल्दी से जल्दी ARO अल्मोड़ा ऑफिस में आए और अपने जो भी उनकी समस्या है उसका निदान कराएं।
0: प्रदेश में चारधाम यात्रा सुचारू रूप से जारी है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु धामों के दर्शन कर रहे हैं। वहीं केदारनाथ धाम के दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु हेली सेवाओं के माध्यम से धाम पहुंच रहे हैं। अब तक 23,000 से अधिक श्रद्धालु हेली सेवा के जरिए बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। हेली सेवा के नोडल अधिकारी राहुल चौबे ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी मानकों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है।
3: क्योंकि आप हेलीकॉप्टर देखेंगे कि एक बहुत रीढ़ की हड्डी है केदारनाथ यात्रा में, जिसमें अभी तक 23,000 यात्रियों ने हेलीकॉप्टर के माध्यम से दर्शन किए हैं। 1 मई के बाद से 15 मई तक लगभग मौसम काफी खराब चल रहा था, जिसकी वजह से जो हेलीकॉप्टर सेवाएं थी बहुत सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को या तो पैदल जाना पड़ रहा था या अपने यात्रा को कैंसिल करना पड़ रहा था, और जो कि बहुत ही मतलब जरूरी भी है हेलीकॉप्टर सेवाओं को मौसम के खराब होने पर रोकने, क्योंकि सुरक्षा सर्वोपरि है, सुरक्षित यात्रा ही सरकार का उद्देश्य।
0: प्रदेश में गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, उधम सिंह नगर, नैनीताल जिलों और उत्तरकाशी जिले के समीपवर्ती क्षेत्रों में कहीं कहीं लू चलने की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। मैदानी जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा। ऑनलाइन दवा बिक्री और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के बढ़ते प्रभाव के विरोध में आज राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों के मेडिकल स्टोर संचालकों ने एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल कर प्रदर्शन किया। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट और उत्तराखंड औषधि व्यवसायी महासंघ के आह्वान पर मेडिकल स्टोर संचालकों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर आंदोलन को समर्थन दिया। देहरादून में दवा विक्रेताओं ने कहा कि ई फार्मेसी और क्विक डिलीवरी प्लेटफॉर्म बिना पर्याप्त निगरानी और नियमों के दवाओं की बिक्री कर रहे हैं, जिससे मरीजों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि दवाएं सामान्य उपभोक्ता वस्तु नहीं है, बल्कि सीधे

0: लोगों के स्वास्थ्य और जीवन से जुड़ी होती हैं। ऐसे में इनके वितरण और बिक्री पर सख्त नियंत्रण आवश्यक है। उधर चंपावत जिले के सभी मेडिकल स्टोर आज बंद रहे, हालांकि जिले में जन औषधि केंद्रों के खुलने से लोगों को थोड़ी राहत मिली। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी की अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब। हरिद्वार के खड़खड़ी शमशान घाट में राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल ULP GM V3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। अग्निवीर भर्ती के लिए 1 जून से 12 जून के बीच ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। और प्रदेश में गर्मी का प्रकोप जारी, अगले 24 घंटों के दौरान हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, उधम सिंह नगर और नैनीताल जिलों में कहीं कहीं लू चलने की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। भक्ति संगीत कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर के गाए भजन।

0: श्रद्धा भक्ति संगीत कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के गए भजन। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6:50 होने वाले हैं। अब गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटे गढ़वाली में प्रादेशिक समाचार का दगड़ी मिछौर रुचि रावत। पहली मुख्य समाचार, प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी थे हरिद्वार में पूर्व राजकीय सम्मान का दगड़ी अंतिम विदय दे गया। राज्य सरकार जिला योजना का अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 खुणे सभी जिलों थे विकास कार्यों खुणे 1,018 करोड़ रुपया से बिजा की धनराशि बांटी। पौड़ी गढ़वाल में श्रीनगर क्षेत्र में डूंगरी पंथ रेलवे सुरंगकु SDRF और NDRF का संयुक्त दल निरीक्षण कैरी की सुरक्षा व्यवस्थाओं को हालचाल देखी। और प्रदेश में गर्मी को प्रकोप जारी, मौसम विभाग अगले 24 घंटों का दौरान हरिद्वार देहरादून पौड़ी उधम सिंह नगर और नैनीताल जिलों में कखी कखी लू चलने की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी थे आज हरिद्वार स्थित खड़खड़ी शमशान घाट पर पूरा राजकीय सम्मान का दगड़ी अंतिम विदय दिए गया। सेना और पुलिस का जवान गार्ड ऑफ ऑनर देकी उन्हें अंतिम सलामी दे। ये दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर सहित प्रदेश का कई वरिष्ठ नेता मौजूद छा। मेजर जनरल खंडूड़ी की अंतिम यात्रा में लुखों की बिजा भीड़ वे और हर वर्ग का लुखू नम आंखों से ऊंधे श्रद्धांजलि अर्पित करी। मुख्यमंत्री बोली कि स्वर्गीय खंडूड़ी उत्तराखंड का विकास और जनसेवा में जो योगदान दे वांथे प्रदेश हमेशा याद रख लो।
2: मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी जी का जाना हमारे पूरे परिवार के लिए, राज्य के लिए और देश के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है। और उन्होंने सेना के अधिकारी के रूप में देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं दी, अभूतपूर्व योगदान दिया। उसके बाद भारत सरकार में मंत्री के नाते और राज्य में मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने शुचिता, पारदर्शिता और अनुशासन और समय की पाबंदी, ऐसे बहुत सारे अनुकरणीय जो कार्य हैं अपने समय में किए, वो हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे और उनका जीवन हमेशा हमें प्रेरित करता रहेगा कि हम अनुशासन से, संयम से, नियम से और समय से सभी चीजों को पूरा करें।
1: यहाँ से पहले उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिन स्वर्गीय खंडूड़ी का देहरादून आवास पर उनका पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित करी उन्हें श्रद्धांजलि दे। यहाँ के बाद देहरादून स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण सहित कैबिनेट मंत्रियों, विधायकों, पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं उनका पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कैरी की उन्हें अंतिम विदय दे। प्रदेश सरकार जिला योजना का अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 खुणे राज्य का सभी 13 जिलों का विकास कार्यों खुणे 1,018 करोड़ रुपये से ज्यादा की धनराशि बांटी। यह राशि जिलों की जरूरतों का अनुसार निर्धारित करेगा। आवंटित धनराशि में अनुसूचित जाति उप योजना का अंतर्गत करीब 200 करोड़ 22 लाख रुपया, अनुसूचित जनजाति उप योजना खुणे लगभग 30 करोड़ रुपया और सामान्य मध्य में 787 करोड़ से अधिक रुपया शामिल छिन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिन बोली कि इन धनराशि से जिला योजना का माध्यम से स्थानीय आवश्यकताओं का अनुरूप आधारभूत संरचना, ग्रामीण विकास, पेयजल, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जनोपयोगी योजनाओं थे गति मिलाली। भारतीय सेना की तरफां बटे अग्निवीर भर्ती खुणे 1 जून से 12 जून का बीच ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा आयोजित करे जाली। परीक्षा को आयोजन देश भर का 206 शहरों में 403 परीक्षा केंद्रों में करे जालू। सेना भर्ती कार्यालय अल्मोड़ा का

0: एआरओ कर्नल महेश कुमारन यह जानकारी दीन बताया कि कुमाऊं मंडल का चार जिलों अल्मोड़ा बागेश्वर नैनीताल और उधम सिंह नगर का जो अभ्यर्थियों हल्द्वानी परीक्षा केंद्र को चयन करूं चु उन्होंने 5 स्थानों पर परीक्षा केंद्र निर्धारित करेगी।
1: मऊ रीजन के 4 डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा बागेश्वर नैनीताल और उधम सिंह नगर के जिन अभ्यर्थियों ने हल्द्वानी परीक्षा केंद्र का चयन किया है अपने रजिस्ट्रेशन में उन्हें सूचित किया जाता है कि परीक्षा हल्द्वानी के 5 विभिन्न स्थानों पर आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस बार एक से अधिक श्रेणियों में जिन कैंडिडेट्स ने आवेदन किया है कि परीक्षा एक ही दिन में आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में सुविधा हेतु एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र की लोकेशन का लिंक भी उपलब्ध कराया गया है। साथ ही परीक्षा की तैयारी में सहायता के लिए अभ्यास प्रश्न पत्र जिनको हम प्रैक्टिस पेपर बोलते हैं GIA की वेबसाइट के ऊपर उपलब्ध कराए गए हैं। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे इनका उपयोग कर परीक्षा की बेहतर तैयारी करें। सभी अभ्यर्थियों से एक और अनुरोध है कि वो अपना ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जाके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें जो कि कलर्ड प्रिंटआउट होना चाहिए। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में किसी भी प्रकार से किसी भी अभ्यर्थी को इन 4 डिस्ट्रिक्ट के अभ्यर्थियों को कोई परेशानी आती है तो वो जल्दी से जल्दी ARO अल्मोड़ा ऑफिस में आए और अपने जो भी उनकी समस्या है उसका निदान कराएं।
2: गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जाणो जे। ताजा समाचारों खुड़ी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड थे फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छिन।
0: पौड़ी गढ़वाल में श्रीनगर क्षेत्र का अंतर्गत डूंगरी पंथ रेलवे सुरंग को SDRF और NDRF का संयुक्त दलन विस्तृत निरीक्षण कार्य। ये दौरान सुरंग की सुरक्षा व्यवस्थाओं, प्रवेश व निकासी मार्गों, आपातकालीन बचाव व्यवस्थाओं और संभावित आपदा की स्थिति में राहत और बचाव कार्यों की तैयारियों को आकलन करेगा। एक रिपोर्ट।
3: संयुक्त दलन सुरंगक भीतर जाय की विभिन्न सुरक्षा बिंदुओं को निरीक्षण कैरी और भविष्य में कै भी आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटण खुण आवश्यक रणनीतियों पर चर्चा कैरी। अधिकारियों ने सुरंग में कार्यरत कर्मचारियों तय सुरक्षा मानकों के अनुपालन आपदक बखत झटझटाक प्रतिक्रिया और समन्वित राहत कार्यों तय लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी देनी। निरीक्षण के दौरान रेलवे अधिकारियों ने दल तय सुरंग संरचना, सुरक्षा उपकरणों, निकासी मार्गों और उपलब्ध आपदा प्रबंधन संसाधनों को विस्तृत जानकारी दे। यहाँ के बाद SDRF और NDRF दल ने पूर्व सुरंग क्षेत्र का भ्रमण कैरी की संवेदनशील स्थलों थे चिन्हित करते हुए संभावित जोखिम वाला बिंदुओं को आकलन कैरी की। SDRF निरीक्षक मंजरी नेगी ने बताया कि निरीक्षण का उद्देश्य डूंगरी पथ रेलवे सुरंग सुरक्षा व्यवस्थाओं का मूल्यांकन करण और कै भी आपदा या आपात स्थिति में झटझटाक और सुरक्षित राहत बचाव सुनिश्चित कारण खुण आवश्यक तैयारियों थे मजबूत मूल बोली की SDRF और NDRF द्वारा समय समय पर इन संवेदनशील स्थलों को निरीक्षण कैरी की सुरक्षा तंत्र थे और अधिक प्रभावी बने जान। आकाशवाणी देहरादून खुण समाचार कक्ष बटे दीपक सिंह रावत।
0: देहरादून में रिस्पना पुल का सामने स्थित एक अस्पताल में आज आग लगन से एक महिला की मौत होगी जबकि 10 अन्य झुलसीगिन सभ्य घायलों था उपचार खुणा नजदीकी अस्पताल में भर्ती करेगा। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और अग्निशमन दलन राहत और बचाव अभियान चले। आग बुझाना का दौरान गैस रिसाव, ऑक्सीजन की कमी और धुआं से 3 पुलिसकर्मी भी घायल वेगिन उनको भी नजदीकी अस्पताल में उपचार चलूण। घटना का बाद अस्पताल थे बंद कर दे गया और सभ्य मरीजों थे दूसरा अस्पतालों में भेजे गया। पुलिस आग लगना का कारणों की जाँच करूनी च। प्रदेश में गर्मी को असर लगातार बढ़ो जो मौसम विभाग अगले 24 घंटों का दौरान हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, उधम सिंह नगर, नैनीताल और उत्तरकाशी जिलों का आसपास का सभी जगहों में कखी कखी लू चलने की संभावना जताए। विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ो को अनुमान च। मैदानी जिलों में मौसम मुख्य रूप से रुख बढ़ू रालू। मौसम विभाग लुखुन थे दोपहर में तरतोड़ू घाम से बचण और पर्वतीय क्षेत्रों में खराब मौसम का दौरान सतर्क रहने की सलाह दे। अवैध और अनियंत्रित ऑनलाइन दवे बिक्री का विरोध में आज राजधानी देहरादून सहित प्रदेश का विभिन्न जिलों का मेडिकल स्टोर संचालकों एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल को प्रदर्शनकारी। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट और उत्तराखंड औषधि व्यवसायी महासंघ का अनुरोध पर मेडिकल स्टोर संचालकों अपना प्रतिष्ठान बंद रखिना। देहरादून में दवा विक्रेताओं बोली कि ई फार्मेसी और क्विक डिलीवरी प्लेटफॉर्म बिना पर्याप्त निगरानी और नियमों का दवाइयों की बिक्री करना छिन्न जैसे

0: मरीजों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठना चिन्ह। उन्हें चंपावत जिला का सभी मेडिकल स्टोर आज बंद रहनी। हालांकि जिला में जन औषधि केंद्रों को खुलन से मरीजों तय जरसी राहत मिली। आखिर मामू के समाचार एकदम फिर। प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद खंडूड़ी तय हरिद्वार में पूर्व राजकीय सम्मान का दगड़ी अंतिम विदय दिए गया। राज्य सरकार जिला योजना का अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 खुणे सभी जिलों को विकास कार्यों खुणे 1,018 करोड़ रुपये से भी जांकी धनराशि बांटी। पौड़ी गढ़वाल में श्रीनगर क्षेत्र में डूंगरी पंथ रेलवे सुरंग को SDRF और NDRF का संयुक्त दल निरीक्षण कैरी की सुरक्षा व्यवस्थाओं को हालचाल देखी। और प्रदेश में गर्मी को प्रकोप जारी। मौसम विभाग अगले 24 घंटों का दौरान हरिद्वार देहरादून पौड़ी उधम सिंह नगर और नैनीताल जिलों में कखी कखी लू चलने की संभावना जताए। यहाँ के दगड़ी गढ़वाली में प्रादेशिक समाचार को यू अंक समाप्त हूँ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अब ग्रामीण श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम ग्राम जगत।

कार्यक्रम ग्राम जगत सुनेर सभ्य श्रोता दगड़ियों का मी आपू दगड़ी प्रेमक नमस्कार। श्रोताओं, बुआई वे पहली बीजों के रासायनिक या जैविक दवाओं में उपचारित करण प्रक्रिया के बीज शोधन कही जा। यह विधि अंकुरण के बेहतर बनू और पौधों शुरुआती रोगों जस उकठा झुलसा और जड़ सड़न बटी बचे भेर पैदावार में भारी बढ़ोतरी करूं। रोगों में बचाव के लिए यह बीज और माट जनित बीमारियों जस कवक और फभूत के पनपण बटी रोकूं। बेहतर अंकुरण के लिए बीजों अंकुरण क्षमता बढ़ूं और फसलक वृद्धि ले मजबूत हूं। कीट नियंत्रण में शुरुआती अवस्था में ही दीपक और अन्य रस चूसणी वाले कीड़ों की सुरक्षा मिलूं। कम लागत में मजबूत पौध हुणक वजल कीटनाशकों खर्च ले इमें कम हूँ। इमें फूदनाशक कीटनाशक का प्रयोग करी जा। सबसे पहली फूदनाशक बटी, फिर कीटनाशक बटी और अंत में जैविक कल्चर बीजों का उपचार करण से। जैविक खेत करने वाले किसान देश गोरु गोबर गौमूत्र चून और माटबटी बनी बीजामृत का प्रयोग करनी। यह के अलावा नीमक तेल या गोमूत्र बटी बीजों के उपचारित करी जा। गर्मियों में रत्ता बटी बखत बीजों के कुछ घंटों के लिए तेज धूप में धरण बटी हानिकारक फंगस और रोग खत्म हो जानी। दवाई मिलने के बाद बीज का हमेशा शो में ही सुकून से कब भले इनका सिद्ध घाम में नहीं सुकून चैन। यदि गुड़ और पानी घोल बड़े फिर दवाई मिलाना लग रही तो बीज पर दवाई की एक समान परत चढ़ जा और बची हुई शोधित बीजों का कब भले पशुओं का नहीं खिलौन चैन। शोधित बीजों बुआई कर किसान ज़्यादा लाभ कमा सकनी। यह विधि के अपनौन बटी एक तरफ जहाँ फसलों में लगने वाले रोगों पर नियंत्रण हो सकूँ, वहीं दूसरी तरफ किसान ज़्यादा पैदावार प्राप्त कर सकनी। यह तकनीकी बटी खेत करण के लिए सरकार किसानों का प्रोत्साहित करण एक फरमान ले दे रखो। दगड़ा ही प्रचार प्रसार के लिए कृषि विभाग का दिशा निर्देश ले दे रखी। पैदावार बढ़ोण प्रति सरकार गंभीर छू। कृषि विभाग शोधित बीजों पर

करणगली जी किसानों के जागरूक करण काम करण लागरी। रवि मौसम में गेहूं फसल में अनावरत कंठुआ करनाल बंट जो बटी आवरत कंठुआ पातू धारीदार रोग पातू में धब्बेदार रोग राई और सरसों में झुलसा रोग सफ़ेद गेरुई तुलाशिता रोग चाण मटर मसूर में उखटा रोग आलू में झुलसा रोग ब्राउन राट ब्लैक गन्ना में लाल सड़न कंठुआ रोग और सागपात में जड़ तना सड़न उखटा रोग लागण संभावना रू एक उत्पादन पर कुप्रभाव पड़ूँ और ठाड़ फसल पर उपचार कार्य खर्चीला हूँ। बीज और जमीन जनित रोगों बटी बचावक लीजिए बुआई बटी पहली बीजों के रासायनिक या जैविक फबूदनाशकों द्वारा उपचार अत्यंत लाभदायी सुविधाजनक और कम खर्चीला हूँ। यह फसलों उत्पादन भल हूँ और दगड़ दगड़ बीज शोधित बीजों जमाव पौधों बढ़त भल हूँ और कछुआ जस विशिष्ट रोगों और नियंत्रित बीज शोधनक संभव हूँ। तो यह लीजिए बुआई बट को पहली बीजों के जैविक दवाइयों बटी उपचारित करणक एक जो प्रक्रिया छू जो बीज शोधन जगह कही जा तो यह आप भरपूर फैल जाला और निश्चित तौर पर यह अपने फिर अपन खेत पैत में एक आर्थिक तौर पर बढ़त हर सके। कार्यक्रम अगिल आपको सुनानु यो लोकगीत गोपाल बाबू गोस्वामी स्वर में।

0: श्रोताओं को सुनने लग रहा अच्छा गोपाल बाबू गोस्वामी के स्वर में यो कुमाऊनी लोकगीत कार्यक्रम में अगिल आपको सुनने लग रहा क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलमड़ सचिव श्रीमती अनामिका सिंह दगड़ समाधान समारोह 2026 पर प्रेम आर्या की ओर क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता। समाधान समारोह 2026 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शुरू करी गई एक राष्ट्रीय पहल है जो 21 अप्रैल 2026 से शुरू होकर 21 से 23 अगस्त 2026 तक विशेष लोक अदालतों के माध्यम से लंबित मामलों को सुलह से निपटाने के लिए आयोजित की जा रही है। आज हमारे साथ अल्मोड़ा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव श्रीमती अनामिका सिंह जी हैं। सबसे पहले कार्यक्रम में आपका स्वागत।
1: धन्यवाद
0: जी। मैम आज हम समाधान समारोह 2026 पर बात करेंगे। सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप बताएं कि समाधान समारोह 2026 क्या है।
1: समाधान समारोह 2026 माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा शुरू किया गया है। न्याय को घर घर तक सरल एवं सुलभ बनाने तथा सहमति से न्याय की भावना को मूर्त रूप देने के उद्देश्य से भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समाधान समारोह 2026 का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 21 अप्रैल 2026 से प्रारंभ हो चुका है तथा इसका समापन 21, 22 व 23 अगस्त 2026 को विशेष लोक अदालत के साथ आयोजन के साथ होगा।
0: जी मैम, हमारा अगला सवाल आपसे ये है कि जैसे जो समाधान समारोह 2026 है इसके क्या क्या उद्देश्य हैं, जरा सुनने वाले श्रोताओं को बताएं।
1: इसका जो उद्देश्य है, ऐसे कोई भी मामले जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं और जिनका निष्पादन जो कि आपसी सहमति और सुलह से निष्पादन किया जा सकता है जिन मामलों का, तो ऐसे मामलों को निपटाया जाना ही समाधान समारोह 2026 का उद्देश्य है।
0: जी मैम, विशेष लोक अदालत कहाँ आयोजित होती हैं?
1: यह जो स्पेशल लोक अदालत है, ये जो एक तरह से समाधान समारोह 2026 है, इसका आयोजन माननीय सर्वोच्च न्यायालय परिसर में किया जाएगा।
0: जी मैम, किन किन मामलों में शामिल किया जाएगा, इन किन किन मामलों को?
1: नहीं, जैसे कि जो भी ऐसे मामले जो आपसी सहमति से निष्पादन योग्य हैं उन्हें शामिल किया जाएगा। जैसे पर्टिकुलर ऐसे कोई भी मामले जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित हैं, इसमें पारिवारिक विवाद, दुर्घटना दावा, चेक बाउंस, भूमि अधिग्रहण, आपराधिक सुलहनीय मामले, श्रम संबंधी विवाद तथा ऐसे अन्य मामले जिसमें कि आपसी सहमति से निष्पादन किया जा सकता है।
0: मैम, किसी मामले को विशेष लोक अदालत में कैसे शामिल किया जा सकता है?
1: इसके लिए एक माननीय उच्चतम न्यायालय से एक गूगल फॉर्म उपलब्ध कराया गया है और जिसे आवेदन किया जा सकता है, जिसे फिल करना होगा और इसको भरना भी बहुत सरल है।
0: जी मैम, ये गूगल फॉर्म में कहाँ उपलब्ध हो सकते हैं?
1: यह आवेदन फॉर्म है, ये माननीय उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट है, तो उस पर उपलब्ध है www.sci.gov.in। इस पर ये उपलब्ध हो जाएगा गूगल फॉर्म।
0: किसी भी पक्षकार का मामले का निष्पादन उसकी सहमति से हो सकता है?
1: जी हाँ बिल्कुल, दोनों पक्षों की सहमति से ही मामले का निष्पादन होगा। अगर दोनों पक्ष एग्री हैं तभी निष्पादन होगा। अगर ऐसा कोई भी पक्ष है जो अगर एक पार्टी समझौता करना नहीं चाह रही है तो उसे किसी भी प्रकार से बाध्य नहीं किया जाएगा। इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव को नोडल अधिकारी बनाया गया है, तो उसी की देखरेख में सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए ऐसे मामलों का निष्पादन किया जाएगा।
0: क्या सुलह के प्रयास हेतु बैठकें आयोजित की जा सकती हैं?
1: हाँ बिल्कुल, जैसे कि आम लोक अदालत में पहले सुलह का प्रयास करने से पहले प्री मीटिंग्स आयोजित की जाती है, इसी प्रकार से इन लोक अदालत के लिए भी प्री मीटिंग्स आयोजित की जाएगी। इनफैक्ट अगर पार्टीज रेडी हैं तो उनको वीसी लिंक भी प्रोवाइड किया जा सकता है और अगर वो फिजिकली रूप से आना चाहती हैं तो तब भी वह आ सकती हैं। तो इसके लिए अगर पार्टीज रेडी होगी तो हम प्री मीटिंग्स को डेट फिक्स कर देंगे, तो एक तरह से बैठकें आयोजित की ही जाएंगी।
0: जी मैम, ये सुलह बैठकें कहाँ आयोजित होंगी?
1: अगर हम बात करते हैं जिला स्तर की तो ये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में की जाएंगी, और अगर राज्य स्तर की बात करते हैं तो माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तालुका में, जो तालुका स्तर पर अगर बात करते हैं तो TLSCC के स्तर पर तथा उच्च न्यायालय स्तर पर माननीय सालसा के विधिक सेवा प्राधिकरण के मध्यस्थता केंद्र में किया जाएगा।
0: जी मैम, सुलह के प्रयास में मदद कौन कौन करेगा?
1: इसमें जितने भी हमारे ट्रेन मीडिएटर्स हैं और जितने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी हैं, जैसे TLSC सेक्रेटरीज हो इसमें जिला लेवल पे, तो इस प्रयास में मदद करेंगे हम लोग। जैसे बीइंग आ DLSC सेक्रेटरी, तो हम लोग इसमें एक मीटिंग भी कॉल कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं नंबर्स को, सभी जितने भी अपने पैनल लॉयर्स हैं, पीएलवीज हैं और एलएडीसीज के जो जितने भी ऑफिशियल्स हैं, उनसे हम लोगों ने फॉर्म उनको दिखाया गया है। उनके माध्यम से हम कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी प्रकार से जो पार्टीज दे रखी हैं तो उनके नंबर्स एंड एड्रेस वेरीफाई हो जाएं, ताकि हम लोगों को उन पार्टीज़ को नोटिस भिजवाने में थोड़ा इजीली हम उनको कन्वे कर सकें। और तो इसमें हमारे सभी प्रकार के लोग मदद कर रहे हैं।
0: जी मैम, क्या इन बैठकों में व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य है?
1: जैसे कि अवगत कराया जा चुका है कि माननीय उच्चतम न्यायालय में ही मामले लंबित हैं, तो अगर पक्षकार इट मे भी पॉसिबल कि पक्षकार अल्मोड़ा में नहीं हो, ना हो वर्तमान में, तो अगर उनको नोटिस पहुंचा दिया जाता है और अगर वे इच्छुक हैं तो वे वर्चुअल मोड से भी इसमें भाग ले सकते हैं। और जो पार्टी अगर फिजिकल रूप से आना चाहती है तो वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आके अपना फिजिकल भी अपनी मीटिंग कर सकती है।
0: लोक अदालत पूर्व सुलह चर्चा के दौरान क्या होगा?
1: इसमें पूर्व सुलह चर्चा जैसे प्री मीटिंग्स होती हैं, जैसे जनरली लोक अदालत होती है, नेशनल लोक अदालत होती है, उसमें हम सभी लोग बैठ के आपसी सहमति बनाते हैं, वार्ता करते हैं, तो उसके बीच में एक समाधान तलाशने का प्रयास किया जाता है। तो इसी प्रकार से इस लोक अदालत में भी, जो विशेष लोक अदालत है, इसमें भी हम यही प्रोसीजर ऑप्ट किया जाएगा। आपसी सहमति होगी पक्षकारों की, उनसे वार्ता होगी और समाधान तलाशने का भी प्रयास किया जाएगा।
0: जी मैम, इसमें कौन कौन भाग ले सकते हैं?
1: इसमें बेसिकली मामले के पक्षकार भाग ले सकते हैं, उनके जो लर्निड एडवोकेट्स हैं वो भाग ले सकते हैं।
0: जी मैम, सहायता या जानकारी के लिए किसके पास जा सकते हैं, कहाँ वो संपर्क कर सकते हैं?
1: अगर जिला स्तर की बात की जाए तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हमारे कार्यालय का नंबर भी हमने पंपलेट्स बंटवाए हुए हैं और इसमें जो भी एडवर्टाइजमेंट कराया हुआ है, तो उसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा में संपर्क किया जा सकता है। इसके लिए अगर हम बात करें तो ताकि जागरूकता कार्यक्रम भी किया जा रहा है हमारे पीएलवीज के द्वारा लोकल स्तर पर, और उसके अलावा हमने जितने भी कॉन्स्पेशियस प्लेसेस हैं वहाँ पर अपने ये जो पेम्पलेट्स हैं वो बंटवाए जा रहे हैं, और कॉन्स्पेशियस प्लेसेस पे हमने बैनर भी चस्पा किए हैं।
0: निश्चित तौर पर मैम, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा द्वारा समय समय पर शिविर लगाकर या अन्य माध्यमों से, लोक अदालत के माध्यमों से लोगों को एक मदद देने का काम किया जा रहा है। क्या सलाह देंगे सुनने वाले श्रोताओं को आप?
1: सुनने वाले श्रोताओं को ये सलाह देंगे कि क्योंकि अगर इस आयोजन की बात की जाए तो बेसिकली ये आयोजन माननीय उच्चतम न्यायालय 2026 के द्वारा किया जा रहा है, तो इसमें हमारे अल्मोड़ा जनपद के अगर हम देखते तो टोटल 7 मामले हैं। तो आप लोगों से यही अपील है कि अगर आप लोग इसमें हमारा प्रयास कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, इन लोगों के अगर हमें नंबर और इनका जो भी एड्रेस अगर है तो वो आप अगर हमें दिलाएंगे तो हो सकता है मे बी कि कुछ केसेस हमारे निपट जाएं।
0: निश्चित ही मैम, हमारे सुनने वाले श्रोता इस जानकारी से लाभ लेंगे और राष्ट्रीय लोक अदालतों में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करेंगे और अपने सुलह समझौतों को आसानी से निपटा सकेंगे। आपने हमसे बात करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोता अपशुण नागलाच्या भेटवार्ता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलमाळ सचिव श्रीमती अनामिका सिंह दगड़ समाधान समारोह 2026 पर प्रेम आर्या क्षेत्र संकलित भेटवार्ता कार्यक्रम अगिल अपकर्षण लागरिया लोकगीत।

श्रोताओं आप सुन लग रहा है कुमाऊनी लोकगीत नैनीनाथ रावलक स्वर में कार्यक्रम में अगला आप जाने जाने आपको सुनान लग रहा पहलाज सिंह मेहराग स्वर में यो लोकगीत।

श्रोता अपसरण नागराचार्य प्रहलाद सिंह मेहराग स्वरमय लोकगीत और यही लोकगीतक दगा आजक ग्राम जगत कार्यक्रम हमारे लगे संपन्न हो। आप दगा बहु एक नई अंक में फिर भेट होल में के आज्ञा दियो। नमस्कार।

अभी ग्रामीण श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्राम जगत। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 7:30 होने वाले हैं। आपको मऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: आकाशवाणी देहरादून बटे कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार नौकदगढ़ में ममता पांडे। पहली मुख्य समाचार। प्रदेशक पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी के हरिद्वार में पूर्व राजकीय सम्मानक दगड़ अंतिम विदाई दी गये। राज्य सरकार जिला योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 तक लीजिए सभी जिलों के विकास का मौक लीजिए 1,018 करोड़ रुपये है ज्यादा धनराशि आवंटित करी। पौड़ी गढ़वाल में श्रीनगर क्षेत्र में डूंगरी पंथ रेलवे सुरंगक SDRF और NDRF संयुक्त दलल निरीक्षण कर बे सुरक्षा व्यवस्थाओं का हालचाल ले। और प्रदेश में गर्मी का प्रकोप जारी, मौसम विभाग अगले 24 घंटे के दौरान हरिद्वार देहरादून पौड़ी उधम सिंह नगर और नैनीताल जिलों में कहीं लू चलने का अंदाज जताए। और अब समाचार विस्तारल। प्रदेशक पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी के आज हरिद्वार स्थित खड़खड़ी शमशान घाट पर पूर्व राजकीय सम्मानक दगड़ अंतिम विदाई दी गये। सेना और पुलिस जवानों गार्ड ऑफ ऑनर दीबेर उनके अंतिम सलामी दे। यो बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टरक दगड़ प्रदेशक कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहीन। मेजर जनरल खंडूरी अंतिम यात्रा में जन सैलाब उमड़ पड़ो और हर वर्ग जानिनल नम आखन ले उनके श्रद्धांजलि अर्पित करी। मुख्यमंत्री को की स्वर्गीय खंडूरील उत्तराखंड विकास और जन सेवा में जो योगदान दिए विके प्रदेश हमेशा याद रखोल।
1: जनरल भुवन चंद खंडूरी जी का जाना हमारे पूरे परिवार के लिए, राज्य के लिए और देश के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है। और उन्होंने सेना के अधिकारी के रूप में देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं दी, अभूतपूर्व योगदान दिया। उसके बाद भारत सरकार में मंत्री के नाते और राज्य में मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने सुचिता, पारदर्शिता और अनुशासन और समय की पाबंदी, ऐसे बहुत सारे अनुकरणीय जो कार्य हैं अपने समय में किए, वो हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे और उनका जीवन हमेशा हमें प्रेरित करता रहेगा कि हम अनुशासन से, संयम से, नियम से और समय से सभी चीजों को पूरा करें।
0: यह पहली उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल स्वर्गीय खंडूरी के आवास पर जाबेर उनर पार्थिव शरीर के फूल चक्र अर्पित कर बेर उनके श्रद्धांजलि दे। यह एक बात देहरादून स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषणक दगड़ कैबिनेट मंत्री, विधायकों, पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं उनर पार्थिव शरीर पर फूल चक्र अर्पित कर बेर अंतिम विदाई दे। प्रदेश सरकार जिला योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 तक लीजिए राज्य सपे 13 जिलों के विकास कामों के लीजिए 1,018 करोड़ रुपये है ज्यादा धनराशि बांटी। यो राशि जिलों जरूरत अनुसार निर्धारित करी गये। आवंटित धनराशि में अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत करीब 200 करोड़ 22 लाख रुपये, अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लीजिए लगभग 30 करोड़ रुपये और सामान्य मद में 787 करोड़ है बाकी रुपये शामिल छन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल को की यो धनराशि जिला योजना के माध्यम स्थानीय जरूरतों के अनुरूप आधारभूत संरचना, ग्रामीण विकास, पेयजल, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य व अन्य जन उपयोगी योजनाओं के सहायता मिलली। भारतीय सेना ओर बठे अग्निवीर भर्ती के लीजिए 1 जून बठे 12 जून के बीच ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा आयोजित करी जाली। परीक्षा आयोजन देश भर 206 शहरों में 403 परीक्षा केंद्रों में करी जाली। सेना भर्ती कार्यालय अल्माड़क ARO कर्नल महेश कुमारल यो जानकारी दी बेर बताई कि कुमाऊं मंडलक 4 जिले अल्माड़, बागशर, नैनीताल और उधम सिंह नगरक जन अभ्यर्थियों हल्द्वानी परीक्षा केंद्र चयन करी छू। उन लीजिए 5 जागो में परीक्षा केंद्र निर्धारित करी गई।
2: मऊ रीजन के 4 डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा, भागेश्वर, नैनीताल और उधम सिंह नगर के जिन अभ्यर्थियों ने हल्द्वानी परीक्षा केंद्र का चयन किया है अपने रजिस्ट्रेशन में, उन्हें सूचित किया जाता है कि परीक्षा हल्द्वानी के 5 विभिन्न स्थानों पर आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस बार 1 से अधिक श्रेणियों में जिन कैंडिडेट्स ने आवेदन किया है कि परीक्षा एक ही दिन में आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में सुविधा हेतु एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र की लोकेशन का लिंक भी उपलब्ध कराया गया है। साथ ही परीक्षा की तैयारी में सहायता के लिए अभ्यास पर

0: प्रश्न पत्र जिनको हम प्रैक्टिस पेपर बोलते हैं जीआईए की वेबसाइट के ऊपर उपलब्ध कराए गए हैं। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे इनका उपयोग कर परीक्षा की बेहतर तैयारी करें। सभी अभ्यर्थियों से एक और अनुरोध है कि वो अपना ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे जाके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें जो कि कलर्ड प्रिंट आउट होना चाहिए। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में किसी भी प्रकार से किसी भी अभ्यर्थी को इन चार डिस्ट्रिक्ट के अभ्यर्थियों को कोई परेशानी आती है तो वो जल्दी से जल्दी एआरओ अल्मोड़ा ऑफिस में आए और अपने जो भी उनकी समस्या है उसका निदान कराएं।
1: कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की यह बुलेटिन आकाशवाणी देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करी जा रहा। ताज़ा समाचारों लीजिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता। यह कदगर न्यूज समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर ले उपलब्ध छी।
2: पौड़ी गढ़वाल में श्रीनगर क्षेत्रक अंतर्गत डूंगरी पंथ रेलवे सुरंगक एसडीआरएफ और एनडीआरएफ का संयुक्त दलल विस्तृत निरीक्षण करो। यो भी सुरंगक सुरक्षा व्यवस्थाओं प्रवेश व निकासी बाट आपातकालीन बचाव व्यवस्थाओं और संभावित आपदा की स्थिति में राहत और बचाव कामों के लिए तैयारियों का आकलन करेगी। सुनो यो रिपोर्ट।
3: संयुक्त दलन सुरंग भितेर जबेर विभिन्न सुरक्षा बिंदुओं का निरीक्षण करो और आणवाल बखतम कसल प्रकारक आपात स्थिति है बे प्रभावी ढंगल निपटणक लीजिए आवश्यक रणनीतियों पर चर्चा करी। अधिकारियों सुरंग में काम करने वाले कर्मचारियों हेत सुरक्षा मानकों का अनुपालन और आपदाक बखत त्वरित प्रतिक्रिया और समन्वित राहत कार्यों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश ले दी। निरीक्षण दौरान रेलवे अधिकारियों दल के सुरंगक संरचना सुरक्षा उपकरणों और निकासी मार्ग और उपलब्ध आपदा प्रबंधन संसाधन विस्तृत जानकारी दी। यह एक बाद एसडीआरएफ और एनडीआरएफ दलल पूर्व सुरंग क्षेत्र भ्रमण करो और संवेदन स्थलों के चिन्हित करते हुए संभावित जोखिम वाले बिंदुओं का आकलन करो। एसडीआरएफ निरीक्षक मंजी नेगिल बता कि निरीक्षण का उद्देश्य डूंगरी पथ रेलवे सुरंग सुरक्षा व्यवस्थाओं का मूल्यांकन करण और कसल आपदा या आपात स्थिति में त्वरित और सुरक्षित राहत बचाव सुनिश्चित करने के लिए जरूरी तैयारियों के मजबूत करण छो। उन्होंने कहा कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ बटी बखत बखत पर यश संवेदन शील स्थलों का निरीक्षण कर बेर सुरक्षा तंत्र को और ज्यादा प्रभावी बनाई जा। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष बटी योगिता बिष्ट।
2: देहरादून में रिस्पना पुलक नजदीक स्थित एक अस्पताल में आज आग लगने एक सैनिक मौत है गई जबकि 10 अन्य झुलसी गई। सपे घायलों के उपचार अगली पासक अस्पताल में भर्ती करी गयो। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और अग्निशमन दलल राहत और बचाव का अभियान चलाए और आग बुझने के दौरान गैस रिसाव ऑक्सीजन कमी और धुंवल तीन पुलिसकर्मी ले घायल है गई। उनर इलाज लिए नजदीक अस्पताल में चलनो। घटना के बाद अस्पताल के बंद कर हलो और सपे मरीजों के दुहर अस्पताल में भेजी गयो। पुलिस आग लगने कारणों की जांच करने। प्रदेश में गर्मी का असर लगातार बढ़ते जानो। मौसम विभाग अगले 24 घंटक दौरान हरिद्वार देहरादून पौड़ी उधम सिंह नगर नैनीताल और उत्तरकाशी जिलक आसपास तक जगहों में कैके लू चलने का अंदाज जताए। विभाग अनुसार अगले 2-3 दिनन में अधिकतम तापमान में 1-3 डिग्री सेल्सियस जाने बढ़ने का अनुमान छू। मैदानी जिलों में मौसम मुख्य रूप रुखी बनी रोल और मौसम विभाग सपे जानिन के दिनक वक्त तेज घामल बचन और पहाड़ी जगहों में मौसम होने कारण सतर्क रूणक सलाह दी। अवैध और अनियंत्रित ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में आज राजधानी देहरादून अग्दगढ़ प्रदेशक विभिन्न जिलों में मेडिकल स्टोर संचालकों एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल कर बेर प्रदर्शन करो। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट और उत्तराखंड औषधि व्यवसाय महासंघ के अनुरोध पर मेडिकल स्टोर संचालकों अपूर्ण दुकान बंद रख बेर आंदोलन के समर्थन दियो। देहरादून में दवा विक्रेताओं को कि ई फार्मेसी और क्विक डिलीवरी प्लेटफॉर्म बिन पूर्ण निगरानी और नियमों दवाई बिक्री करण रही जेल मरीजों की सुरक्षा पर गंभीर सवार थाड़ है गई। वहीं चंपावत जिलक सपे मेडिकल स्टोर आज बंद रही हालांकि जिले में जन औषधि केंद्र खुलनल मरीजों के थोड़ा राहत मिली। और आखिर में मुख्य समाचार एक बार आजी प्रदेशक पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी के हरिद्वार में पूर्व राजकीय सम्मानक दगड़ अंतिम विदाई दी गये। राज्य सरकार जिला योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 अकली जी सपे जिलों के विकास कामों के लिए 1018 करोड़ रुपए है बाकी धनराशि आवंटित करी। पौड़ी गढ़वाल में श्रीनगर क्षेत्र में डूंगरी पंथ रेलवे सुरंगक एसडीआर

0: एफ और एनडीआरएफ संयुक्त दल निरीक्षण कर बे सुरक्षा व्यवस्थाओं का हालचाल ले और प्रदेश में गर्मक प्रकोप जारी। मौसम विभाग अगिल 24 घंटक दौरान हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, उधम सिंह नगर और नैनीताल जिले में कै कै लू चलनक अंदाज जताये। यह कदगढ़ी कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों को यू अंक समाप्त हूँ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत कार्यक्रम। आइए पहले सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को। फिल्म है वासना, गीत लिखा है साहिल लुधियानवी ने और संगीत चित्रगुप्त का है।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: मेरा गांव मेरा देश, आइए अब सुनते हैं इस फिल्म में लता मंगेशकर को। गीत रचना आनंद बख्शी की है और संगीत रचना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की है।

शुद्ध समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, और आइए हम आपको सुनवाते हैं मजरू सुल्तानपुरी का लिखा, आर डी बर्मन का संगीतबद्ध फिल्म चांदी सोना का ये गीत। इस गीत को गाए आशा भोसले और किशोर कुमार ने।

और अब श्रोताओं, कार्यक्रम के समापन में आइए सुनते हैं किशोर कुमार को फिल्म कटी पतंग में। गीत लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत आडी बर्मन का है।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लोकगाथा कार्यक्रम के अंतर्गत आइए सुनते हैं लोकगाथा नल दमयंती का नवा भाग।

पांचों देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। राजा भीमकल जो छो सुदेव नाम ब्राह्मण भेज राखो अयोध्या का देशा। उमें लिख राखो चिट्ठी परवान भेज राखो रे राजा ऋतु प्रणाय। राजा नल को पत ने तो भो सूर्जांत राजो छो दमयंती दुसर स्वयंवर में बरके चुन ले ली। पढ़ल निकेश पति पर

कथ लै रे ध्यान पूर्वक सुनिया आयल तको जो सो तक बार सुनहले दमयंती जरे मैं तुला देश कुंडिन पुर में राजा नल चरो पतले ने तोय घोला दिनी दानी

पुर नाराजा ऋतु पर्णन है गो बाहुक सारथी जोशियो को तब कुनाई रे बाहुका रथ विद्या के जान से घोड़ ने चाल तेज कर रखे तील एक दिन में मकें अब कुंडिनपुर में पूजा दिछे जब घर को मन अगरी कसो न एक दिन में कुंडिनपुर में पूजा दिन से

जोसो है गिलहान है गोसो। तब राजा ऋतु पर्ण गुनाए रे बाहु का मेरी गणित विद्या कले देख ले। तो पेड़ में जो सन 5095 फल सन, तह वे डेढ़ गुण जाधे तह पत्त सन। अगर विश्वास है तो तक गण ले। तब बाहु कल जो सो रत ठाड़ करो, तह दिगार तह सारथी दूसर बार सने जीवल ले छियाय। पेड़ काट भीर भमे खेड़ो फल ले गिणी पत ले गिणी ठीक उत गए निकली। गर्व का मन हो या गरी को सोन हो, तुम्हारी गणित विद्या राजा ऋतुपर्णा बड़ी अनुपम सोई।

वेर खुश है दो रे बाहु का तो गणित विद्या सां सांत मैं पासने विद्या के ले जानसो तब बाहु को ना ही रजाय अगर मैं कहें पासने विद्या शिकायत दिसा खदी वो बोलो बस गयो क्यों लो तब मैं कहें पासने विद्या शिकायत दिसा मैं तुमन के रद विद्या।

दमयंती ले जो सो परवान ले लिख रखो और कह के मालूम ले नेतना। तब महल की छत में भैरेच पति वियोग में बड़ी विकल हरेच, रात दिन हो जो छो पति के वियोग में रे छे दमा तिरब ले लून भोत के बीच में छत में भैबीर रथ को चढ़ा उतराव सबे दिखने घरुआ का मोन या गरी को सोना। ऋतुपर्ण ले दिख्यालो सारथी ले दिख्यालो

मन में सोचने रथ घर घराट रथ की चाल दसो मेरी स्वामी की जैसो इतर लंबी दूर यात्रा के सयोजन दूर यात्रा के एक दिन में तय करनी उन्हें अलावा कोयले निची संसार में नला कुनला गाड़ में दू नो जानी बारसणील उनरी रथ विद्या सिखैले तो निकल सकनी

मन में सोचने आ स्वामी दिगड़ भेट न होली, जलती हुई अग्नि में अपन तन के त्याग कर दियोन। दांगाई भैंसी की खारी सजना पुरुष भला पति वीर तो नारी।

नमस्कार, मैं हूं शक्ति सिंह और स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। हम एक बार फिर मौजूद हैं नए क्लेवर, नए रंग और नए अंदाज के साथ, जहां हमारे साथ है हर मैच का ताजा अपडेट, हर मैदान का हाल और हर खिलाड़ी की पूरी खबर और सब कुछ अधिक डिटेल के साथ। तो शुरू करते हैं खेल की हर बात स्पोर्ट्स कैन के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईपीएल

का स्वागत है। हम एक बार फिर मौजूद हैं नए क्लेवर, नए रंग और नए अंदाज के साथ, जहां हमारे साथ है हर मैच का ताजा अपडेट, हर मैदान का हाल और हर खिलाड़ी की पूरी खबर और सब कुछ अधिक डिटेल के साथ। तो शुरू करते हैं खेल की हर बात स्पोर्ट्स कैन के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। कल राजस्थान रॉयल्स ने जीत दर्ज की। भारतीय टीम ने सेपक टकराव विश्व कप के क्वाड्रेंट में रजत पदक अपने नाम किया। आर्सेनल एफसी ने प्रीमियर लीग फुटबॉल का खिताब जीता। रूपा बायन ने नौवीं एशियाई टाइकंडो पुमसे चैंपियनशिप 2026 में कांस्य पदक अपने नाम किया। और अश्मिता चाहिला, देविका सिहाग और मालविका बंसोड़ मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 500 के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची।

0: आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता के ईडन गार्डन में कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच खेला जा रहा है। ताज़ा समाचार मिलने तक मुंबई ने 8 ओवर में 4 विकेट पर 57 रन बना लिए थे। कोलकाता ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और मुंबई प्लेऑफ की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी है, जबकि कोलकाता प्लेऑफ में जाने के लिए अपने दोनों मैच जीतना भी चाहती है और उसके बाद उसको अन्य कुछ टीमों के परिणामों पे भी काफ़ी हद तक निर्भर रहना पड़ेगा। और इससे पहले कल राजस्थान रॉयल्स ने वैभव सूर्यवंशी की तूफानी पारी की बदौलत लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराकर जीत अपने नाम की। सुनते हैं इस मैच पर एक विस्तृत रिपोर्ट।
1: जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में कल युवा वैभव सूर्यवंशी का बल्ला जमकर गरजा। राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबले में 7 विकेट से जीत दर्ज कर राजस्थान अंक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गई है। इस जीत के साथ आरआर प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बनने की सबसे मजबूत दावेदार बन रही है। मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 220 रन बनाए। मिचेल मार्श ने जॉश इंग्लिस के साथ पहले विकेट के लिए 50 गेंदों में 109 रन की शानदार साझेदारी की। इंग्लिश 29 गेंद में 60 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद मिचेल मार्श थोड़े दुर्भाग्यपूर्ण साबित हुए और सिर्फ 4 रन से शतक से चूक गए। मार्श ने 57 गेंद में 96 रन की पारी खेली। आरआर से यश राज ने 2 और जोफ्रा आर्चर ने 1 विकेट लिया। करो या मरो के मुकाबले में इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स को भी यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों खिलाड़ियों ने 39 गेंदों में 75 रन साझेदारी की। जायसवाल 23 गेंद में 43 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद सूर्यवंशी ने ध्रुव जुरेल के साथ दूसरे विकेट के लिए 45 गेंद में 105 रन जुटाए और टीम की जीत की राह आसान कर दी। सूर्यवंशी ने 38 गेंद पर 10 छक्कों और 7 चौकों की मदद से ताबड़तोड़ 93 रन की पारी खेली। इसके बाद ध्रुव जुरेल ने मोर्चा संभालते हुए 38 गेंद में 53 रन की नाबाद पारी खेलते हुए टीम को जीत दिलाई। लखनऊ की ओर से आकाश महाराज और मोहसिन खान ने 1-1 विकेट लिए। वैभव सूर्यवंशी को उनके शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अब अगर रॉयल्स की टीम 24 मई को मुंबई इंडियंस के खिलाफ जीत दर्ज करती है तो प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी और अंतिम टीम बन जाएगी, जबकि लखनऊ पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है। प्रशांत कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो कहा जा सकता है कि वैभव की इस तूफानी पारी ने प्लेऑफ की दौड़ को और रोमांचक बना दिया। और प्लेऑफ के सभी समीकरणों पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी कमल मौजूद हैं स्टूडियो में। कमल, अब तो इंतजार की इंतहा हो गई है और चौथी टीम अब तक आईपीएल को मिलती नजर नहीं आ रही है, क्या कहते हैं आपके समीकरण?
2: जी शक्ति, बिल्कुल, क्योंकि आईपीएल में जो जद्दोजहद इतने लंबे दिनों तक मैचों की होती है वो प्लेऑफ की ही रेस के लिए होती है, और प्लेऑफ की रेस के लिए हमारे सुनने वाले सभी इस बात को जानते ही हैं कि जो हमारी तीन टीमें हैं वो पहले ही इस प्लेऑफ में अपनी दावेदारी पूरी तरह से मजबूत कर चुकी हैं। लेकिन अब जो प्रतियोगिता है, प्रतिस्पर्धा है, वो है चौथे पायदान के लिए। तो चौथे पायदान में जो मजबूत दावेदार है, जैसा कि अभी हमने इस खास रिपोर्ट में भी प्रशांत जी की सुना कि जो कल का मैच रहा, हालिया जो राजस्थान रॉयल्स की जीत रही और 14 अंक उन्होंने इस जीत के साथ हासिल कर लिए हैं, तो सबसे मजबूत दावेदार तो वही समझी जा रही है। और उसके बाद जो और टीमें बचती हैं, जिसमें पंजाब किंग्स, चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स, ये भी गणितीय रूप से तो अभी दावेदार बनती ही नज़र आ रही हैं, क्योंकि 13 अंक हमारे पास अभी पंजाब किंग्स के हैं और चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के 12-12 अंक हैं। तो देखना होगा शक्ति कि कौन सी टीम दावेदारी करती है, लेकिन हाँ, राजस्थान रॉयल्स की दावेदारी अभी मजबूत।

0: नजर आ रही है। अगर हम ऊपर की टीमों की बात करें, तीन जो टीमें हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, तो उनके 18 अंक हैं, सबसे ऊपर की जो मजबूत टीम है वो पहले ही समझी जा रही थी, और उनके प्रदर्शन के बाद अब उन्होंने अपनी मजबूत दावेदारी पहले नंबर पर हासिल की है। दूसरा जो सनराइजर्स हैदराबाद है, और उसके अलावा जो तीसरी टीम गुजरात टाइटन्स और सनराइजर्स हैदराबाद है, ये दोनों टीमें बराबर बराबर 16-16 अंकों के साथ दूसरे और तीसरे नंबर यानी बराबरी पर ही हैं। तो खैर, अब देखते हैं कि आगे आने वाला जो चौथा नंबर का पायदान है वो कितना रोमांचक होता है और कौन सी टीम प्लेऑफ में अपनी जगह बनाती है।
1: जी बिल्कुल कमल, 5 मैच बचे हैं और चौथी टीम की तलाश है, तो दिन तो ज़्यादा नहीं बचे हैं, लेकिन कहा जा सकता है कि बहुत ही जल्दी इस सीज़न को अपनी चौथी प्लेऑफ की टीम भी मिलते हुए नज़र आएगी। और अब क्रिकेट के बाद चलते हैं एक ऐसे रोचक खेल की तरफ जिसने सबका ध्यान अपने उत्साह से अपनी तरफ मोड़ा है, और भारतीय टीम ने कल कुआलालंपुर में सेपक टकरा विश्व कप के क्वाड्रेंट में रजत पदक जीत कर इतिहास रच दिया।
2: कुआलालंपुर के टिटवांगसा स्टेडियम में खेले गए फाइनल में भारत को भले ही हार का सामना करना पड़ा, लेकिन टीम ने पूरी प्रतियोगिता में अपने शानदार प्रदर्शन की बदौलत रजत पदक अपने नाम किया। भारत को हराकर मलेशिया ने पहली बार सेपेक टकरा विश्व कप के क्वाड्रेंट का खिताब अपने नाम किया। इससे पहले खेले गए ग्रुप मुकाबले में भी मलेशिया ने भारत को हराया था। भारत को फाइनल मुकाबले में मलेशिया से 15-17 और 10-15 से हार का सामना करना पड़ा। भारतीय खिलाड़ियों ने इस फाइनल मुकाबले में जुझारू प्रदर्शन दिखाया, लेकिन वे रजत पदक की चमक को सोने में बदलने में नाकाम रहे। हालांकि भारत ने पूरी प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन दिखाया। भारत ने सेमीफाइनल में म्यांमार को 2-1 से हराया था, जबकि मलेशिया वियतनाम को हराकर फाइनल में पहुंची थी। वहीं क्वार्टर फाइनल में भारत ने चीनी ताइपे पर 2-0 से जीत दर्ज की थी। किक वॉलीबॉल और फुट वॉलीबॉल के नाम से प्रचलित सेपक टकरा मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशिया का एक रोमांचक खेल माना जाता है। यह खेल वॉलीबॉल और फुटबॉल का एक अनूठा मिश्रण है, जिसमें खिलाड़ी हाथों का उपयोग किए बिना केवल अपने पैरों, घुटनों, छाती और सिर की मदद से गेंद को नेट के पार भेजते हैं। जहां मैदान पर खिलाड़ियों की ऊर्जा, संतुलन और शरीर के लचीलेपन का एक शानदार तालमेल देखने को मिलता है। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
1: जी, एक शानदार तालमेल जहाँ खिलाड़ी अपनी प्रतिभा, हुनर और टैलेंट का भी तालमेल दिखाते हैं, और ऐसा ही कुछ तालमेल कल फुटबॉल के मैदान पर देखने को मिला, जहां आर्सेनल एफसी ने प्रीमियर लीग फुटबॉल का खिताब जीत लिया है। सुनते हैं आर्सेनल की जीत पर ये डिटेल्ड रिपोर्ट।
3: आर्सेनल ने 22 साल के लंबे इंतजार के बाद प्रीमियर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया। मैनचेस्टर सिटी और बॉर्नमर्थ के बीच कल 1-1 से मैच ड्रॉ होने के बाद आर्सेनल को विजेता घोषित किया गया। कल इंग्लैंड के वाइटालिटी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में पेप गार्डियोला की टीम को खिताब रेस में बने रहने के लिए हर हाल में जीत चाहिए थी, लेकिन बॉर्नमर्थ के शानदार प्रदर्शन ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मैच का सबसे अहम पल 39वें मिनट में आया, जब 19 वर्षीय फ्रेंच खिलाड़ी एली जूनियर क्रूपी ने शानदार गोल कर बॉर्नमर्थ को बढ़त दिलाई। एड्रियन ट्रफर्ट के पास पर क्रूपी ने बेहतरीन पहला टच लिया और फिर एक कर्विंग शॉट लगाकर गेंद को गोल पोस्ट के अंदर पहुंचा दिया। एर्लिंग हॉलैंड ने बराबरी का गोल कर सिटी की वापसी के साथ ही जीत की उम्मीदें जगाई थी, लेकिन मैनचेस्टर की खुशी अधिक समय तक नहीं रह सकी। कुछ ही सेकंड बाद मैच समाप्त होने की घोषणा हुई। आर्सेनल और मैनचेस्टर को अब 1-1 मुकाबला और खेलना है, लेकिन 4 अंकों की बढ़त के कारण आर्सेनल को विजेता घोषित कर दिया गया। आर्सेनल के मुकाबला हारने या मैनचेस्टर के मुकाबला जीतने से अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिकेल आर्टेटा की अगुवाई में आर्सेनल ने शानदार खेल दिखाया। सीजन में आर्सेनल ने कॉर्नर से सबसे ज्यादा गोल करने का प्रीमियर लीग रिकॉर्ड भी बनाया। मैनचेस्टर सिटी और बॉर्नमर्थ के बीच हुए मैच के ड्रॉ होने की खबर आते ही एमिरेट्स स्टेडियम के बाहर हजारों आर्सेनल समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। अब आर्टेटा की टीम के पास इतिहास रचने का एक और मौका है। आर्सेनल 30 मई को बुडापेस्ट में यूईएफए चैंपियंस लीग फाइनल 2025 में पेरिस सेंट जर्मेन एफसी से मुकाबला करेगी। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो यही फुटबॉल की लीग की वो दुनिया है जहां पे रोज सैकड़ों कीर्तिमान बनते हैं और सैकड़ों कीर्तिमान टूटते हैं। और अब फुटबॉल के बाद चलते हैं बैडमिंटन की तरफ, जहां मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 500 में भारत के लिए

0: आज का दिन कुछ अच्छे परिणाम लेकर आता हुआ नहीं नजर आया। और अगर देखा जाए तो अश्मिता चाहिला, देविका सिहाग और मालविका बंसोड़ प्री क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गए हैं। हालांकि भारत की मुख्य उम्मीद लक्ष्य सेन और एचएस प्रणॉय का सफर आज इस प्रतियोगिता में समाप्त हो गया। और अब इस उम्मीदों की डोर को लेकर चलते हैं उलान बटोर की तरफ, जहां रूपा बायर ने मंगोलिया के उलान बटोर में आयोजित 9वीं एशियाई टाइकेंडो पुमसे चैंपियनशिप 2026 में कांस्य पदक अपने नाम किया है। इस पदक के साथ बायर ने एशियाई टाइकेंडो चैंपियनशिप में लगातार दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस शानदार पदक के साथ रूपा ने एक और उपलब्धि हासिल की है कि वे एशियाई खेलों 2026 के लिए भी क्वालिफाई कर गई हैं। इस उपलब्धि के बाद हमारे सहयोगी विशेष शुक्ला ने रूपा से बातचीत की, जहां रूपा ने इस प्रतियोगिता के दौरान अपने अनुभव हमसे साझा किए।
1: नमस्कार रूपा जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्ते, थैंक यू।
1: नाइन्थ एशियन ताइक्वांडो पुमसे चैंपियनशिप्स में आपने ब्रॉन्ज मेडल जीता, इसके लिए आपको बधाई।
2: थैंक यू सो मच आप सभी को।
1: किस तरीके का आपका अनुभव रहा जब आपने ब्रॉन्ज मेडल जीता?
2: एक्सपीरियंस तो मेरा काफी अच्छा रहा था, क्योंकि मैंने बैक टू बैक इस बार मारा था। मैंने 28 एशियन चैंपियनशिप में भी मैंने ब्रॉन्ज मेडल मारा था, और आफ्टर 2 ईयर्स बैक अब ये 9 एशियन चैंपियनशिप में भी मैंने ब्रॉन्ज मेडल मारा था, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो और मेरा कॉन्फिडेंट लगता है नेक्स्ट टाइम और मैं अच्छे कर सकता हूँ, तो मुझे थोड़ा ऐसा फील बहुत अच्छा आ रहा है।
1: किस तरीके से आपकी तैयारी रही है?
2: तैयारी तो मेरे लिए बहुत लंबा प्रोसेस था, बट इसमें मेरा सिर्फ फिजिकल या मेंटल सिर्फ नहीं था, मेरा बहुत और बहुत जनों का कंट्रीब्यूट भी था, क्योंकि मेरे लिए भी ये आसान नहीं था, इजी नहीं था इतना लंबा जो आना, तो इसीलिए उस पे काफी मेहनत रहा है मेरा कोच का, और हमारा फोकस एक जगह पे टिका रहा कि हमें ये करना है।
1: आप थोड़ा सा ताइक्वांडो खेल के बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए कि किस तरीके से ये खेल बाकी खेलों से अलग है।
2: ताइक्वांडो जो है कोरिया का नेशनल गेम्स है, इसमें डिफरेंट वही है कि ताइक्वांडो में क्यूरिगी और पुमसे जो है डिफरेंट वही है कि क्यूरिगी में वो फाइटिंग होता है, एक दूसरे को फाइट करता है, बट पुमसे का डिफरेंट वही है कि हम परफॉर्म करता है एक दूसरे में।
1: इस साल आपको एशियन गेम्स भी खेलने हैं, तो किस तरीके की आपकी तैयारी है?
2: अभी तो फिलहाल मेरा तैयारी है, वापस जाएंगे इंडिया जाने के बाद मेरा तैयारी तो 21 से मैंने स्टार्ट कर दिया था, 2021 से अभी होपफुली हमारे जो प्लानिंग का हिसाब से अभी होंगे तो और अच्छा रहेंगे। अभी जाएंगे वापस, फिर वापस अपना ट्रेनिंग चालू करेंगे, तो अपना जो प्लानिंग है शेड्यूल है उस हिसाब से करेंगे, तो उसके लिए और ज्यादा मुझे डबल काम करना है।
1: आपकी ट्रेनिंग और तैयारियों के लिए सरकार आपकी किस तरीके से मदद कर रही है?
2: भारत सरकार मुझे काफी हेल्प कर रहा है, क्योंकि मुझे अभी हमारे लिए सबसे वो होता है कि फाइनेंशियल में मुझे काफी इश्यू होता है, तो हम चैंपियनशिप में आना जाना, मुझे रहना खाना और मुझे ट्रैवल करना या टिकट, ये सब में काफी हेल्प कर रहे हैं, तो उसके लिए भी मैं बहुत थैंक यू हूँ।
0: जी बिल्कुल, बहुत बहुत आभार आपका भी रूपा, और स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम से जुड़ी आप और आपने अपने अनुभव साझा किए, और ये दूसरा मौका है जब आप जुड़ी हैं और ये दूसरी उपलब्धि है जब आप हमारे साथ जुड़ी इस कार्यक्रम में, और हमें उम्मीद होगी कि आप आगे भी ऐसे ही कुछ और पदक जिनकी चमक इससे और ज़्यादा उज्ज्वल हो उनके साथ देश का नाम रोशन करें और हमारे कार्यक्रम के साथ अपने अनुभव साझा करती रहें। और इसी तरह की एक उपलब्धि हॉकी की फील्ड से कोच बलदेव सिंह ने हासिल की है, जिनको 25 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्मश्री से अलंकृत करेंगी। 75 वर्षीय बलदेव ने राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के पास स्थित एक छोटे से शहर शाहबाद मारकंडा को हॉकी का एक एपिसेंटर बना दिया है, जहां से खिलाड़ी आ रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक पे राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और शानदार प्रदर्शन लेकर के इस लजिसी को आगे बढ़ा रहे हैं। इन पर भी बात की जाएगी हमारे आने वाले अंक में। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में आपसे इसी समय फिर मुलाकात होगी खेल के मैदान की हर खबर के साथ। और आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा इस पर आप अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com यानी sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी

0: के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने दुर्लभ खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ते प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिन में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
1: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
1: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
0: सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया।
1: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूँ।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन

0: इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। श्री सिंह ने रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
1: 12 वर्षों के अंदर ही हम 40,000 करोड़ से ज्यादा का इस समय हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तो 2 साल के अंदर 50,000 करोड़ के एक्सपोर्ट, डिफेंस आइटम्स के एक्सपोर्ट की जानकारी आपको मिल जाएगी। और हमारी गवर्नमेंट के रहते डिफेंस सेक्टर में एक मेजर चेंज आया है। भारत की पॉलिसी आज रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव है, और मेरा भी ये व्यक्तिगत रूप से मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के किसी कीमत पर किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा। और इसी सोच के साथ भारत इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को तेजी के साथ बढ़ावा दे रहा है।
0: रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा। वहां से उन्हें देश से निकालने के लिए BDR के साथ इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने इसे नए तरीके को पहचानो हटाओ और देश से निकालो बताया। गुजरात सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का समर्थन किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बने संयुक्त संसदीय समिति ने आज गुजरात के गांधीनगर में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा की। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि विधेयक को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए।
2: हमने आज JPC को गुजरात सरकार की ओर से खास तौर पे ये नम्र निवेदन किया है कि वन नेशन वन इलेक्शन जल्द से पास हो, सभी राज्य के नागरिकों को एक समान हित मिले, सभी लोगों के काम जल्द हो पाए, मशीनरी सरकारी जो है उसका कम से कम समय बिगड़े, वही हित में आज हमने वन नेशन वन इलेक्शन को हमने हमारा सहयोग दिया है और हमने ये खास तौर पे विनती की है इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए।
1: इस बीच कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NEET UG पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर चिंता व्यक्त की गई। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में 5 आरोपियों को 2 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने एक अन्य आरोपी की CBI हिरासत भी बढ़ा दी है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने जम्मू कश्मीर में एक सशक्त नवाचार इकोसिस्टम के निर्माण के लिए 500 नई अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। नई लैब अटल नवाचार मिशन के व्यापक सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे NewsOnAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। ईरान संघर्ष के कारण वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष भारत की विकास दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। इससे भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अर्थशास्त्री इंगो पिटले ने कहा कि भारत की मजबूत उपभोक्ता मांग, सार्वजनिक निवेश और सेवा निर्यात में वृद्धि इसकी अर्थव्यवस्था को सहारा दे रही है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 118 अंक बढ़कर 75,318 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 41 अंक की बढ़त के साथ 23,659 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 30 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी 96.83 रुपए पर बंद हुआ।
1: और अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी कल तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने अगले 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कल राजधानी में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
3: मौसम विभाग के अनुसार कल दिल्ली में अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पिछले 24 घंटों में राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि कल दिन के समय राष्ट्रीय राजधानी में 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है। सौम्य के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम में भारी वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि ये राष्ट्र को एकजुट करने का सशक्त माध्यम है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से हो रहा है। फिलहाल बारिश के कारण मैच रुका हुआ है। मैच रुकने तक मुंबई इंडियंस ने 8 ओवर में 4 विकेट पर 57 रन बना लिए थे। उधर मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 500 में आज अश्मिता चलिहा, देविका सिहाग और मालविका बंसोड महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 7 मई से बढ़ाकर 31 मई कर दी है। प्रतियोगिता 3 श्रेणियों में आयोजित की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने महत्वपूर्ण खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashwani and I am VC Pramod with the news at 9. The headlines. India and Italy agree to elevate ties to

साया, आइए अब सुनते हैं इस फिल्म में अलका याग्निक और उदित नारायण को। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत एम एम करीम का है।

श्रोतो, इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, और अब आइए कार्यक्रम के समापन में हम आपको सुनवाते हैं समीर का लिखा फिल्म सिर्फ तुम का ये गीत। इस गीत को गाया है साबरी ब्रदर्स ने।

श्रोतो, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम इंद्रधनुष। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 होने वाले हैं। अब थोड़ी देर में अगला कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

बीते कुछ वर्षों में दुनिया ने एक बदलाव महसूस किया है, एक ऐसा बदलाव जहां भारत अब सिर्फ एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि वैश्विक मंच पर एक निर्णायक आवाज बनकर उभरा है। कूटनीति के नए आयाम, विश्व मंच पर बढ़ती भागीदारी और हर बड़े वैश्विक मुद्दे पर भारत की स्पष्ट और सशक्त उपस्थिति, इन सब ने मिलकर रचा है एक नए भारत का आत्मविश्वास। और इसी बदलती तस्वीर का एक महत्वपूर्ण पहलू है दुनिया भर से मिल रहे वो सम्मान जो भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा की गवाही देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले ये वैश्विक अलंकरण सिर्फ एक नेता की उपलब्धि नहीं बल्कि भारत की साख, सामर्थ्य और विश्वसनीयता का प्रतीक हैं। स्वीडन और नॉर्वे से लेकर दुनिया के कई देशों तक हर सम्मान एक कहानी कहता है, भारत के बढ़ते कद की कहानी। चर्चा का विषय है कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैश्विक सम्मान, भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा।

0: दुनिया के कई देशों तक हर सम्मान एक कहानी कहता है, भारत के बढ़ते कद की कहानी। चर्चा का विषय है कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैश्विक सम्मान, भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा। शुरुआत करते हैं बिल्कुल हालिया और ऐतिहासिक लम्हे से। मई 2026 का महीना भारत के राजनयिक इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्डिक देशों की यात्रा पर थे। तारीख थी 17 मई 2026 और जगह थी स्वीडन का गोथेनबर्ग शहर। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन की उपस्थिति में प्रधानमंत्री मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च नागरिक सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से नवाजा गया। साल 1748 में स्थापित हुआ ये ऐतिहासिक सम्मान किसी विदेशी शासनाध्यक्ष को मिलना ये दर्शाता है कि आज यूरोप की नजरों में भारत का स्थान क्या है। ये प्रधानमंत्री मोदी का 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान था।
1: कुछ समय पहले मुझे स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह स्वीडन के हमारे उन सभी साथियों का भी सम्मान है जिन्होंने भारत स्वीडन संबंधों को समृद्ध किया, एक मजबूत आधार दिया।
0: कहानी यही नहीं रुकी, इसके ठीक अगले ही दिन यानी 18 मई 2026 को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का शाही महल एक और इतिहास का गवाह बना। नॉर्वे के राजा किंग हेराल्ड पंचम ने प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से विभूषित किया। दो नॉर्डिक देशों से मिले इन सम्मानों ने साबित कर दिया कि भारत और नॉर्डिक देशों के बीच की साझेदारी अब एक नई रणनीतिक ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। आइए समय के पहिए को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। साल 2014 में शुरू हुआ ये कूटनीतिक सफर साल 2016 में सम्मानों की एक ऐसी श्रृंखला में बदल गया जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। साल 2016 में खाड़ी देशों के साथ भारत के रिश्तों में एक नया अध्याय जुड़ा। सऊदी अरब ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज सैश से नवाजा। इसी साल पड़ोसी देश अफगानिस्तान ने उन्हें स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी आमिर अमानुल्ला खान प्रदान किया। वर्ष 2018 में भारत की पर्यावरण नीतियों को वैश्विक पहचान मिली जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण के क्षेत्र के सबसे बड़े पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया। इसी साल फिलिस्तीन ने उन्हें ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन दिया। दक्षिण कोरिया ने वैश्विक शांति और आर्थिक विकास के लिए सियोल शांति पुरस्कार भी प्रदान किया। वर्ष 2019 तो जैसे वैश्विक पुरस्कारों का वर्ष बन गया। दुनिया के नक्शे पर भारत की दोस्ती का दायरा कितना बड़ा था ये इन पुरस्कारों की सूची देखकर समझ आता है। संयुक्त अरब अमीरात का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद, रूस का सबसे प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, मालदीव का ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ इज्जुद्दीन और बहरीन का किंग हमद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा शामिल रहा। 2019 में ही बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने स्वच्छ भारत अभियान की सफलता के लिए उन्हें ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया। जब साल 2020 में पूरी दुनिया सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना से जूझ रही थी तब भारत की वैक्सीन मैत्री ने दुनिया का दिल जीता। इसी दौरान अमेरिका ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने बेहद प्रतिष्ठित सैन्य सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। 2021 में हमारे पड़ोसी देश भूटान ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग से भारत के प्रति अपनी अटूट निष्ठा व्यक्त की। साल 2023 में जब भारत G20 की मेजबानी कर रहा था और उसी वर्ष जब प्रधानमंत्री मोदी पापुआ न्यू गिनी पहुंचे तो वहां के प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल तोड़कर पैर छूकर उनका स्वागत किया और उन्हें ऑर्डर ऑफ लोगोहू से नवाजा। इसी तरह फिजी ने कमियान ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी और मिस्र ने अपना ऐतिहासिक ऑर्डर ऑफ द नाइल प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया। वर्ष 2023 में ही फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया।

0: बाद ग्रीस ने भी उन्हें ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर दिया। साल 2024 और 25 में तो ये फेहरिस्त और लंबी हो गई। नाइजीरिया का ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, गयाना का ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, डोमिनिका का सर्वोच्च सम्मान और कुवैत का ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर उन्हें प्रदान किया गया। इसके बाद साल 2025 में बारबाडोस श्रीलंका का मित्र विभूषण, मॉरिशस का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन उन्हें प्रदान किया गया। घाना ने द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस, नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एनिशियंट वेलविचिया मिराबिलिस, ट्रिनिदाद और टोबैगो ने द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिदाद एंड टोबैगो, और ब्राजील ने द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल अवार्ड ऑफ द सदर्न क्रॉस से भारत के बढ़ते कदमों का स्वागत किया। इसके अलावा ओमान की तरफ से फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओमान और इथियोपिया की तरफ से ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया भी प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया गया। साल 2026 की शुरुआत में ही इसराइल ने भी उन्हें मेडल ऑफ द नेसेट से सम्मानित किया। इन 32 अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों की फहरिस्त सिर्फ कागजी आंकड़े नहीं है, ये इस बात का सीधा प्रमाण है कि आज का भारत सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा बल्कि दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी पृथ्वी ही मेरा परिवार है का संदेश दे रहा है। चाहे वो पर्यावरण संकट हो, वैश्विक शांति की बात हो या आपदा के समय मदद का हाथ बढ़ाना हो, दुनिया आज भारत के नेतृत्व की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्ष दर वर्ष मिले ये सम्मान असल में भारत की 140 करोड़ जनता के कड़े परिश्रम, हमारी प्राचीन संस्कृति और हमारे बढ़ते आर्थिक और सामरिक सामर्थ्य का वैश्विक उत्सव है। विदेशी कूटनीति में क्या 2014 के बाद भारत ने विशेष हासिल किया है जिसे भारत अब दुनिया के मानचित्र में अब एक मजबूत स्तंभ बन गया है, इस पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ हैं दो बेहद खास मेहमान, पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और वरिष्ठ पत्रकार मदन जेड़ा। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत
1: जी। धन्यवाद।
2: धन्यवाद आनंद जी।
0: अशोक जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की जो यात्रा चल रही है इसमें वो यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 5 देशों की यात्रा पर हैं। नॉर्वे में हुए तीसरे इंडिया नॉर्डिक समिट में भारत और नॉर्डिक देशों के बीच ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर सहमति बनी है। आपको क्या लगता है कि इस यात्रा के चलते जो वैश्विक परिदृश्य है और वैश्विक परिदृश्य में भारत की जो नॉर्थ वर्ड टर्न है यानी उत्तर की ओर जो रुख है उस लिहाज से कितना अहम मानते हैं इस यात्रा को आप?
3: हम अभी देख रहे हैं जो ये जो यात्रा है वो उनकी नॉर्डिक देशों में है, तो इसमें कहा जाए जो ये नॉर्थवर्ड हम टर्न देख रहे हैं, परंतु ये तो हम जानते ही हैं जो भारत तो एक जिसे कहा जाए वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ है। हमने वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट्स किए हैं जब भारत G20 की चेयर हमने संभाली थी 2023 में। परंतु इसको छोड़ते हुए मैं कहूँगा जो भारत की जो की कूटनीति है, अगर हम 2014 के बाद से देखें तो हमारी कूटनीति पूरे विश्व के साथ अपने संबंधों को आगे ले जाने में लगी है और हम इसमें बहुत ही तीव्र गति से काम कर रहे हैं। परंतु जहां तक ये नॉर्डिक देशों का संबंध है, आपने ठीक कहा है, इसको अभी करीब 8 साल हुए हैं 2018 में जिसे कहा जाए पहला नॉर्डिक समिट हुआ था स्वीडन में, दूसरा डेनमार्क का हुआ 2022 में कोपेनहेगन में, और अब तीसरा पिछले साल होने वाला था परंतु पहलगाम के इंसिडेंट के होते हुए तो ये नहीं हुआ और अब हो रहा है। तो अभी जो हालात हैं पूरे विश्व में, विश्व की जो चुनौतियां हैं, जो चाहे हम जियोपॉलिटिकल स्तर पर देखें, रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, पश्चिम एशिया का युद्ध चल रहा है, तो उसमें रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को आगे कैसे ले जाया जाए, और जो ग्रीन एनर्जी है, ग्रीन ट्रांजिशन है, इनोवेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, इन सभी जो नई टेक्नोलॉजीज आई हैं इनके साथ कैसे संबंध बनाया जाए और देशों के साथ मिलकर सहयोग किया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण इशू थे और इस पर बातचीत हुई। और जो बताता है जो प्रधानमंत्री मोदी की और भारत की विश्वसनीयता कितनी बढ़ रही है पूरे विश्व में।
0: चर्चा कर रहे हैं 2014 से लेकर अब तक भारत की विदेशी कूटनीति के आइकॉनिक मोमेंट्स की, और उसमें जो सबसे बड़ा मोमेंट्स था मदन जी वो G20 का जो हमने मेजबानी की। साल 2023 में भारत की अध्यक्षता में हुआ G20 समिट नई दिल्ली डिक्लेयर।

0: ऑपरेशन की वजह से दुनिया भर में सराहा गया। आपको क्या लगता है कि भारत ने जिस तरह विकसित और विकासशील देशों के बीच एक पुल का काम किया, उसने वैश्विक कूटनीति में भारत का कद किस तरह बढ़ाया?
1: अगर हम G20 की बात करें, एक तो ये बहुत बड़ा सफल आयोजन था, ये तो निश्चित रूप से था। दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें हुई कि ग्लोबल साउथ की आवाज को भारत ने मजबूती के साथ बुलंद किया, और जो अफ्रीका यूनियन है, अफ्रीकी देश हैं, उनको G20 की सदस्यता दिलाने में सफलता हासिल की। भारत लगातार ग्लोबल साउथ की आवाज को उठा रहा था। दुनिया में एकमात्र देश है जो भारत ग्लोबल साउथ की आवाज को उठा रहा था। इसमें करीब 100 से भी ज्यादा देश आ जाते हैं। पूरा अफ्रीका रीजन इसमें आ जाता है, नॉर्थ अमेरिकी जो कंट्री हैं वो आ जाते हैं। इसके अलावा और भी कई छोटे छोटे कंट्री हैं जो ग्लोबल साउथ में आते हैं, जो न तो किसी समूह के हिस्से नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ कहीं नहीं सुनी जा रही थी। अगर मैं G20 के आयोजन की बात करूं, भारत की कूटनीति की बात करें, तो ग्लोबल साउथ की आवाज़ को उठाना और अफ्रीकी यूनियन को G20 में सदस्यता दिलाना, तो मुझे लगता है कि भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। और इससे भारत की जो कूटनीति है उसको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया, और पूरी दुनिया ने स्वीकार किया कि जो भारत एक ऐसे देशों की आवाज़ उठा रहा है जिसकी आवाज़ बहुत पहले उठाई जाने की जरूरत थी। और ये पहल कायदे से देखा जाए तो जो विकसित कंट्री है उनको इसकी शुरुआत करनी चाहिए थी, लेकिन भारत ने, एक बहुत तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, उसने इन देशों की आवाज़ को उठाकर पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया जो वसुधैव कुटुंबकम, और इस G20 सम्मेलन की थीम भी यही थी, तो वसुधैव कुटुंबकम का जो संदेश दिया उसको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया और एक भारत के नेतृत्व में विश्वास जताया।
2: Dr. Nkrumah had said, and I quote, I am not African because I was born in Africa, but because Africa was born in me. In the same way, India carries Africa in its heart. India and Africa share a dream where every child gets opportunities, where every voice is heard, where nations rise together, not apart. Let us build a partnership, not only for today, but for generations to come.
0: अशोक जी, अगर इस चर्चा को आगे बढ़ाएं तो भारतीय विदेशी कूटनीति का एक और अहम पड़ाव है आपदा और संकट में कूटनीति, चाहे वो ऑपरेशन संकट मोचन हो, ऑपरेशन गंगा हो, या फिर युद्ध और संकट के क्षेत्रों से अपने नागरिकों को वापस बुलाना, उसमें भी भारत ने एक अहम भूमिका निभाई। लेकिन एक और ऑपरेशन हुआ जिसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया, जिसमें भारत ने पूरी दुनिया को ये बताया कि अगर भारत की तरफ कोई आंखें दिखाएगा तो भारत युद्ध का जवाब और प्रबल युद्ध से देना जानता है। आतंकवाद को सिरे से ना करना, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया के अलग अलग देशों में अपने प्रतिनिधि को भेजकर ये बताना कि भारत की मंशा क्या है, कैसे देखते हैं, क्या वो भारतीय की विदेश कूटनीति का एक मील का पत्थर था ऑपरेशन सिंदूर?
3: भारत ने पूरे विश्व को संदेश दिया, वो यही था जो हम अपनी संप्रभुता के लिए, अपने जो नागरिक हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए हम पूरी तरह से उनकी रक्षा करेंगे, और जो भी हद हो वो हम वहां तक जाएंगे। और यही बात हुई, जो हम युद्ध को पूरा युद्ध में नहीं वैसे परिवर्तित करना चाहते, हमें जब अपना लक्ष्य मिल जाता है तो फिर हमने युद्ध उसी समय रोक दिया। परंतु पाकिस्तान ने अपनी बेवकूफी में, उन्होंने सोचा जो वो भारत को ऊपर भी कुछ ऐसा नुकसान कर सकते हैं, परंतु 10 तारीख सुबह को तो उनके केवल बहुत सारे हवाई अड्डे थे, बहुत सारे ऐसे ठिकाने थे जिनको एकदम मिट्टी में मिला दिया गया, तो पाकिस्तान को अपने घुटने पर आना पड़ा। तो हमने तो उनको ये सिद्ध करके, और फिर उसके बाद हमने जब पाकिस्तान ने याचिका की जो ये युद्ध रोक दिया जाए, तो हम मान गए, क्योंकि हमने ये देखा है, भारत ने ये पूरे विश्व को बताया जो हम युद्ध शुरू कर सकते हैं अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए, और जब हमारे अपने ऑब्जेक्टिव्स लक्ष्य हम प्राप्त हो जाते हैं तो हम उसको बंद भी कर देंगे। तो हमने वहां पर से हमेशा से पाकिस्तान ये कहता रहा था जो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है तो आप हमारे ऊपर हमला कन्वेंशनल वॉरफेयर से नहीं कर सकते हैं। तो हमने ये बता दिया जो ये उनका जो ब्लैकमेल है ये हमारे विरुद्ध नहीं चलेगा।
0: और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कहा है कि बुद्ध की धरती युद्ध करना भी जानती है और ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा था।
2: आज पाकिस्तान भी भली भांति जान गया है कि भारत का हर जवाब पहले से ज्यादा तगड़ा होता है। उसे ये भी पता है कि अगर भविष्य में नौबत आई तो भारत आगे कुछ भी कर सकता है। और इसलिए मैं फिर से लोकतंत्र के इस मंदिर में दोहराना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पाकिस्तान ने दूसाहस की अगर कल्पना की

0: तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा।
1: अशोक जी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का विचार भारत की तरफ से दिया गया, क्या आपको लगता है कि भारत अब ग्लोबल वार्मिंग जैसी वैश्विक समस्याओं के समाधानकर्ता के रूप में दुनिया में देखा जा रहा है?
2: 2015 में जब ये कॉप हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज हुआ था पेरिस में, तो तब भारत ने और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उस समय के, तो उन्होंने इसको लॉन्च किया था। और अब जैसे उन्होंने बताया 100 से ज्यादा देश इसमें मिल गए हैं। देखिए, आजकल एनर्जी सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे बनकर उभर गए हैं पूरे विश्व के सामने। और हम देख रहे हैं जब से ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मुद्दा सामने आया है, तब तो ऊर्जा, एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स बहुत देशों के लिए मुश्किल हो गई है, क्योंकि वहां से 20% एनर्जी पूरे विश्व में आती है वो मिल नहीं रही है। तो इसीलिए ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, जिसकी भारत ने शुरुआत की है और भारत ने दिल्ली के निकटतम ही यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर्स भी खोला है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहा है। उसके अलावा अगर आप देखें, बायोफ्यूल्स अलायंस है, जो कि जब हम G20 की बात कर रहे थे तो G20 के साइडलाइंस पर दो बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए थे। एक तो था इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके अलावा एक CDRI है, दैट इज कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिस्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कैसे जो विश्व में पर्यावरण का बदलाव हो रहा है उसके साथ कैसे जूझा जाए, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना रहे हैं, जो बिल्डिंग्स बना रहे हैं, उनको कैसे जो आपदा आती है उनसे बचाया जाए। तो भारत ने विश्व पटल पर बहुत से ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं और बहुत से वैश्विक देशों ने भारत के साथ सहयोग कर रहे हैं, तो इसी से भारत का कद विश्व में और भी इससे ऊंचा हुआ है।
0: दिस इज द इनॉग्रल डे ऑफ ए डिफाइनिंग ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज। वी वॉन्ट टू ब्रिंग सोलर एनर्जी इन टू आवर लाइव्स। वी विल शेयर नॉलेज एंड एक्सचेंज बेस्ट प्रैक्टिसेस। वी विल कोऑपरेट ऑन ट्रेनिंग एंड बिल्डिंग इंस्टीट्यूशंस। We will discuss regulatory issues and promote common standards. We will attract investment in the solar sector, encourage joint ventures, and develop innovative financing mechanisms. We will partner with other international initiatives on renewable energy. There is already a revolution in solar energy. Technology is evolving. Costs are coming down and grid connectivity is improving. It is making the dream of universal access to clean energy become more real.
1: मदन जी, अब बात थोड़ी वैक्सीन डिप्लोमेसी की भी कर लेते हैं। COVID-19 और वैक्सीन मैत्री की भी चर्चा काफी रही। जब COVID-19 महामारी के दौरान भारत ने वैक्सीन मैत्री के तहत दुनिया के 100 से अधिक देशों को मेड इन इंडिया वैक्सीन पहुंचाई, वो भी दौर था जब दुनिया के कई देश अपनी वैक्सीन जमा कर रहे थे, तब भारत की इस मानवतावादी कूटनीति ने वैश्विक स्तर पर भारत के प्रति जो विश्वास पैदा किया, उसका लॉन्ग टर्म लाभ आप कैसे देखते हैं?
3: जब कोविड काल चल रहा था तो 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन की सप्लाई की थी, और उस समय वैक्सीन की हमारे पास भी कमी थी। हम दूसरे कंट्री से कुछ ग्लोबल इनिशिएटिव है उनसे हम वैक्सीन ले भी रहे थे, लेकिन इसके बावजूद हम वैक्सीन दूसरे कंट्री को भी दे रहे थे और 100 से ज्यादा देशों को हमने वैक्सीन की सप्लाई की थी, और उसमें से ज्यादातर देश या तो हमारे पड़ोसी देश थे या फिर वो ग्लोबल साउथ के देश थे जिनको हमने वैक्सीन की आपूर्ति की थी। तो इस इनिशिएटिव से भारत का, जैसे मैंने माना कि एक डिप्लोमेसी है, ये भी एक डिप्लोमेसी है कि अगर आप अपने सहयोगी देशों को, अपने मित्र देशों को किसी प्रकार की मदद करते हैं, तो ये भी एक डिप्लोमेसी का ही मैं इसे एक पार्ट कहूँगा। और इससे एक जो लॉन्ग टर्म में भारत पर भरोसा बढ़ा है, चाहे वो छोटा कंट्री हो, चाहे वो एक अफ्रीका का कोई देश हो, भारत पर उन लोगों का भरोसा लगातार बढ़ा है। और लॉन्ग टर्म में अगर इसकी बात करें, जब एक बार भरोसा बढ़ता है और लगातार भारत उनके किसी न किसी रूप में मदद करता है या उनकी आवाज़ को बुलंद करता है, या जैसे मैंने बताया कि ग्लोबल साउथ की आवाज़ भारत ने उठाई, उसके बाद UN सुधारों में भारत लगातार बोल रहा है, तो इसका भी फायदा दूसरे देशों को होने वाला है। भारत को उतना फायदा नहीं होना रहा, दूसरे देशों को ज़्यादा होगा अगर UN में सुधार होते हैं। ऐसे में जो भारत पर दूसरे देशों का भरोसा है वो लगातार बढ़ रहा है, और जब ये भरोसा बढ़ता है, और जैसे हम कह रहे हैं कि जो दुनिया धीरे धीरे बढ़ रही है वो मल्टीपोलर दुनिया हो रही है, बहुध्रुवीय दुनिया हो रही है, तो भारत उसमें एक मजबूत ध्रुव के रूप में उभर रहा है, एक मजबूत पक्ष के रूप में उभर रहा है।
1: अशोक जी, एक और इम्पॉर्टेंट पहलू है, काफी अहम पक्ष रहा है 2014 के बाद भारत की विदेश कूटनीति का, वो है मुक्त व्यापार समझौते। भारत ने हाल में UAE, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन देशों के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते किए, जिसे हम सब FTA के

0: नाम से जानते हैं। आपको क्या लगता है कि ये समझौते भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड हब बनाने में मददगार साबित हो रहे हैं?
1: जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए पिछले कुछ वर्षों में भारत ने बहुत ही ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट या मुक्त व्यापार समझौते जो हैं वो किए हैं और अपने महत्वपूर्ण जो साझेदार हैं, जो व्यापारिक साझेदार हैं जिनके साथ हमारे व्यापारिक सहयोग आर्थिक सहयोग बड़ा अच्छा है उनके साथ किए हैं। अगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का देखा जाए तो वो हमारा दूसरा सबसे बड़ा ऐसा डेस्टिनेशन है जहां हमारे एक्सपोर्ट्स जाते हैं, जहां हमारे निर्यात जाते हैं। वो तीसरे नंबर पर है जो कि सबसे बड़ा हमारा आर्थिक साझेदार है, सहयोगी है। और इसके अलावा हमने यूनाइटेड किंगडम के साथ भी किया है, वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक व्यवस्था है और आर्थिक सहयोग उनके साथ हमारा बहुत बड़ा है। यूरोपियन यूनियन तो जिनके साथ 2007 में ये बातचीत शुरू हुई थी, मुझे याद है जब मैं ब्रसल्स में था तब हमने ये बातचीत शुरू की थी, नेगोशिएशन शुरू किए थे। और ये 17-18 साल के बाद हम देख रहे हैं, जो इस साल के शुरू में फरवरी में हमने देखा 19 साल के बाद ये वाला समझौता हुआ है। और इसको वहां की जो यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डर लेन, उन्होंने इसको मदर ऑफ ऑल डील्स करार दिया था, इसका इतना व्यापक रूप है। ऐसे ही हमने एफ्टा के साथ जो चार देश हैं यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के, जैसे मैं पहले बोल रहा था आइसलैंड और नॉर्वे तो उसके सदस्य नहीं है और ये एफ्टा के सदस्य हैं, और उसके अलावा स्विट्जरलैंड और लिक्टेनस्टाइन, उनके साथ भी बहुत महत्वपूर्ण ये एक सहयोग किया है जिसमें $100 बिलियन भारत में वो निवेश करेंगे अगले 15 साल में, जिससे 10 लाख जॉब्स यहाँ पर क्रिएट होंगे। इसके अलावा हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, ओमान के साथ, ये सब हमने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स किए हैं जो कि मेरे विचार से विन विन अग्रीमेंट्स होंगे, ये इन सभी देशों के लिए भी और भारत के लिए भी।
2: आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। यह एक ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसके यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच सहयोग को और प्रबल करेगा। इतना ही नहीं, यह एफटीए भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा, नई इनोवेशन पार्टनरशिप बनाएगा और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। यानी यह सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, यह साझा समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट है।
0: अशोक जी, फॉरेन डिप्लोमेसी के क्षेत्र में रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत का स्टैंड भी काफी चर्चा में रहा। रूस यूक्रेन युद्ध पर प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान कि ये युद्ध का युग नहीं है, पूरी दुनिया में ये गूंजा। बिना किसी दबाव में आए भारत का अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर टिके रहना और दोनों पक्षों से बातचीत की वकालत करना भारत की परिपक्व होती कूटनीति का कितना बड़ा प्रमाण रहा।
1: डिप्लोमेटिक पार्लेंस में कहें तो इसको हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं, जो जिससे कि हम अपने हितों की रक्षा स्वयं करेंगे और हम किसी और को दखल अंदाजी नहीं करने देंगे, जो वो हमें बताए, भारत को बताए जो आपके लिए क्या अच्छा है, आपके लिए क्या ठीक है, आप इसमें क्या करिए। तो इसीलिए जब रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ तो बहुत दबाव पड़ा पहले भारत के ऊपर, जो आप तेल मत खरीदिए रूस से, परंतु भारत ने ये बता दिया, भारत करीब अपने जो जरूरतों का 80-85% तेल है वो आयात करता है, तो इसको हम जहां से भी हमारी कंपनियों को सभी ठीक दाम में तेल मिलेगा हम वहां से वो लेंगे। तो हमने अपने संबंध भी बनाए रखे और ये भी बनाए रखा, परंतु ऐसा नहीं किया जो हमने अपने संबंध और जो पश्चिमी देश हैं उनके साथ खराब कर दिए। और उन देशों को भी फिर बाद में समझ आ गया, जो अगर रूस का तेल वैश्विक बाजार में नहीं आता तो तेल के दाम बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं, जो कि सभी अर्थव्यवस्थाओं के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध हो सकता था। तो इसीलिए भारत ने ये बता दिया है, भारत वैश्विक फायदे के लिए, ग्लोबल गुड के लिए काम करेगा सबके साथ, परंतु अपने हितों को वो सैक्रिफाइस नहीं करेगा। और हमारा जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो केवल वो ट्रांजैक्शनल नहीं है जो केवल अपने हितों की हम रक्षा करें, हम और देशों के हितों के लिए भी हम उनके साथ बराबर परस्पर सहयोग बनाते रहेंगे और काम करते रहेंगे।
2: विद द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट वॉर हैज रिटर्न टू यूरोप, इट इज कॉजिंग great pain in the region. Since it involves major powers, the outcomes are severe. Countries of the global south have been particularly affected. The global order is based on the

0: respect for the principle of the UN Charter. Peaceful resolution of disputes and respect for sovereignty and territorial integrity. As I have said directly and publicly, this is not an era of war, but it is one of dialogue and diplomacy. And we all must do what we can to stop the bloodshed and human suffering.
1: अशोक जी, कार्यक्रम के अंत में एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि 2047 तक भारत का लक्ष्य है विकसित भारत बनने का। हमारी विदेश नीति और विदेश कूटनीति इस लक्ष्य को हासिल करने में किस तरह की भूमिका निभा रही है, कैसे देखते हैं आप?
2: भारत की जो कूटनीति है बहुत ही एक महत्वपूर्ण इसमें योगदान कर रही है। भारत को अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचाने में, विकसित भारत 2047 तक पहुंचाने में, क्योंकि सामने हमारे चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं, तो इसीलिए हमको देखना है जो किन देशों के साथ हमको अपना परस्पर सहयोग बढ़ाना है, हमारे अपने संबंधों को और तेज करना है, और वही हम कर रहे हैं। चाहे पहले हमारे अमेरिका के साथ, जिसे हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, परंतु अब हम देखते हैं जो अमेरिका का रवैया काफी ट्रांजैक्शनल हो गया है, परंतु फिर भी हमारे संबंध चाहे रक्षा क्षेत्र में हो, व्यापार क्षेत्र में हो, उनके साथ बड़े अच्छे रहेंगे, परंतु फिर भी हम डाइवर्सिफाई करेंगे। तो हर तरीके से लेकर अपनी आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने के लिए और अपने सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, जिससे कि अपनी संप्रभुता की हम रक्षा कर सकें, इस मार्ग पर अग्रसर होते हुए भारतीय कूटनीति उसमें एक बहुत ही अहम योगदान करेगी।
0: एक तो हमारा लक्ष्य है 2047, हिंदुस्तान विकसित होना ही चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज। आजादी के 100 साल हम ऐसे ही नहीं बिताएंगे, आजादी के 100 साल ऐसे मनाएंगे, ऐसे बनाएंगे कि दुनिया में विकसित भारत का झंडा फहरता होगा।
3: कभी दुनिया के मंच पर भारत को सिर्फ एक बड़ा देश माना जाता था, लेकिन आज भारत एक बड़ी सोच बन चुका है। चाहे G20 की मेज हो या संकट में फंसे देशों तक मदद पहुंचाने का संकल्प, भारत ने हर बार ये साबित किया है कि नई सदी की कूटनीति केवल ताकत से नहीं, विश्वास से चलती है। आज जब दुनिया नए संतुलन की तलाश में है, तो उसकी निगाहें हिंद महासागर के उस किनारे पर टिकती हैं जहां एक लोकतंत्र 140 करोड़ सपनों के साथ विश्व मंच पर आत्मविश्वास से कह रहा है, ये नया भारत है जो मित्रता भी निभाना जानता है और नेतृत्व करना भी जानता है। इसी विश्वास, इसी बढ़ते वैश्विक सम्मान और इसी नई कूटनीतिक यात्रा के साथ मदन जी आपका और अशोक जी आपका कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आभार।
2: बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए।
4: थैंक यू सर।
3: श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
5: चर्चा का विषय है।

हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम में आइए, पहले सुनते हैं गुलाम अली को।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: गुलाम तुम भी थे यारों,
3: और अब श्रोता भाई सुनते हैं आबिदा परवीन को।
2: हमारे दर्द में तुम

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: पारदर्शी भर्तियों में 28,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। राज्य ने G20 समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और 38वें राष्ट्रीय खेल जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का भव्य और सफल आयोजन किया और राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर अपनी खास पहचान बनाई।
0: संकल्प बेहतर उत्तराखंड का, कायम की एक नई मिसाल। उत्तराखंड का हर घर अब देखो हो रहा खुशहाल।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की नगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोतो, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत और अब आइए हम आपको सुनवाते हैं मेहदी हसन को।

और अब श्रोताओं आइए सुनते हैं ए हरिहरन को कलाम फरहत शहजाद का है।

0: कैलाश खेर के गए इस गीत के साथ ही सुगम संगीत कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है रूपक।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है सुप्रसिद्ध छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत पर विशेष रूपक बरसो जो

0: आधुनिक हिंदी साहित्य में कवि सुमित्रा नंदन पंत का आविर्भाव वासंती चंद्रमा के रूप में हुआ था। कवि ने अपने स्निग्ध कोमल स्वभाव से एक ओर कविता में प्रकृति का मार्दव बिखेरा तो दूसरी ओर मन की प्रसुप्त शक्तियों को कविता के आंचल में बड़ी बारीकी से टांक दिया। खड़ी बोली में जब छायावाद का प्रभाव पूरे उबाल पर था तब उनकी कविता सबसे आगे थी।
1: पंत में कला का स्थान सबसे ऊपर है, शब्दों की कला, छंद की, लय की, ये कला पंत में सबसे ज्यादा है।
0: साहित्य अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी,
1: दो विशेषताएं और आपको दिखाई पड़ेंगी, एक तो ऐन्द्रिकता और दूसरे चित्रात्मकता उनकी कविता में, यानी ऐन्द्रिय संवेदना जो शब्द स्पर्श और घ्राण या श्रवण वगैरह की जो कल्पनाएं जो चित्र होते हैं वो उनमें जो ऐन्द्रिय संवेदना है उनकी कविता में काफी है।
2: कितनी सुंदरता बिखरी प्राकृतिक जगत में, ईश्वर टपक रही गिरी शिखरों से झर, लूट रही घाटी में लिपटी धूप छांव में निश्वर, फूलों की ज्वालाएं आंखें करती शीतल, मुकुल अधर मधु पीते गुंजन भर मधुकर दल, तितली उड़ती दूर कहीं पल्लव छाया में, रुक रुक गाती वनप्रिय कोयल।
3: इनका जन्म कुर्मांचल प्रदेश के कौसानी ग्राम में 20 मई 1900 ईस्वी में हुआ। इनके जन्म के कुछ समय बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो गई और पिता ने दीर्घ जीवन की मनौती मनाते हुए नवजात को एक गोस्वामी को अर्पित कर दिया और आप गोसाई दत्त कहलाए।
4: नियति का वही परीक्षा काल था, माता ने अपने पुत्र को देखा ही नहीं दृष्टि भर के, वो 6 घंटे के उपरांत ही अपने मूर्छा में ही समाप्त हो गई।
3: आप सुन रहे हैं समकालीन महान कवयित्री महादेवी वर्मा के विचार।
4: धीरे धीरे ये बड़े हुए, 4 बहनें इनकी, 3 भाई थे, सबसे छोटे यही थे। इनको बहुत दुलार मिला, परंतु मातृहीन बालक को जब हम दुलार भी देते हैं तो उसमें एक दया तो होती है, एक करुणा तो होती है, बेचारा मातृहीन है। इससे पंत जी के स्वभाव में 2 परिवर्तन आए, एक तो उन्होंने प्रकृति को ही अपनी धात्री अपनी माता माना, दूसरे हर नारी के प्रति उनके मन में एक कोमल भावना जागी।
5: माँ मेरे जीवन की हार, तेरा मंजुल हृदय हार हो, अश्रु कणों का ये उपहार, मेरे सफल श्रमों का सार, तेरे मस्तक का हो उज्ज्वल श्रम जलमय मुक्तालंकार, मेरे भूरी दुखों का भार, तेरी और इच्छा का फल हो, तेरी आशा का श्रृंगार, मेरे रति कृति व्रत आचार, माँ तेरी निर्भयता हो नित, तेरे पूजन के उपचार, यही विनय है बारंबार, यही विनय है बारंबार।
0: आरंभिक वर्षों में कवि ने प्रकृति के आंचल में रहकर ही काव्य रचना की और उद्घोषित किया।
6: छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल गाल में कैसे उलझा दूं लोचन।
3: ये है प्रसिद्ध साहित्यकार, लेखक और कवि डॉक्टर श्याम सिंह शशि।
6: और हिमालय पुत्र क्या लिखेगा, वहाँ तो प्रकृति की गोद में वो विचरण किया है, उसने प्रकृति को केवल देखा ही नहीं बल्कि उसे जिया था।
0: और फिर तो प्रार्थना के मृदुल स्वर भी रंगते चले गए प्रकृति प्रदाता उस अनंत को रिझाने में।
5: नमन तुम्हें करता मन, हे जग के जीवन के जीवन।

0: ध्यान मौन प्रत्युर स्पंदन में स्मरण तुम्हें करता मन। तुम अंतर के पथ से आओ, चिर श्रद्धा के रथ से आओ, जीवन अरुणोदय संग लाओ, नव प्रभात युग नूतन। आज व्यक्ति के उतरो भीतर, निखिल विश्व में विचरो बाहर, कर्म वचन मन जन के उठकर बने युक्त आराधन, नमन तुम्हें करता मन।
1: पंत जी का जो प्रकृति चित्रण है, चाहे वो कौसानी और पहाड़ का जहाँ के वो मूलतः थे, उससे बहुत प्रभावित है। तो इसलिए वो एक जो अनुभव संभार था और प्रकृति का जो सीधा संपर्क था, उसका बहुत ही सृजनात्मक उपयोग उन्होंने अपनी कविता में किया है।
2: आप सुन रहे हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कवि, लेखक और चिंतक अशोक वाजपेयी के विचार।
1: सोनजूही की बेल नवेली एक वनस्पति वर्ष हर्ष से खेली। तो अब इसमें वर्ष हर्ष का जो खेल है, पंत जी को शब्दों और अक्षरों पर बड़ी पकड़ थी।
3: मैं जीवन में सोचता रहा, खोजता रहा, कभी ऊर्ध्वमुख फिर अंतर्मुख, कभी बहिर्जग में भी बहा। अब लगता मैं अपने ही को खोजता रहा व्यग्र निरंतर, मेरा ही बहुमुख प्रसार था बाहर भीतर ऊपर।
4: जो पहला चरण है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो पंत जी का मौलिक चरण है, जिसमें प्रकृति, प्रेम, सौंदर्य मुख्य रूप से आता है।
5: आप हैं डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी।
4: पंत जी ने स्वयं लिखा है कि मुझे काव्य की प्रेरणा प्रकृति से मिली। उन्होंने बादल, चांदनी, तारा, जंगल, परिवेश, जो वर्णन उन्होंने किया है वहाँ का, आप देखिए, लो चित्र सलभ सी पंख खोल, उड़ने को है चित्रित घाटी, यह है अल्मोड़े का बसंत, खिल पड़ी निखिल पर्वत पाटी। प्रकृति को कई बार वो रहस्य के उसमें भी ले जाते हैं, जैसे मौन निमंत्रण कविता उनकी है, एक तारा उनकी कविता है, और प्रकृति का नारी रूप में भी चित्रण करते हैं।
0: खेच ऐचीला भ्रूसुर चाप, शैल की सुधियों बारंबार, हिला हरियाली का सुदकूल, झुला झरनों का झलमलहार, जलत पट से दिखला मुखचंद्र, पलक पल पल चपला के मार, भग्न उर पर भूधर सा हाय, सुमुखी रख देती हो साकार।
2: निश्चय ही कवि ने पहाड़ों, गांवों और मन के उद्वेगों तथा गहन आंतरिक आकुलता को वाणी देकर जिस सघनता के साथ काव्य में उतारा है, वो हर दृष्टि से प्रशंसनीय और श्लाघ्य है। आप हैं साहित्य अकादमी के पूर्व सचिव, लेखक और चिंतक प्रोफेसर इंद्रनाथ चौधरी।
6: उस एकांत में भी वो हर तरह की आवाज सुन लेता था, यहाँ तक कि ठीक सांझ के वक्त जब कलियां चटक के फूल बन जाती है, उसमें एक आवाज होती है, उस आवाज को भी वो सुन लेता था। इसीलिए अज्ञे ने कहा था कि ये स्वर सिद्ध कवि है, मगर उस एकांत में वो ढूंढता किसको था, सवाल ये भी तो उठता है। और जो दूसरी चीज उसके काव्य साहित्य में हमें दिखाई पड़ता है, वो अज्ञात के प्रति आकर्षण। माँ की भी बड़ी भूमिका है, इच्छा भी होती थी कि आकाश के पते पर वो एक चिट्ठी लिखे।
2: नन्हे बालक गोसाई दत्त के अंतर्मन में अपनी माँ को खोने की पीड़ा शायद इतना घर कर गई थी कि वो चर अचर में केवल अपनी माँ को ही खोजता, प्रकृति के विराट रूप में केवल अपनी माँ को ढूंढता। वो अज्ञात, क्या वो माँ थी?
7: संतान को जन्म देने में प्राण दे देती है, तो जन्म तो सभी का किसी माता की पीड़ा है। और इसने उनके मन को इतना आंदोलित किया था कि उनकी कितनी कविताएं आप देखेंगे, मुक्त करो नारी को मानव मुक्त करो।
5: महादेवी वर्मा ने शायद अपने भ्राता के काव्य में छिपे प्रकृति प्रेम के कारण को पहचान लिया था।
7: और इसी तरह अपने रूप को उन्होंने बनाया, घने लहरे रेशम से बाल, धरा है मैंने सिर पर देवी तुम्हारा ये सर्गिक श्रृंगार। और मैं समझती हूँ कि उनकी माता नहीं रही तो पूरी पृथ्वी ने मानो उनको माता बन के अपने अंक में ले लिया।
2: स्त्रियों के प्रति पंत का संभाव, स्त्री स्वातंत्र और सामंत युगीन दास्ता से मुक्ति भी आपके साहित्य में मुखरित हुई है।
0: सदाचार की सीमा उसके तन से है निर्धारित, पूत योनि वह मूल्य धर्म पर केवल उसका अंकित, वो समाज की नई इकाई शून्य समान अनिश्चित, उसका जीवन मान मान पर नर के है अवलंबित, योनि नहीं है रे नारी वो भी मानवी प्रतिष्ठित, उसे पूर्ण स्वाधीन करो वो रहे न नर पर अवसित।
5: पंत की रचनाओं में अंतर्दृष्टि और संवेदनशीलता उनके भाव पक्ष को गहराई तथा विविधता प्रदान करती है। पंत की रचनाओं में समाज के यथार्थ के साथ साथ प्रकृति और मनुष्य की सत्ता के बीच टकराव भी दिखता है। कुछ छंद ग्राम्या में संकलित उनकी कविता संध्या के बाद से।
8: दीप शिखा सा ज्वलित कलश, नभ में उठकर करता नीराजन, तट पर बगुलों सी वृद्धाएं विधवाएं जप ध्यान में मगन, मंथर धारा में बहता जिनका अदृश्य गति अंतर रोदन, दूर तमस रेखाओं सी उड़ती पंखों की गति सी चित्रित, सोन खगों की पाति आर्द्र ध्वनि से नीरव नभ करती मुखरित, स्वर्ण चूर्ण सी उड़ती गोरज किरणों की बादल सी जलकर, सनन तीर सा जाता नभ में ज्योतित पंखों कंठों का स्वर, लौटे खग गायें घर लौटी, लौटे कृषक श्रांत श्लथ डगधर, छिपे गृहों में म्लान चराचर छाया भी हो गई अगोचर, बत्ती जला दुकानों में बैठे सब कस्बे के व्यापारी, मौन मंद आभा में हिम की ऊंघ रही लंबी अंधियारी।
2: कविवर पंत का काव्य प्रवाह प्रकृतिवाद और रहस्यवाद से धीरे धीरे प्रगतिवाद फिर राष्ट्रवाद की ओर गतिमान होता है। समकालीन कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन।
9: युगांत के द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, गा कोकिल बरसा पावक कण, बढ़ो अभय विश्वास चरण धर में क्या समग्र राष्ट्र के लिए ही क्रांतिकारी आह्वान नहीं है। युगवाणी और ग्राम्या में पंत जी अधिक खुलकर राष्ट्र के गायक के रूप में आगे आते हैं। चरखे पर भी उन्होंने कविता लिखी। उनका दृढ़ विश्वास है कि भारत का भविष्य तब तक उज्जवल नहीं होगा जब तक वह मध्ययुगीन मनोवृत्तियों से निकलकर आधुनिकता को ना अपनाए। उनका राष्ट्रगान जन भारत हे बहुत बार रेडियो पर सुना जाता है।

0: पंत हिंदी साहित्य के नए युग के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने कई काव्य संग्रह भी लिखे, इनमें वीणा, पल्लव और गुंजन छायावादी शैली में सौंदर्य और प्रेम की प्रस्तुति है। अपनी लंबी कला यात्रा के दौरान आपको चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ और साथ ही आपको सोवियत लैंड पुरस्कार, पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कारों से भी नवाजा गया। इस सरल हृदय महाकवि को गर्व तनिक भी छूना गया था। अपना संस्मरण साझा कर रहे हैं अशोक वाजपेयी।
1: परिमल का इलाहाबाद में रजत पर्व था और उसमें मैं भाग लेने गया था। पंत जी बैठे थे उसमें, सामने बैठे थे। मैं बहुत ही 27-28 वर्ष का युवक था, थोड़ी बहुत कविता लिखने के कारण जाना जाने लगा था। तो मुझे एक गायक बुला लिया गया, तो मैंने ये कहा कि अगर रचना की सार्थकता का निकष उसकी दृष्टि हो तो ये अपर्याप्त भी है, क्योंकि रचना की असली सार्थकता तो उसके ब्योरों से तय होती है। और दुर्भाग्य से मैंने पंत जी का उस समय काव्य निकला था, महाकाव्य लोकायतन, उसका उदाहरण दिया और कहा कि उसमें जो प्रकट दृष्टि है वो सकल मानव के कल्याण की कामना करती है, लेकिन फिर भी ये महाकाव्य अप्रासंगिक क्यों लगता है। अब मैं हिम्मत करके ये बड़बोलापन कर तो गया, तो पंत जी ने कहा तुमने बात तो दुष्टता पूर्वक की है लेकिन अच्छी की है। तो अब आप सोचें कि एक बड़ा कवि बजाय नाखुश होने के या नाराज होने के उन्होंने मुझे ये कहा।
2: कवि पंत न सिर्फ प्रकृति के कुशल पर्यवेक्षक थे बल्कि उन्हें अध्ययन से भी बेहद लगाव था। महाकवि के साथ अपने अनुभव पर चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर श्याम सिंह शशि।
3: पुरानी बात है, शायद हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग का कोई अधिवेशन था, किसी एक सत्र में मेरा भाषण रख दिया गया था। हिंदी के प्रख्यात साहित्यकार श्री उपेंद्रनाथ अश्क से भी वही भेंट हुई थी। मैंने कहा, अश्क जी आप तो प्रयागवासी हैं, पंत जी से बहुत अच्छा परिचय होगा, मुझे भी मिलवा दीजिए ना उनसे। और अगले दिन हम पंत जी के निवास पर विराजमान थे। पंत जी ने बड़े प्यार से हमें बिठाया। मैं कुछ और पूछूं कि स्वयं पंत जी ने ही प्रश्न किया, आप तो मानव शास्त्री भी हैं और क्या क्या लिखते हैं। मैंने कहा, जी हिमाचल के यायावरों पर डॉक्टरेट की थी, मार्गरेट मीड का नाम पढ़ा है, उनकी तरह विश्व यात्राएं की हैं। पंत जी ने ही प्रश्न किया, जी नहीं। मैंने कहा, तो फिर यायावरी अध्ययन अधूरा है, ये उनके शब्द थे। लेकिन मैंने राहुल सांकृत्यायन को तो पढ़ा, ये मैंने कहा। हाँ, राहुल जी का साहित्य प्रेरणा देगा, मार्गरेट मीड नृतत्व शास्त्री हैं और उन्होंने आदिवासियों पर बहुत काम किया है, ये उनके शब्द थे। मैं सोचने लगा कितना ज्ञान है इस महाकवि के पास, मैं तो उसे केवल प्रकृति का चितेरा भर समझता था।
2: पंत का काव्य जीवन निरंतर गतिमान रहा, एक बिंदु पर वो कभी अधिक काल तक नहीं टिके। पल्लव ने तत्कालीन हिंदी काव्य साहित्य में युगांतर उपस्थित कर दिया था। पल्लव के बाद उनकी वीणा और ग्रंथी रचनाओं ने काव्य जगत में उनकी स्थिति को और महत्वपूर्ण बना दिया। प्रोफेसर इंद्रनाथ चौधरी,
4: पल्लव की जो उन्होंने भूमिका लिखी थी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण लिटरेरी डॉक्यूमेंट है जो उस समय के काव्य जगत को शैली, भाषा, पद, इन सब को लेकर एक बहुत गहरा विवेचन है। खड़ी बोली और ब्रज भाषा को लेकर एक इतना गहरा जो है एक आलोचना का स्वरूप उभर के आया है जो उस समय का

0: एक चार्टर बन गया था।
1: ये निर्विवाद सत्य है कि जहां एक ओर पंत की ख्याति निरंतर बढ़ रही थी, वहीं दूसरी ओर उनके विरोधियों की संख्या भी निरंतर बढ़ती जा रही थी। काव्य क्षेत्र में ब्रजभाषा का आंचल छोड़कर खड़ी बोली में कविता करने वाले और नाना प्रकार के विचारों के मृदुल फूल खिलाने वाले इस कवि का कुछ आलोचक मजाक उड़ाते, कुछ कटु व्यंग्य कसते और कुछ कुठाराघाती मनोवृत्ति का परिचय देते हुए उन्हें काव्य क्षेत्र से बाहर करने की चेष्टा भी करते। पर पंत ये विचार करके कि ये विरोध केवल विरोध के लिए ही किया जा रहा है, शांत बने रहे, हिमालय की तरह अडिग।
2: जग पीड़ित है अति दुख से, जग पीड़ित रे अति सुख से, मानव जग में बट जावे दुख सुख से और सुख दुख से, मेरे मन के मधुवन में सुषमा के शिशु मुस्काओ, नव नव सांसों का सौरभ नव मुख का सुख बरसाओ।
3: आर्थिक संकट से गुजरते हुए उन पर इन सब बातों की अजीब सी प्रतिक्रिया हुई और वो बीमार पड़ गए। यक्षमा ने उन्हें घेर लिया, पर उनकी अदम्य प्राण शक्ति और सघन चिकित्सा ने उन्हें बचा लिया। इसके बाद पंत काला कांकर चले आए। यहां का प्राकृतिक सौंदर्य और शांत वातावरण उन्हें बहुत रुचिकर लगा। उन्होंने पलाश वन के बीच एक टीले पर बने हुए छोटे से बंगले को अपने रहने के लिए चुना और उसका नाम रखा नक्षत्र।
2: भारत माता ग्राम वासिनी, खेतों में फैला दृग श्यामल, शस्य भरा जन जीवन आंचल, गंगा यमुना में शुचि श्रम जल, शील मूर्ति सुख दुख उदासिनी, भारत माता ग्राम वासिनी, स्वप्न मौन प्रभु पद नत चितवन, ओठों पर हंसते दुख के क्षण, संयम तप का धरती सामन, स्वर्ग कला भूपत प्रवासिनी, भारत माता ग्राम वासिनी।
1: यूं तो लोक व्यवस्था और समाजवाद के लिए गांधीवाद को अपनाते हुए भी कवि ने अपने सामने खुले हुए रूपात्मक व्यक्त जगत की कभी उपेक्षा न की। तभी तो नंग धड़ंग दो बच्चे उन्हें अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं।
2: जल्दी से टीले के नीचे उधर उतर कर है चुन ले जाते कूड़े से निधियां सुंदर, सिगरेट के खाली डिब्बे पन्नी चमकीली, फीतों के टुकड़े तस्वीरें नीली पीली।
1: पंत स्वभाव से आशावादी हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के मध्यांतर और भारत की पूर्ण स्वाधीनता से पहले सन 1941 में कवि लिखता है,
4: मानव समाज का भविष्य मुझे जितना उज्जवल और प्रकाशमान जान पड़ता है, उसे वर्तमान के अंधकार के भीतर से प्रकट करना उतना ही कठिन लगता है। भविष्य के साहित्य को इस युग के वाद विवादों, अर्थशास्त्र और राजनीति के मतांतरों द्वारा इस संदिग्ध काल के घृणा द्वेष कलह के वातावरण के भीतर से अपनी वाणी नहीं देनी पड़ेगी। उसके सामने आज के तर्क संघर्ष ज्ञान विज्ञान स्वप्न कल्पना सब घुल मिलकर एक सजीव सामाजिकता और सांस्कृतिक चेतना के रूप में वास्तविक एवं साकार हो जाएंगे।
3: स्वाधीनता के उपरांत पंत ने आकाशवाणी से जुड़कर हिंदी प्रसारण को नई दिशा प्रदान की। उन्हें आकाशवाणी में लाने का श्रेय तत्कालीन उप महानिदेशक बालकृष्ण राव तथा डॉक्टर नगेंद्र जी को जाता है। भारतीय प्रसारण का इतिहास इस बात का साक्षी है कि किस प्रकार पंत के ज्योतिर्स्पर्श से रेडियो का वायुमंडल और अधिक ज्योतित हो उठा।
5: रविन्द्रनाथ की अपूर्व कल्पना वैभव तथा सौंदर्य बोध से प्रेरणा ग्रहण कर मेरे सृजन में संभवतः नए आयाम उदय हुए।
3: आप सुन रहे हैं गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर पर आकाशवाणी में ध्वन्यांकित पंत की वार्ता के अंश।
5: बात को रविन्द्रनाथ जब स्वास्थ्य लाभ करने के उद्देश्य से

0: सन 1934 की गर्मियों में 2 महीनों के लिए अल्मोड़ा आए, तब मुझे उनसे अनेक बार मिलने तथा उनका व्यक्तिगत परिचय प्राप्त करने का भी अविस्मरणीय सुअवसर प्राप्त हो सका।
1: रेडियो में 7 वर्ष तक कार्य करते हुए पंत का कवि रूप निरंतर सजग और कार्यशील रहा। इस काल में उन्होंने रजत शिखर, शिल्पी, सौवर्ण और अतिमा नाम से काव्य रूपकों का निर्माण किया। 1958 में उन्होंने कला और बूढ़ा चांद की सृष्टि की, जो कालजयी रचना थी। इस तरह छायावाद के बंधे घेरे से निकलकर पंत ने जगत की विस्तृत समूची भाव भूमि पर स्वच्छंदता के साथ विचरण किया।
2: उस निर्जन टीले पर दोनों चिलबिल एक दूसरे से मिल, मित्रों से हैं खड़े मौन मनोहर, दोनों पादप सह वर्षा तप हुए साथ ही बड़े दीर्घ सुदृढ़तर।
1: जो हमारी महान विरासत है, महादेवी वर्मा,
3: वे हमारे काव्य के वासंती वैभव हैं। वे सौंदर्य के कवि हैं, किंतु उनका सौंदर्य सीमित नहीं था, हरी धूप से लेकर अंतर मन तक वो व्याप्त था। पंत जी का दर्शन मानवता को उदात्त मानता था, और इसी तरह वो कहते हैं, जग के उर्वर आंगन में बरसो ज्योतिर्मय जीवन,
4: बरसो सुख बन सुषमा बन, बरसो जग जीवन के घन, दिशि

0: बरसो ज्योतिर्मय जीवन, अभी आपने ये विशेष रूपक सुना। आलेख प्रोफेसर हरगुलाल गुप्त, वाचन स्वर सुमन संजय अग्रवाल और मनोज माइंडकर, प्रतिभागी स्वर राजीव कुमार शुक्ल, भीम प्रकाश शर्मा और नीरज खरे, संपादन एवं प्रस्तुति डॉक्टर संजय सिंह वर्मा।
1: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे रूपक, आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। थोड़ी देर में अगला कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
3: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
2: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम

0: करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
1: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
0: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला पदक से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान भारत के किसानों, मछुआरों, वैज्ञानिकों और कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य कर्मियों के योगदान की पहचान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में असम में 4000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव कार्यों की समीक्षा की। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। कोलकाता ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news shared by Aparajita Nair. India and Italy today finalized 15 outcomes across diverse sectors. The agreements were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. The outcomes mark the elevation of bilateral relations to a special strategic partnership. Both sides also inked several memorandums of understanding to deepen cooperation in key areas including critical minerals, defense, agriculture, Ayurveda, science and technology, maritime transport and ports. India and Italy also agreed to strengthen coordination against tax crimes, money laundering and terror financing. In a press statement after the talks, Prime Minister Modi said, India-Italy Joint Strategic Action Plan 2025-2029 will provide a practical and futuristic framework for bilateral ties. He said, both sides are working towards establishing an India-Italy Innovation Centre and noted that the India-Italy Defence Industrial Roadmap has opened new avenues for co-development and co-production in the defence sector. Later in the day, Prime Minister Modi was conferred the prestigious Agricola Medal by the Food and Agriculture Organization at its headquarters in Rome. The medal was presented by FAO Director General Ki Dong-gyu. Speaking on the occasion, the Prime Minister said the award reflects India's unwavering commitment to food security, sustainable development and human welfare.
1: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल